मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की नवी तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड्स हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ उपस्थित है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और

0: निशानेबाजी में एक स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं वंदना में सबसे पहले समूह स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। वंदना की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं सुखविंदर सिंह वसाथियों की आवाज़ में ये भजन।

वंदना में अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुनते हैं पामेला सिंह व साथियों की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

0: इसी भजन के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। लीजिए सुनिए शाकाहार और बापू विषय पर राजरानी शर्मा के विचार। वाचक स्वर आभा गुप्ता का है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण व्यक्तित्व अद्भुत प्रेरणा स्रोत है। विश्व के महापुरुषों की कोटि में महात्मा गांधी को अविस्मरणीय माना गया है। कथनी और करनी की समानता में विश्वास रखने वाले दृढ़ संकल्प के धनी बापू

0: जीवन के हर आयाम को सुविचारित दृष्टि से समृद्ध करके देखते थे। सादा जीवन उच्च विचार के मूर्तिमंत उदाहरण बापू भोजन के विषय में अत्यंत सावधान रहते थे। भारतीय जीवन मूल्यों में उनका दृढ़ विश्वास था। भारत की लोक प्रचलित उक्ति को बापू ने अपने जीवन में स्थान दिया, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। इस कथन पर विश्वास करने के कारण अहिंसा के पुजारी बापू ने अपने जीवन में शाकाहार को बहुत महत्व दिया। विदेश जाते समय अपनी माँ को दिए वचन के कारण बापू ने जीवन भर निरामिष आहार ही ग्रहण किया। बापू का मानना था कि मनुष्य एक शाकाहारी जीव है। उन्होंने जीवन भर एक अनुशासित भोजन व्यवस्था का पालन किया। बापू ने अपनी भोजन संबंधी प्राथमिकताओं को कम करने के पहले विभिन्न शाकाहारी पदार्थों का प्रयोग किया। एक समय उन्होंने दूध का भी परित्याग किया। चिकित्सकों के अनुरोध पर बकरी का दूध लेना ही स्वीकार किया। शाकाहार के आधारभूत सिद्धांतों के प्रचार के लिए महात्मा गांधी जी ने अनेक लेख लिखे, जो लंदन से प्रकाशित पत्र द वेजिटेरियन में प्रकाशित भी हुए। गांधी जी ने हेनरी स्टीफन सॉल्ट के शाकाहार संबंधी निबंधों को पढ़कर शाकाहार की वकालत करने में काफी समय भी व्यतीत किया। वे इसे सत्कार्य मानते थे कि शाकाहारी भोजन का प्रचार किया जाए। गांधी जी का मानना था कि शाकाहारी भोजन न केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि वह हमारे आर्थिक प्रयोजन की भी पूर्ति करता है। मांस अनाज सब्जियों और फलों से अधिक महंगा होता है, अतः शाकाहार का केवल आध्यात्मिक पक्ष ही नहीं, व्यावहारिक और आर्थिक पक्ष भी मजबूत है। बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि शाकाहारी होना ब्रह्मचर्य के पालन करने में बहुत अधिक सहायक है। बिना आहार नियंत्रण और पूर्ण शाकाहारी हुए बिना ब्रह्मचर्य निर्वाह में सफलता मिलना असंभव है। सर्वविदित है कि श्रीमद्भागवत गीता के विचारों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव रहा था, इसलिए गांधी जी आहार शुद्धि पर विशेष बल देते थे। उनका मानना था कि गीता में कहे गए सात्विक राजस तामस तीन प्रकार के आहारों का हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन से हमारे विचारों में अहिंसक भावों का पोषण होता रहता है। इसीलिए बापू का मानना था कि भोजन ऐसा होना चाहिए जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध रख सके। भारतीय जीवन दर्शन के अल्पाहार के विचार को भी बापू ने अपने जीवन में चरितार्थ किया। बापू कहते थे, मैं केवल जीने के लिए खाता हूँ। भोजन से मस्तिष्क का अभिन्न संबंध मानने के कारण ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलनों में उपवास को अत्यंत महत्व दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से एक बार पूछा गया कि वे किसके साथ भोजन करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी जी के साथ भोजन करना चाहेंगे, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि किस तरह सादा भोजन के दम पर वे अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते थे। सत्य अहिंसा को अपने वैचारिक अस्त्र बनाने वाले राष्ट्रपिता बापू का जीवन के हर पक्ष पर वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन था, किंतु भारतीय आहार शुद्धि के इस सिद्धांत को वैश्विक चिंतन क्षितिज पर स्थापित कर बापू ने शाकाहार की प्रतिष्ठा की। आजीवन शाकाहार व्रति होना बापू की दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतीक है।
1: अभी आप सुन रहे थे शाकाहार और बापू, इस विषय पर राजरानी शर्मा के विचार। वाचक स्वर आभा गुप्ता का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह, विषय है पशु।

0: पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण की उपयोगिता।
1: किसान भाइयों, पशु अधिकतर कभी न कभी मिट्टी या दूसरे बिना उपयोग की वस्तुएं खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़े, कागज, चमड़े के जूते, लकड़ी। चलते चलते रास्ते में दीवारों को चाटना, गंदी नालियों में से गंदा पानी पीना, एक पशु द्वारा दूसरे पशु के शरीर को चाटना या अपना ही मूत्र पीना। पशुओं में ये लक्षण पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। पशुओं के ये लक्षण आगे चलकर आदत में बदल जाते हैं। पशुओं में पनपी आदतों को छुड़ाने के लिए पशुपालक तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। ये सभी लक्षण पशु में जब ही उत्पन्न होते हैं, जबकि पशु के शरीर में किसी कारणवश कुछ आवश्यक खनिज तत्वों की कमी हो जाती है और यह कमी पूरा करने के लिए पशु मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। पशु में मिट्टी खाने का मुख्य कारण पेट में गोल कृमियों का पैदा होना है और यह कृमि पशुओं के शरीर में खनिज तत्वों की कमी पैदा कर देते हैं। पशुओं को जो चारा दाना खिलाते हैं उसमें खनिज तत्वों की कमी होना या पशुओं को संतुलित आहार न मिलने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। जो पशु गर्भधारण किए हुए या दूध देने वाले पशुओं में सामान्यतः कमी हो जाती है, जबकि ऐसे पशुओं को अधिक मात्रा में खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। कभी कभी हरे चारे वाली फसलों को समय पर काट कर पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, जिससे पशुओं में खनिज तत्व और दूसरे पौष्टिक तत्वों की कमी होने लगती है। जो पशु गंदे तालाबों का पानी पीते हैं, जिससे उनके पेट में कई प्रकार के कृमि और अंडे चले जाते हैं और ये कृमि पेट में जाकर तत्वों की कमी कर देते हैं। पशुओं में खनिज तत्वों की कमी न हो, इसके लिए पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवाएं देते रहना चाहिए। सबसे पहले पशुओं के गोबर की जांच करवानी चाहिए, उसके बाद ही कृमिनाशक दवाएं पिलानी चाहिए। कृमिनाशक दवाएं अधिकतर पशु के वजन के अनुसार दी जाती हैं, इसलिए पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में पानी, दही या लस्सी में घोल बनाकर पिलाएं। पशुओं को हरे चारे और दाने के साथ साथ 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 20 से 25 ग्राम साधारण नमक देना चाहिए। पशुओं को हमेशा मिश्रित हरा चारा ही खिलाएं, इससे पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार मिलेगा। जहाँ पर चारे वाली फसलें उगा रहे हैं, वहाँ पर संतुलित खादों का प्रयोग करना चाहिए। बीज की बोनी से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं और जो भी तत्व भूमि में कम हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से भूमि में तत्वों का संतुलन बना रहेगा और चारे की पैदावार अच्छी मिलेगी। प्राप्त चारे में सभी तत्व उपलब्ध होंगे और पशुओं के शरीर में किसी भी तत्व की कमी नहीं होने पाएगी। जहाँ तक संभव हो सके पशुओं को साफ, स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशुशाला को कृमि रहित और साफ स्वच्छ रखना चाहिए। पशुओं के गोबर और मूत्र की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। पशुशाला हवादार स्वच्छ होनी चाहिए। मक्खी मच्छरों से बचाव के लिए नीम की पत्ती जलाकर शाम के समय धुआं कर देना चाहिए। पशुशाला के आसपास कीटनाशक चूर्ण समय समय पर छिड़काव करते रहने चाहिए, जिससे पशु में मिट्टी खाने की समस्या नहीं आएगी। पशु स्वस्थ रहेंगे, रोग रहित रहेंगे, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होगी।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। विषय था पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण की उपयोगिता। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। श्रोता साथियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में रिफाइनरी के लिए 58 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12 से 24 महीने तक अप्रेंटिस ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इस भर्ती के तहत साथियों अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ट्रेंड अप्रेंटिस मैकेनिकल और टेक्निकल अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेंड में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। संबंधित ट्रेड में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले

0: ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
0: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
0: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
0: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
0: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
0: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
0: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
0: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
0: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
5: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
6: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रारब्धानाम् आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापनसूचकः भविष्यति। षड्विंशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी स्मारकनाणकम् अथ स्मारकप्रैष्यचटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयं गृहीतः।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13.4 चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमंडलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता। येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35% गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा, आंतरिक कर्णाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन 4 सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 21 रजत पदकानि तथा 39 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकहि पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय 2 अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8-0 पराजितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, UPSC के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DEAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों और पुदुचेरी में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आग

आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:10 पर अनुप्रसारित होंगे। सुनिए श्री रमेश चंद्र वियोगी से उनका काव्य पाठ सुबह 7:20 पर। प्रातः 7:30 पर श्रोता साथी आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी। सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रातः 8:30 पर। इस घंटे की खास खबरें सुनिए सुबह 8:58 और 10:58 पर।

प्रातः 9 बजे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथी सुनेंगे भारत के सशक्तिकरण में BSNL का योगदान। इस विषय पर श्री राजेश कुमार से सोहन सिंह की बातचीत। श्रोता साथी आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का सुबह 9:30 पर। कलाकार होंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां।

जिले की चिट्ठी प्रातः 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी। श्रोता साथी आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का सुबह 10:05 पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित की जाएगी। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर हमारे ही केंद्र से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए हॉटस्पॉट पर निगरानी के निर्देश दिए और प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर 8 अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 3 योजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और पावर इवैक्यूएशन के लिए इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वर्ष 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के हर संभव प्रयास कर रही है। रबी फसलों के MSP में वृद्धि के फैसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसान हितैषी नीति के तहत किसानों को ठीक दाम दिलाने के लिए रबी की फसलों की कीमतें बढ़ाई गई हैं।
1: हमारी किसान हितैषी नीति को ध्यान में रखते हुए किसानों को ठीक दाम दिलाने के लिए अब हमने इस वर्ष की MSP भी घोषित की है। गेहूं पहले जब 13-14 में था 1400 रुपया क्विंटल, अब ये बढ़ के हो गया 2610 रुपया क्विंटल। जो 1100 रुपया क्विंटल था अब 2286 रुपया क्विंटल, दुगने से ज्यादा की वृद्धि हुई है दामों। चना 3100 रुपया क्विंटल बिकता था, अब ये 5958 रुपया क्विंटल, लगभग दुगनी। तो इस साल ये MSP A2+FL पर 106% मार्जिन देके घोषित की गई है।
0: वहीं मंत्रिमंडल ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत दिल्ली के चिन्हित यातायात गलियारों और सिग्नलों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई। करीब 186,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम के तहत 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे RCVP नरोना प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसमें 500 से अधिक वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इसके साथ ही आगरमालवा, नर्मदापुरम और इंदौर समेत प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक जिले में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा 2 से 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा सेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रशासनिक दल ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, सेवा सेतु अभियान के माध्यम से अब सरकार पहुंचेगी सीधे आपके द्वार। 2 से 10 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश भर में आयोजित होंगे मेगा शिविर। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खंड स्तर पर और नगरीय निकायों में जोन वार आयोजित इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही

0: प्रदान किया जाएगा। एक ही स्थान पर पंजीयन से लेकर आवेदन के निराकरण तक और साथ ही हितलाभ वितरण पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। जनता तक पहुंचेगी सरकार, मौके पर ही मिलेगा समाधान, सभी हितग्राहियों तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न सेवा और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कटनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धूरी में कल सेवा मेरा योगदान पहल के तहत विद्यार्थियों के लिए पोषण एवं एनीमिया जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। वहीं झाबुआ के झकनावदा में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार के आंगनवाड़ी केंद्र में आंगन मिलन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बच्चों से संवाद किया। वहीं जबलपुर में सेवा संकल्प यात्रा के तहत बाइक रैली निकाली गई। वहीं वड़नगर से बनारस की ओर प्रस्थान करने वाली सेवा संकल्प यात्रा का डिंडौरी पहुंचने पर कल स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए शहरों के हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने और जिला स्तर पर प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में कल कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में प्रदेश में ADPS एक्ट के तहत 2706 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और अगस्त तक 3690 आरोपियों से 46,313 किलोग्राम मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। प्रदेश में नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 भी संचालित की जा रही है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए गौपालन तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में सहायक है। मंत्री श्री कुशवाहा कल भोपाल में आयोजित फार्म फूड कृषि सम्मान अवार्ड 2026 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण क्षेत्र के में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग को लेकर प्रदेश भर में 10 दिवसीय विशेष प्रवर्तन एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अभियान के दौरान प्रमुख चौराहों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा ब्लैक स्पॉट पर विशेष चेकिंग की जाएगी। हेलमेट और सीट बेल्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। पर्यावरण और जीवन शैली विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज भोपाल के विज्ञान भवन में किया जाएगा। संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए समन्वित प्रयासों तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श होगा। मंदसौर के शॉटगन खिलाड़ी केनेथ ग्रिंडी का चयन मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित MP स्टेट शूटिंग अकादमी भोपाल के लिए किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च में अपने प्रदर्शन के आधार पर केनेथ ने यह उपलब्धि हासिल की। अब क्रिकेट की खबर में, भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जंगू के शतकों की बदौलत 7 विकेट पर 405 रन बनाए। एक दिवसीय क्रिकेट में यह वेस्टइंडीज का सर्वाधिक स्कोर था। वहीं भारत ने कप्तान शुभमन गिल के नाबाद 233 रन और रोहित शर्मा की शतकी पारी की बदौलत 44वें ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक नमी के प्रभाव से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज चमक की स्थिति बन सकती है, लेकिन प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 35.8 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 37.3 इंच की तुलना में करीब 4% कम है। मौसम विभाग ने आज मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में बूंदाबांदी और गरज चमक की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी के उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर में पुलिस एवं शिक्षा विभाग के तत्वावधान में सृजन कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जबलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत MP पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा 1 दिन 1 घंटा 1 साथ वृहद श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में आयोजित स्वच्छता गौरव सम्मान समारोह के दौरान नगर निगम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 22 सफाई मित्रों और 22 ड्रेनेज कर्मचारियों को सम्मानित किया। खंडवा के नया हरसूद स्थित सती माता मोहल्ला में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के नेचर कोटियार्स रिसॉर्ट में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में 2 दिवसीय MSME कंपोजिट कार्यशाला का कल समापन हुआ और मंडला में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने जरूरतमंद परिवारों की सहायता और सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने के लिए आनंदम विभाग को वस्त्र भेंट किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब सुनिए श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव वियोगी से उनका काव्य पाठ।
1: मतलब हाजिर कर रहा हूँ।

हकीकत से वाकिफ नहीं, हकीकत से वाकिफ नहीं, जो किताबों में उलझे रहे। हकीकत से वाकिफ नहीं, जो किताबों में उलझे रहे। हाँ, बतौर खास शेर, बादशाहत चली भी गई,

0: उनके नामों निशान मिट गए, हुस्न के इश्क के दरमियाँ जो शराबों में उलझे रहे, हुस्न के इश्क के दरमियाँ जो शराबों में उलझे रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव वियोगी से उनका काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। साथियों, आज महान संगीतकार एसडी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन की पुण्यतिथि है। आज का फिल्म संगीत केंद्रित है एसडी बर्मन के सुरों से सजे फिल्मी गीतों के नाम। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह ने और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने। आशा भोसले की आवाज़ में लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं एस डी परमन।

अब सुनिए फिल्म गाइड से शैलेंद्र के लिखे एस डी बर्मन के संगीतबद्ध किए इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: सो योर प्लेस और माइन.
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
3: कॉन्डोम? लेकिन हम
4: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो.
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ.
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं. अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें. मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी.
6: आकाशवाणी ग्वालियर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है. आइए सुनते हैं फिल्म आराधना से आनंद बख्शी के लिखे और SD बर्मन के संगीतबद्ध किए गए इस गीत को किशोर कुमार की आवाज़ में.

अब सुनिए फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे SD बर्मन के संगीतबद्ध किए इस गीत को सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में

0: ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, UPSC के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DED के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत PMJ,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें

0: समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
3: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
4: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
5: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
4: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 24 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A report.
9: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials, and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event, and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
8: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal, and wheat by 25 rupees per quintal.
10: Rabi season ki MSP badhane se
11: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
10: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP approve hue.
8: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today. The ministry said that this marks an important step towards unlocking India's offshore mineral potential and strengthening the country's long-term mineral resource security. The auction comprises two offshore mineral blocks in the Andaman Sea region, which will be offered for grant of composite license. The ministry underlined that it is expected to encourage systematic exploration, attract investment, and promote the adoption of advanced technologies for offshore mineral exploration and development. The Supreme Court has ruled out a complete ban on firecrackers ahead of Diwali and favored a balanced approach. A bench of Justices M.M. Sundaresh and P.B. Varale indicated it will permit the use of certain firecrackers during Diwali but impose specified time limits, ruling out both a blanket ban and unrestricted bursting of crackers. The apex court stressed the need to strike a balance between religious sentiments and the harmful effects of air pollution. It said a complete ban could hurt the sentiments of people celebrating Diwali, while allowing firecrackers throughout the day will adversely affect the environment and vulnerable groups, including children, the elderly, and the sick. The apex court was hearing a long pending matter concerning restrictions on firecrackers in Delhi NCR and other northern states during the period of severe air pollution. This is Akashwani giving you the news.
1: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
8: Saudi authorities have arrested an Omani co-pilot after he stabbed the captain and attempted to crash a Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv in Israel. The Omani co-pilot stabbed the captain and caused the aircraft to plunge roughly 17,400 feet in under 2 minutes yesterday. However, passengers and crew members, including off-duty personnel, breached the cockpit, subdued the attacker and helped stabilize the plane. The flight was diverted and landed safely at Tabuk Regional Airport in the northwestern Saudi Arabia. More in this report.
12: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz described the event as a severe security incident and a suspected terrorist attack. Israeli Prime Minister described Captain Smith Matcher, an Indian national, a true hero who saved the lives of 174 people on board the Israel-bound flight. Mr. Netanyahu said Captain Smith Matcher displayed extraordinary bravery by fighting back and preventing a mid-air disaster. Prime Minister Narendra Modi has said that in the face of the gravest danger and despite being seriously injured, Captain Smith Matcher showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others. In a social media post, Mr. Modi said his valor helped save hundreds of lives and avert a great tragedy. He said Captain Smith is a hero and India is proud of him. The Prime Minister prayed for his speedy recovery, renewed strength and good health. US President Donald Trump also hailed Captain Smith as a hero for fighting off a knife attack from the Omani co-pilot, opening the cockpit door and calling for help to foil a bid to crash the aircraft. India's embassy in Riyadh and its consulate general in Jeddah said they are closely monitoring the health of Captain Smith Matcher. In a statement, Indian embassy said Captain Matcher is currently admitted to a hospital in Tabuk and receiving medical treatment. The embassy said initial reports indicate that his condition is stable. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
8: Prime Minister Narendra Modi has said that in the face of the gravest danger and despite being seriously injured, Captain Smith Matcher showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others. In a social media post, Mr. Modi said his valor helped save hundreds of lives and avert a great tragedy. He said Captain Smith Matcher is a hero and India is proud of him. The Prime Minister prayed for his speedy recovery, renewed strength and good health. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second ODI of the 3-match series at Barsapada Cricket Stadium in Guwahati last night, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat, West Indies posted their highest ever ODI total of 405 for 7. India comfortably chased down the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. Captain Shubman Gill led the charge with a sensational unbeaten 233 of 133 balls, while Rohit Sharma scored 101 of 75 balls to register his 35th ODI century. India will begin Day 12 of the Asian Games 2026 with hopes of adding more medals to their tally today, with several key events lined up across disciplines. The spotlight will be on the men's hockey semi-final, where India will take on arch-rivals Pakistan in a highly anticipated clash. The Indian team will be aiming for a win to secure its place in the final. Meanwhile, the Indian women's hockey team has already secured its place in the gold medal match against China. In cricket, defending champions India will face Sri Lanka in the men's semi-final. India will look to secure a victory and move one step closer to defending their Asian Games title. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, we bring you an instance of how PM Modi-led government's vision of modern infrastructure and stronger connectivity is being translated into action through the remarkable Chenab and Anji Khad railway bridges in Jammu and Kashmir.
3: Udhampur, Srinagar, Baramula, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
4: After inaugurating the Chenab and Anjikhad bridges on June 6 last year, Prime Minister Narendra Modi described the railway bridges as symbols of India's engineering capabilities and milestones in strengthening connectivity in Jammu and Kashmir. The two bridges are vital components of Udhampur Srinagar Baramulla rail link and were built across challenging mountainous terrain. The Chenab rail bridge, standing 359 meters above the Chenab River, is the world's highest railway arch bridge. The Anji bridge is India's first cable-stayed railway bridge, supported by 96 cables. Tajamul Ahmed, an orchardist from Kulgam, believes that the rail connectivity made possible by the construction of these bridges has made it easy for the apple growers to transport their produce to the other parts of the country swiftly.
13: Previously, we used to face enormous problems in transporting our fruits and other agricultural produce to the different parts of the country. But ever since the operationalization of Katra-Banihal-Srinagar rail link, it has become very easy for us to transport the fruits to the different states and markets of the country.
4: Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
8: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
14: Thank you, Pramod. Israel-bound plane drops 16,000 feet in a minute as pilot stabs colleague, headlines the Hindu. While the Indian Express headlines, mid-air scare, flight plunges as co-pilot stabs pilot. Israel says terror bid to bring down plane. And the Tribune headlines, Indian captain fights for co-pilot trying to crash Israel-bound plane. The paper adds that he saved 174 on board the Dubai-Tel Aviv flight. Most papers also have on their front page the story of PM Modi calling President Trump and discussing regional and global issues against the backdrop of New Delhi's concern over a US sanctions law on Russia. The Hindustan Times says, trade, defense, energy ties in focus as Modi-Trump talk, while the Asian Age has on its front page, Modi speaks to Trump amid US tariff threat over Russia oil. Hashim Musa, last man linked to Pahalgam attack, killed in JNK, headlines the Pioneer. While the Statesman says, security forces kill senior LET commander Musa in JNK. And finally, a report in the Economic Times says that buoyant quarter two demand for consumer goods lifts festive sales outlook. And with that, it's back to you, Pramod.
8: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali, favours balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in second ODI in Guwahati to take unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
16: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से निखिल उइके और रामनगर बैतूल से गगन कुमार। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
17: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
18: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
17: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
18: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
17: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास के सबसे उजले प्रसंग प्रतिरोध की आग से लिखे गए हैं, जहां किसी हृदय से उपजे साहस ने सदियों से बंद दरवाजों की सांकलें खोल दी। बात 19वीं सदी के भारत की है, जहां स्त्री के लिए समाज ने उम्र से पहले रिश्ते तय कर दिए थे, सपनों से पहले सीमाएं खींच दी थीं और उसकी आवाज जैसे हाशिए पर रख दी गई थी। ऐसे दुरूह समय में एक स्त्री आगे बढ़ी और पूरे साहस के साथ अपने हिस्से का आसमान मांगा। उनका नाम था डॉक्टर रुखमाबाई राउत। उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं, औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था और महिलाओं के लिए संकीर्ण विचारधारा को एक साथ चुनौती दी। वो भारत की प्रैक्टिस करने वाली शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक थीं तथा दूरदर्शी नारीवादी चिंतक थीं। यही कारण है कि उनके संघर्ष ने 19वीं सदी के अंत तक आते आते पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। रुखमाबाई का जन्म 22 नवंबर सन 1864 को बॉम्बे के एक सुतार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जनार्दन पांडुरंग था तथा उनकी माताजी का नाम जयंती बाई था। जब रुखमाबाई मात्र 2.5 साल की थीं, तभी उनके पिता का असमय निधन हो गया। लेकिन उनकी माताजी ने उस दौर की सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए सन 1870 में डॉक्टर सखाराम अर्जुन से पुनर्विवाह किया। डॉक्टर सखाराम अर्जुन बॉम्बे के जाने माने वनस्पति शास्त्री, प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे तथा महिला शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। ऐसे प्रगतिशील पारिवारिक वातावरण में रुखमाबाई की परवरिश हुई, जिसका बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। वो नई और क्रांतिकारी सोच के साथ बड़ी होने लगीं। घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। मराठी और अंग्रेजी भाषा में वो पारंगत हुईं। इसके साथ ही उन्हें गणित तथा अन्य बुनियादी विषयों का ज्ञान भी दिया गया। उनके घर पर नियमित रूप से विद्वानों, कानूनविदों और समाज सुधारकों का आना जाना बना रहता था, जिसके कारण उनके भीतर बहुत कम उम्र में ही तर्कसंगत सोच और स्वतंत्र चेतना का विकास हुआ।

जब रुखमाबाई मात्र 11 वर्ष की थीं, तभी उनका विवाह 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी से कर दिया गया और तय हुआ कि उनके पति रुखमाबाई के घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा पूरी करेंगे ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन उनके पति गलत संगत में पड़ गए तथा अकर्मण्य जीवन बिताने लगे। जब रुखमाबाई वयस्क हुईं तो इन्हीं कारणों से उन्होंने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में उनके पति दादाजी भीकाजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा रुखमाबाई के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा तत्कालीन न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। न्यायाधीश रॉबर्ट हिलपिन्ही ने 1885 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए रुखमाबाई के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि उनका विवाह अबोध बचपन में उनकी सहमति के बिना हुआ था। इसके बाद फिर अपील हुई और अपीलीय अदालत ने जज पिन्ही के निर्णय को अस्वीकार कर मामला पुनः विचार के लिए भेजा। मुकदमे के पुनर्परीक्षण में सन 1887 में जस्टिस फरान ने उनके पति के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन रुखमाबाई ने पूरे साहस के साथ स्पष्ट किया कि वो पति के साथ रहने की बजाय जेल जाना स्वीकार करेंगी और अंततः सन 1888 में अदालत के बाहर 2000 रुपए के वित्तीय समझौते के बाद उनके पति ने अपना दावा छोड़ा और रुखमाबाई को स्वतंत्र जीवन जीने का मार्ग मिला। इस मुकदमे के दौरान ही सन 1885-86 में रुखमाबाई ने एक प्रमुख समाचार पत्र में अ हिंदू लेडी के छद्म नाम से पत्रों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला प्रकाशित की। इन पत्रों ने तत्कालीन भारतीय समाज के बौद्धिक जगत को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि समाज में लड़कियों को केवल 8 या 9 साल की उम्र में विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। उन्हें अपनी इच्छा या शिक्षा को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं होती। पुरुषों को बहुविवाह की छूट है, जबकि महिलाओं पर कठोर पाबंदियां हैं और विधवा स्त्री अमानवीय यातनाएं भी सहती है। उन्होंने कठोर प्रश्न किए कि ऐसा क्यों है। इस तरह उनके लेखों ने अनेक सुधार अभियानों को मजबूती दी तथा ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने भी इन्हें प्राथमिकता से छापा। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में महिलाओं की दशा पर गंभीर बहस छिड़ गई। इस मुकदमे की गूंज पूरे यूरोप और ब्रिटिश साम्राज्य में सुनाई दे रही थी। इस तरह ब्रिटेन और भारत में अनेक सुधारकों तथा महिला अधिकार समर्थकों ने उनके पक्ष में आवाज उठाई तथा समर्थकों ने उनकी आगे की शिक्षा के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1889 में रुखमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हुई। रुखमाबाई ने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में अध्ययन किया तथा रॉयल फ्री हॉस्पिटल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगे चलकर उन्होंने एडिनबर्ग के स्कॉटिश मेडिकल कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1894 में उनका नाम मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हुआ। इसी दौरान सन 1890 में उन्होंने ब्रिटिश पत्रिका न्यू रिव्यू में इंडियन चाइल्ड मैरिज एन अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट शीर्षक से एक शोधपरक लेख लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने वैश्विक मंच पर यह सिद्ध किया कि भारत में बाल विवाह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि ये एक कुप्रथा है। इस तरह उनकी कलम ने लोगों को झकझोर कर जगाने का काम किया।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रुखमाबाई की पहचान केवल एक भारतीय महिला के रूप में नहीं रही, बल्कि वो स्त्री अधिकार और स्वतंत्र निर्णय की आवाज के रूप में पहचानी जाने लगी। वहां उन्होंने महिला अधिकारों और मताधिकार से जुड़े विभिन्न संगठनों से संवाद किया। विभिन्न आंदोलनों में वो शामिल हुईं। इस तरह उन्होंने अपनी विचारधारा को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। रुखमाबाई के प्रकरण और उनके संघर्ष ने औपनिवेशिक भारत के सामाजिक और विधिक ढांचे में दूरगामी बदलाव की नींव रखी। उनके मुकदमे के कारण बाल विवाह, महिला अधिकार और सहमति की अवधारणा पर देशव्यापी बहस शुरू हुई। रुखमाबाई के मामले ने सुप्रसिद्ध समाज सुधारक बहरामजी मालाबारी के नेतृत्व में चल रहे अभियान को कानूनी और व्यावहारिक आधार प्रदान किया। इस व्यापक जन आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को सहमति आयु अधिनियम 1891 पारित करना पड़ा, जिसमें लड़कियों की शारीरिक सहमति की आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। सन 1894 में रुखमाबाई एक योग्य चिकित्सक के रूप में भारत लौटी। वो कादम्बिनी गांगुली और आनंदीबाई जोशी की तरह भारत में चिकित्सक का सफल पेशेवर जीवन जीने वाली शुरुआती महिला चिकित्सकों में शामिल हुईं। सन 1895 में वो सूरत के वुमेन्स हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी और 2 दशक से अधिक समय तक वहां चिकित्सा सेवा दी। सन 1918 के आसपास उन्होंने राजकोट के जनाना हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक निष्ठावान डॉक्टर के रूप में कार्य करते हुए भी रुखमाबाई ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी। अस्पताल संचालन के दौरान उन्होंने देखा कि पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं गंभीर बीमारियों की शिकार हो रही हैं। उन्होंने अस्पताल के भीतर पर्दा प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और महिलाओं को खुले वातावरण में सांस लेने के लिए प्रेरित किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पर्दा द नीड फॉर इट्स एबॉलिशन नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें उन्होंने पर्दे के कारण महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर रुखमाबाई राउत का मानना था कि मरीज केवल मरीज होता है, उसे जाति या वर्ग की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि सभी मरीजों को एक समान भोजन, दवा और सम्मान मिले। सेवानिवृत्ति के बाद वो बॉम्बे में ही बस गईं तथा अनाथालयों और महिला आश्रम से जुड़कर काम करने लगीं। उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह और लड़कियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपना शेष जीवन और निजी संसाधन समर्पित कर दिए। उनका मानना था कि किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसकी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राप्त अधिकारों पर निर्भर करती है। जीवन के अंतिम दिनों तक वो इसी संकल्प के साथ पढ़ने, लिखने और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहीं और 25 सितंबर सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर ग

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर, श्रोता साथियों को आपकी दोस्त व्याप्ति उमरेकर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुबह की शुरुआत अगर एक प्याली गर्मा गर्म कॉफ़ी की खुशबू के साथ हो तो दिन कुछ अलग ही अंदाज में शुरू होता है। किसी के लिए कॉफ़ी सुबह की नींद खोलने का ज़रिया है, किसी के लिए काम के बीच थोड़ी सी राहत और किसी के लिए दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करने का बहाना। आजकल तो साथियों, कॉफ़ी हमारी दिनचर्या का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कई बार उसका जिक्र होते ही हमारे सामने एक प्याला, उसकी खुशबू और उसके साथ बिताए अच्छे पल अपने आप ही सामने आ जाते हैं।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कॉफ़ी को हम कुछ ही मिनटों में बनाकर पी लेते हैं, उस प्याले तक पहुंचने में कितने लोगों की मेहनत शामिल होती है? कॉफ़ी का पौधा लगाने से लेकर उसकी देखभाल, फलियों को तोड़ने, उन्हें संसाधित करने, भूनने और फिर हमारे कप तक पहुंचाने की एक लंबी यात्रा है। इस पूरी यात्रा और कॉफ़ी से जुड़े लोगों को याद करने का अवसर देता है आज का दिन, यानी अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, जो हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2014 में उसके सदस्य देशों ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। साथियों, कॉफ़ी की कहानी केवल एक पेय की कहानी नहीं है, ये कृषि, व्यापार, रोज़गार और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की संस्कृतियों से भी जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग कॉफ़ी की पूरी मूल्य श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, यानी खेत में काम करने वाले किसानों से लेकर कॉफ़ी को भूनने वाले, बेचने वाले और उसे तैयार करके हमारे सामने लाने वाले व्यक्ति तक। एक प्याली कॉफ़ी उसके पीछे न जाने कितने ही हाथ काम करते हैं। और जब हम कॉफ़ी की बात करें तो भारत को इससे अलग करके तो नहीं ही देखा जा सकता। भारत में भी कॉफ़ी का इतिहास काफ़ी पुराना है साथियों। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कॉफ़ी के पौधों के आगमन की कहानी 1600 ईस्वी के आसपास बाबा बुदन से जुड़ी है। माना जाता है कि उन्होंने मोचा की 7 कॉफ़ी बीज लाकर कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ियों में लगाए। बाद में दक्षिण भारत में कॉफ़ी का व्यावसायिक उत्पादन विकसित हुआ। आज भारत में कॉफ़ी की अपनी अलग पहचान है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र भी हैं। अब ज़रा हम कॉफ़ी के उस रूप की बात करें जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, यानी प्याले में तैयार कॉफ़ी। कोई फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद करता है, कोई इंस्टेंट कॉफ़ी, कोई ब्लैक कॉफ़ी, तो कोई दूध और चीनी वाली कॉफ़ी। आज कॉफ़ी की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि उसके स्वाद, उसकी खुशबू और उसके बनाने के तरीके भी अलग अलग हैं, उनके अलग अलग अंदाज हैं। भारत में दक्षिण भारतीय फ़िल्टर कॉफ़ी की अपनी ही खास जगह है। वहीं बड़े शहरों में कैफ़े संस्कृति ने कॉफ़ी को एक सामाजिक अनुभव बना दिया है। पहले जहां घर में चाय के साथ बातचीत करने का सिलसिला आम था, वहीं अब बहुत से लोगों के लिए कॉफ़ी के साथ बैठना भी बातचीत और मुलाकात का एक सहज हिस्सा बन गया है। लेकिन साथियों, कॉफ़ी के साथ एक ज़रूरी बात स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, वो ये है कि कॉफ़ी में कैफीन होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को उत्तेजित करता है और लोगों में सतर्कता बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसका असर हर व्यक्ति पर एक जैसा हो, ये ज़रूरी तो नहीं। अधिक मात्रा में कैफीन लेने से कुछ लोगों को बेचैनी, नींद में परेशानी, धड़कन तेज़ महसूस होना या दूसरे असहज लक्षण भी हो सकते हैं। इसलिए कॉफ़ी का आनंद लें, लेकिन अपनी व्यक्तिगत सहनशीलता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही। दरअसल साथियों, किसी भी पेय की तरह कॉफ़ी की खूबसूरती उसके संतुलित आनंद में है। सुबह की एक कप प्याली हो या दोस्तों के साथ शाम की कॉफ़ी, ज़रूरी ये है कि हम उस प्याले को सिर्फ एक आदत की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे की यात्रा भी देखें। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कॉफ़ी प्रेमियों के लिए अपनी पसंदीदा कॉफ़ी का आनंद लेने का अवसर है। तो साथियों, अब इस एक प्याले कॉफ़ी के साथ आनंद लेते हुए ये प्यारा सा गीत सुनिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता साथियों, अब सुनिए भारत के सशक्तिकरण में BSNL का योगदान विषय पर श्री राजेश कुमार से सोहन सिंह की बातचीत।
4: श्रोताओं, BSNL संचार सेवाओं में बहुत पुरानी संस्था है। संचार सेवाओं में आज भी BSNL अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज BSNL का 26वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं BSNL के महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार। कुमार साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कुमार साहब, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को यही जानकारी दें कि इस वर्ष की BSNL की थीम क्या है।
5: धन्यवाद। इस वर्ष की थीम है कनेक्टिंग भारत, एम्पावरिंग भारत, यानी कि भारत को जोड़ना और भारत को सशक्त बनाना। पिछले वर्ष 4G नेटवर्क का रोल आउट किया था, 1,00,000 नए टावर हमने उस समय से अभी तक जोड़े हैं, जिसके माध्यम से लगभग 3,00,000 ग्रामीण क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य था और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: कुमार साहब, भारत संचार निगम लिमिटेड भी है और

0: दूसरी भी जो संस्थाएं हैं वो संचार के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, दोनों में क्या आप फर्क देखते हैं?
1: भारत संचार निगम लिमिटेड पहले दूरसंचार विभाग का एक ऑपरेटिंग यूनिट है और हमारा शुरू से इस बात पे जोर रहा कि हम अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और सेवाओं का प्रचार प्रसार या उनका विस्तार इस प्रकार से करें कि देश का आखिरी कोना, बॉर्डर एरिया, दूरस्थ जो गांव है वहां तक हमारी पहुंच पहुंचे और दूरसंचार की सुविधा एक आम नागरिक को सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। इसी थीम को ध्यान में रख करके BSNL की जो यात्रा है वो चली है और आगे भी चल रही है। ये जो ग्वालियर क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के, आदिवासी क्षेत्र के, दूर दराज के क्षेत्र के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको BSNL सस्ती दरों पर विश्व स्तर की जो संचार सेवा है वो उपलब्ध करा रहा है। हमारी दरें, हमारे नेटवर्क की गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो हमारा सेवाओं का विस्तार होगा और आम जन उसका लाभ उठा सकेगा। तो ये हमारा थीम है और इसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: राजकुमार साहब, 26-27 के लिए आपके BSNL के विस्तार के लिए क्या योजना है, क्या भविष्य की प्लानिंग है?
1: 26-27 में विस्तार की योजना है, इसमें हम लगभग 77,000 करोड़ रुपए का अगले 5 वर्ष में निवेश करेंगे, जिसमें संचार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में इसका उपयोग किया जाएगा। लगभग 2 लाख 4G BTS लगाने में प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ हम 5G का जो रोल आउट है उसको भी करेंगे। जहाँ तक ग्वालियर की बात है, यहाँ पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के 150 नेटवर्क BTS काम कर रहे हैं और उसमें 20 हम BTS और जोड़ेंगे, जिनको हम सैचुरेशन BTS बोलते हैं। और साथ ही साथ हम 358 नए BTS को लगाने की योजना पे काम कर रहे हैं।
0: कुमार साहब, जो भारत नेट परियोजना है, इसमें BSNL की क्या भूमिका है?
1: भारत नेट भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल करके ब्लॉक और पंचायत स्तर पे नेटवर्क की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें हम ये देखते हैं कि पंचायत का कोई स्कूल है, अस्पताल है, ग्रामीण बैंक है, इनमें सस्ती दरों पर FTTH के माध्यम से हाई स्पीड नेटवर्क को प्रदान किया जाए। इसमें फेज 1 और फेज 2 में हमने अपनी सेवाओं का विस्तार किया था और ये जो तीसरा है इसमें BSNL एक PMC के रूप में काम कर रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसमें पहले और दूसरे के बाद जो बची हुई जो पंचायतें हैं उनको BSNL ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत नेट के माध्यम से ला रहा है और शीघ्र ही इसके पूर्ण होने पर इसका लाभ सबको मिलेगा।
0: राजेश कुमार साहब, अभी अभी ग्वालियर में टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट की स्थापना होने जा रही है, इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं?
1: मध्य प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के बीच में एक MOU का हस्ताक्षर हुआ है और इस MOU के माध्यम से 493 करोड़ का ये करार हुआ है और इसमें एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जिसको कहेंगे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 170 एकड़ की जो भूमि है उसका चयन कर लिया है और ये पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें दूरसंचार के उपकरणों की टेस्टिंग भी होगी और उनका उत्पादन भी किया जाएगा। और अभी हाल में लगभग 24 टेलीकॉम की देशी और विदेशी कंपनियों ने इससे जुड़ने का बात कही है और लगभग 5,500 करोड़ का इसमें वो प्राइवेट कंपनियाँ निवेश करेंगी। इससे ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र के लिए लगभग 18,000 नए रोजगार का सृजन होगा और दूरसंचार के मामले में एक ये बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है जिसका लाभ ग्वालियर को, मध्य प्रदेश को और पूरे भारत को मिलेगा।
0: संचार की सेवाओं में नेटवर्क का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुमार साहब, BSNL के क्या प्रयास हैं कि जो नेटवर्क है वो हमारे उपभोक्ताओं को नियमित मिलता रहे?
1: सबसे जरूरी है कि नेटवर्क अगर हमने लगाया है तो उसकी नियमित रूप से जांच हो और यदि उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी किया जाए। अभी तक हम अलग अलग कंपनियों या टेंडर के माध्यम से इसको अंजाम देते थे, लेकिन अब हम एक इंटीग्रेटेड टेंडर के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर कहीं कट गया उसको जोड़ना है, बीटीएस टावर कहीं पे बंद है उसकी देखरेख करनी है, यदि वहाँ पे इंजन चलाना है, बैटरियों का रख

0: रखाव है, इन सारी चीज़ों को मिला करके एक सिंगल टेंडर कर रहे हैं जिससे कि सेवाओं में आपस में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो और निर्बाध रूप से सेवाएं चलती रहें। इसके अलावा जो CSE हैं जहाँ पे कस्टमर हमसे आकर के अपनी समस्याओं के बारे में आता है, उनमें सुधार किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि कस्टमर की जो भी समस्याएं हैं उसका निदान 1 से 2 घंटे में हो जाए। यदि कोई सेवाओं में कोई दिक्कत है तो उसको 24/7 के माध्यम से त्वरित रूप से उसका निस्तारण किया जाए।
1: BSNL की पहुंच गांव-गांव तक है, दूरदराज क्षेत्रों तक है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा पूंजी का अभाव पाया जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण भाई आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या जो टैरिफ है वो दरें हैं?
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हमने दोबारा से अपना एक फ्रीडम प्लान लॉन्च किया था जिसमें मात्र 1 रुपए में हम सिम प्रदान कर रहे थे जिसकी वैधता पूरे 1 महीने की थी और उसमें 1 GB का डाटा हम प्रतिदिन प्रदान कर रहे थे, 100 SMS दे रहे थे और असीमित कॉल की सुविधा दे रहे थे। ये सुविधा 23 दिन के लिए थी, ये पूरी तरह से 4G पे आधारित थी और इसके अलावा हमारे शहरी या ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं के लिए अपनी सबसे सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मात्र 2,399 रुपये में 2 GB का डाटा पूरे साल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को सिर्फ बात करनी है तो उसके लिए भी बहुत सस्ता प्लान है, वो सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। FTTH में हम 499 रुपये का एक प्लान हमने अभी लॉन्च किया है जिसमें पहले महीने में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं और इसके अलावा अगले 3 महीने में 100-100 रुपये की छूट है। तो BSNL का प्रयास हमेशा ये रहता है कि जितनी कम से कम दरों पे अपनी सुविधाओं का विस्तार और अपनी सेवाओं को आम जन तक पहुंचाएं, उपभोक्ताओं को पहुंचाएं ताकि सबको उसका लाभ मिल सके।
1: राजेश कुमार साहब, अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे जिससे हमारे श्रोता ग्रामीण भाई BSNL का अधिक से अधिक लाभ उठा सके?
0: BSNL की स्थापना ही इसी प्रयोजन के साथ की गई थी कि आम जन उसके साथ जुड़े, उसकी सेवाओं का लाभ उठा सके और BSNL की शुरू से ये थीम रही है कि सेवाओं की गुणवत्ता और सेवाओं को अधिक से अधिक आम जन तक पहुंचाया जाए और इसकी लागत न्यूनतम रखी जाए कि एक आम जन उसका लाभ उठा सके। BSNL से जुड़ेंगे और सेवाओं का लाभ उठाएंगे।
1: राजेश कुमार साहब, आज BSNL स्थापना दिवस के अवसर पर आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस जानकारी से निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के सशक्तिकरण में BSNL का योगदान, इस विषय पर श्री राजेश कुमार से सोहन सिंह की बातचीत। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और श्रोता साथी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

साथियों, हिंदी सिनेमा के गीत संगीत की बात हो और ऐसे संगीतकारों का नाम लिया जाए जिन्होंने अपने संगीत से गीतों को केवल लोकप्रिय नहीं बल्कि उन्हें हमारी स्मृतियों का हिस्सा बना दिया है, तो सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका संगीत सुनते ही कभी किसी नदी किनारे बहती लोकधुन का एहसास होता है, कभी विरह की गहराई सुनाई देती है, कभी प्रेम की सहजता और कभी जीवन को अपने ही धुन में जी लेने का अंदाज। साथियों, आज 1 अक्टूबर यानी हिंदी तथा बांग्ला फिल्म संगीत के महान संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन की जयंती। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को ब्रिटिश भारत के कोमिल्ला में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। संगीत उन्हें विरासत में मिला, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान उन्होंने अपनी साधना और मौलिक संगीत दृष्टि से बनवाई। सचिन देव बर्मन की संगीत यात्रा की सबसे विशेष बात यह थी कि उन्होंने भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत की परंपरा के साथ ही लोक संगीत की सहजता को भी अपनी संगीत में स्थान दिया। बंगाल की लोक धुनों से उनका गहरा लगाव था और यही कारण था कि उनके संगीत में एक ऐसी आत्मीयता सुनाई देती है जो सीधे मन तक पहुंचती है। उनकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास थी। वे स्वयं कई गीत भी गाते थे और उनकी आवाज़ सुनते ही श्रोता उन्हें पहचान भी लेते थे। फिल्म संगीत के क्षेत्र में उनकी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे चलकर उन्होंने ना सिर्फ बंगाली बल्कि हिंदी सिनेमा की अनेक महत्वपूर्ण फिल्मों को संगीत दिया। देवानंद के साथ उनकी संगीतकार कलाकार की जोड़ी विशेष रूप से चर्चित रही। बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ और आराधना जैसी फिल्मों के संगीत में उनकी रचनात्मकता के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। सचिन देव बर्मन के संगीत की खूबी ही ये थी कि वे गीत की परिस्थिति और भाव को समझ कर धुन तैयार करते थे। उनके संगीत से जुड़ी गीतों को हम याद करें तो गाइड का गीत आज फिर जीने की तमन्ना है जीवन के प्रति एक नए उत्साह का एहसास कराता है, और वहीं वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जीवन की यात्रा और उसके अकेलेपन पर ठहर कर सोचने को मजबूत करता है। आराधना के गीतों ने भी श्रोताओं के बीच गहरी जगह बनाई। मेरे सपनों की रानी हो या कोरा कागज़ था मन मेरा, उनकी धुनों में

एक ऐसी सहजता थी जो गीत को तुरंत यादगार बना देती है। साथियों, किशोर कुमार के साथ उनकी रचनात्मक साझेदारी को भी हिंदी फिल्म संगीत के यादगार अध्यायों में गिना जाता है। आराधना के गीतों ने इस साझेदारी को विशेष पहचान दी और किशोर कुमार की आवाज़ में एसडी बर्मन की धुनों ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नया लोकप्रिय रंग दे दिया। आज सचिन देव बर्मन की तिथि है, हम जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं और इसी के साथ सुनिए उन्हीं का स्वरबद्ध एक प्यारा सा गीत।

साथियों, आपसे बातें करते करते मुझे वक्त का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन अब घड़ी की टिक टिक इशारा कर रही है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो अपने दोस्त व्याप्ति उमरेकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। सुनिए रागतोड़ी में उस्ताद अलाउद्दीन खां का इस राजवादन।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खां का इसराज वादन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों बारिश का मौसम खत्म हो गया है। जिले में पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने से जल स्रोत पूर्णतः भर नहीं पाए थे, जिससे आगामी दिनों में बोई जाने वाली रबी की गेहूं तथा चने की फसल में सिंचाई की समस्या सामने आ सकती है। पिछले दिनों विश्व रैबीज दिवस के अवसर पर जिला पशु चिकित्सालय द्वारा श्वान एवं बिल्लियों के लिए निःशुल्क एंटी रैबीज वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य जाँच कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में पालतू पशुओं का टीकाकरण किया गया। वहीं पिछले दिनों नगरपालिका बड़वानी द्वारा स्वच्छता ही सेवा और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नपा अध्यक्ष अश्विनी चौहान, कलेक्टर बड़वानी जयती सिंह द्वारा नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। वहीं जिले में विश्व हृदय रोग दिवस के अवसर पर बीते दिनों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन जिला चिकित्सालय बड़वानी में किया गया। इस अवसर पर मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर 850 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। जिले के ग्राम उचावद में बीते दिनों 22वीं रात्रि चौपाल कार्यक्रम में कलेक्टर ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने किसानों को बेहतर उत्पादन और उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीकी अपनाए जाने का आह्वान किया। वहीं आज मध्य प्रदेश शासन की रोजगार उन्मुखी योजना के अंतर्गत ग्राम चाचरिया में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन जिले में किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय उपसंचालक TS डुडवे ने बताया कि इस मेले में 90 पदों पर निजी कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी। वहीं बीते दिनों श्रवण एवं वाक बाधित दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों, शासकीय योजनाओं और न्याय तक आसान पहुंच की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर में राज्यव्यापी अनुगूंज से उद्घोष विशेष विधिक साक्षरता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 65 दिव्यांगजन और उनके परिजन शामिल हुए। सेवा संकल्प अभियान के तहत बड़वानी जिले में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला पंचायत CEO के अनुसार इस दौरान नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में पौधरोपण, योग एवं ध्यान सत्र, साइबर एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता, नशामुक्त भारत जागरूकता, वीरगाथा एवं सैनिक सम्मान, शासकीय योजना जागरूकता के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पिछले दिनों नगर पालिका परिषद बड़वानी के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई मित्रों और ड्राइवरों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदगण उपस्थित थे। वहीं जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बीते दिनों एक विशेष पोषण जागरूकता कार्यक्रम जिले की आंगनवाड़ियों में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं को संतुलित आहार, हरी सब्जियों, अनाज, फलों और अंकुरित अनाज के महत्व की जानकारी दी गई। बड़वानी जिले में 4 अक्टूबर से मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यक्रम खेती खेड़ों हरे नाम की लोक और जनजाति संस्कृति उत्सव आयोजित किया जा रहा है। खरीफ वर्ष उपार्जन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान, बाजरा, ज्वार विक्रय के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक संचालित की जा रही है। वहीं बीते दिनों 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़वानी जिले में पंडालों और घरों में गणेश प्रतिमाओं को स्थापित कर पूजा अर्चना और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अनंत चतुर्दशी की रात को जिला मुख्यालय पर विभिन्न संदेश देती 40 झांकियों का कारवां भी निकाला गया। इन दिनों पितृपक्ष यानी 16 श्राद्ध पर्व चल रहा है। पितरों को तर्पण और श्रद्धा का पर्व जिले में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष में निमाड़ के अंचलों में लोक पर्व संजा भी परंपरागत और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। संजा पर्व पर कुमारी कन्याओं द्वारा प्रतिदिन शाम को इकट्ठा होकर मकानों के दीवारों पर गोबर से विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिसे निबाड़ी में छावड़ी माड़ना भी कहते हैं। वहीं आगामी दिनों में आने वाले नवरात्र पर्व के मद्देनजर जिले के सेंधवा के समीप स्थित बड़ी बीजासेन माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम और भक्तों की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एवं SP बड़वानी द्वारा मंदिर पहुंचकर मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आशा ग्राम ट्रस्ट बड़वानी में वृद्धजन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनके अनुभव भी साझा किए जाएंगे। वहीं जिले की छात्रा कुमारी प्रतिज्ञा चौहान का चयन विभागीय राज्य स्तरीय हॉकी जूनियर प्रतियोगिता में अंडर 17 के लिए किया गया है। छात्रा प्रतिज्ञा इस प्रतियोगिता में संभागीय दल पश्चिम क्षेत्र की टीम की तरफ से खेलेंगी। बड़वानी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बड़वानी जिले की चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे। आलेख शिवपाल सिसोदिया का था, वाचन स्वर था अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमरेकर। आइए सुनते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर से ये पहला गीत, जिसे लिखा है मजरूह ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में गीत, जिसे सुनने की फरमाइश की है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी ने, कंडला बंदर कच्छ से जगदीश चौहरी, पूजा और पायल ने, साथ ही दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

फिल्म कहो ना प्यार है से राजेश रोशन के संगीतबद्ध किए इस गीत को सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के ने, और नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म क्रिमिनल से कुमार सानू की आवाज़ में गीत, जिसके बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत दिया है MM करीम ने। गीत सुनने की फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, सूरज, कुशल वर्मा ने। साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने और कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म दामिनी से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में सुनिए ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। गीत को सुनने की फरमाइश की है मुकाम पोस्ट फूलसन सोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानूबी मुलानी, बादशाह मुलानी और पूरे मुलानी परिवार ने। साथ ही धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और अयान बाबू ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोता साथी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का आनंद ले रहे हैं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से आनंद बख्शी के लिखे जतिन दलित के संगीतबद्ध

किए इस गीत को उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे सुनने की फरमाइश की है न्यू बजरंग कॉलोनी गोल पहाड़ी लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आद्या श्रेया और देवांशु ने। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और देवश्री ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म लव से एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। गीत सुनने की फरमाइश की है गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षता लोखंडे और समस्त लोखंडे परिवार ने। साथ ही अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

फिल्म बॉम्बे से चित्रा की आवाज़ में महबूब के लिखे एआर रहमान के स्वरबद्ध किए इस गीत का आनंद लीजिए, जिसे सुनने की फरमाइश की है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम बेलदार, अकरम बेलदार, आसमा बेलदार, डब्लू बेलदार और सोनम बेलदार ने। साथ ही बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, मोहम्मद सलीम आसमा कुरैशी, मोहम्मद कलीम आसमा कुरैशी ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म परिंदा से गीत आशा भोसले और सुरेश वाड़कर की आवाज़ में। गीतकार हैं खुर्शीद ढिल्लोरी, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। सुनने की फरमाइश की है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग और तानिया नारंग ने। साथ ही पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मीहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और ममता अरोड़ा ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज आरसीवीपी नरोहना प्रशासन अकादमी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। वहीं प्रदेश भर में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण और जीवन शैली विषय पर आज भोपाल स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में जलवायु, पर्यावरण तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार, नागरिक समाज, अकादमिक जगत, निजी क्षेत्र, युवाओं और समुदायों की भागीदारी पर भी चर्चा की जाएगी। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कल से 10 अक्टूबर तक सेवा सेतु अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान प्रशासनिक दलों द्वारा ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक नमी के प्रभाव से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज चमक की स्थिति बन सकती है, लेकिन प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ चुनौती पेश करेगी। और एशियाई खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम को बरकरार करते हैं और सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत उत्तम सिंह का है।

देव कोहली का लिखा गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म से। इसे अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और एस पी बालसुब्रमण्यम ने।

हम आपके हैं कौन फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का सीधा प्रसारण जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोह का समापन होगा जो पिछले 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट व्हिच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
2: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मान्य अधिकारीगण, सम्मान्य वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय सहयोगियों, संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे संस्थान की अध्यक्षता करता हूं जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन करता है। यह वे अधिकारी हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर

0: आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है, इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है, इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थी, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का OCR द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञता पूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय
1: और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
3: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हुआ था। Therefore, ladies and gentlemen, this is an institution which carries the legacy of pre-independence India and the flavor of post-independence India. 100 वर्षों के इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। एंड देयरफॉर UPSC ट्रूली पर्सोनिफाइज सरदार पटेल्स विजन ऑफ स्ट्रांग, पावरफुल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में पिछले 10-12 साल एक खास मकाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में UPSC ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां UPSC के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें

0: संख्या की, तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431, और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ करके हो गई 50,906, और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंटेग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन दी वेबसाइट, और प्रतिभा सेतु सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है देश विदेश की हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधि मंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का ये खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was Dr. Jitendra Singh,
2: आपके उद्बोधन के लिए हृदय से आभार माननीय मंत्री महोदय।
1: इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग पेंशंस एंड ग्रीवेंसेस and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is the guest of honor at the centenary celebrations of the Union Public Service Commission. And a short film on UPSC.
3: Karodon sapne aur ek atoot kasauti. Merit. Saal dar saal. Jan seva ke liye 200 se adhik parikshaon ke madhyam se सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना, यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता, 48 विषय, 22 संवैधानिक भाषाएं, लाखों परीक्षक, और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट। इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना, यही यूपीएससी की उपलब्धि है। 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी। 1957-58 में लगभग 1,000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना, 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1,500 गुना बढ़ना, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, अतिरिक्त समय, स्क्राइब की सहायता मिलना, बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई, जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं, लाखों कैंडिडेट्स, हजारों परीक्षा केंद्र, निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो? यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीनें, न भारी ढांचा, बस एक स्मार्टफोन। 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन, 7 सेकंड में पहचान, हर मिनट 12,000 सत्यापन, एआई से एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच, प्रतिभा सेतु अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स को देता है एक और अवसर। तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का यूपीएससी पर है अटूट भरोसा।
4: UPSC and its conduct is always top-notch. There is no problem in conducting of papers. There is no rescheduling of papers, no cancellation of papers. I think that's almost the best body you can get.
5: बहुत ही ज़्यादा fair selection होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका evaluation होगा.
3: 100 वर्षों में भारत बदला, UPSC भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है. प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन.
6: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है. ये समय तेजी से बदलाव का समय है. आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी.
3: UPSC 100 years of selecting India.
7: संघ लोक सेवा आयोग के 100 वर्षों की यात्रा को दिखाती हुई है फिल्म का प्रदर्शन किया गया भारत मंडप
8: और देशवासियों की सेवा आराधना. तभी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का गौरव पाता है, तभी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य पथ, कर्तव्य का बोध कराता है और हर
7: भारत मंडप में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री
8: शताब्दी स्मारक टिकट हिस्सा
7: ले रहे हैं.
8: शताब्दी स्मारक सिक्का एवं लोक सेवा
7: शताब्दी संबंधित टिकट और सिक्का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी
8: किया जा रहा है.
1: And the Honorable Prime Minister will now release a commemorative postage stamp, a commemorative coin, and a publication titled The 100 Landmark Judgments. And the postage stamp is priced at 5 rupees and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item. And the postage stamp and cover is a special commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also, a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026, and it is valued at 100 rupees. And the publication 100 Landmark Judgments, the commemorative postage stamp, the commemorative coin and 100 Landmark Judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
7: Maranee Pradhan Mantri ne smarak ticket aur sikka jari kiya. आपको बता दें यूपीएससी के 100 वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है. अब समारोह
1: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग हियर टू मार्क 100 इयर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन.
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी.
6: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीके मिश्रा जी, टीवी सोमनाथन जी, अजय कुमार जी, यूपीएससी के सभी माननीय सदस्यगण, अलग अलग राज्यों से आए सभी पीएससी के चेयरमैन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं आज इस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी है और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।

हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें। साथियों, आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है। ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं। आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, से कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे, उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था।

और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था, ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मन से भी काफी बातें हुई है, और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं, न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है। 21वीं सदी का एक क्वार्टर, 25 साल बीत चुके हैं। आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए, उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी है। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़ी है बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट, और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है, और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा, और हमारे नागरिकों, खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस
और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिख कर रखे प्रारंभ में ही और खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं, ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय
समस्या को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीप फेक्स होंगे, एल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसी को उन रिफॉर्म पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है, ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य से, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टाइम सर्टेनिटी के सिद्धांत को अपनाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यूपीएससी को, देश के सभी चयन आयोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बार को लॉक किए बिना हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो। वैसे मैं अभी गैलरी में देख रहा था, करीब 100 दिन कम किए हैं, ये तो अब बधाई के पात्र है ही है और मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह एक इक्विटी रिफॉर्म भी होगा। साथियों, आप सभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं।
पिछले 10 साल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जिसमें देश के सभी सीएस 3 दिन साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार से 3 दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्लॉस लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका उपयोग हमारी अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था लेकिन आज गांव और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी की हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में
अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में

0: जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अभी संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध करना है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है, उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यही उसकी पहचान है। ये मूल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, said that he spoke to the parents and the spouse of Captain Smith Machar, who saved many lives in an aircraft that was on its way from Dubai to Israel yesterday. And he said that this displays India's commitment to peace and to fight terrorism. The Prime Minister said that he was pleased to see a photograph of Netaji Subhash Chandra Bose, who appeared and passed the 1920 UPSC examination, and he had appeared for the exams and wrote the paper in Sanskrit. The Prime Minister observed that the Union Public Service Commission played a pivotal role in shaping the roadmap of our bureaucrats and our police officers. He said that the coming 2 decades would be extremely significant for every citizen and every institution as India embarks on Viksit Bharat. During Viksit Bharat governance, UPSC and state PSCs will play a great role. He said that touchstones should be remembered by the civil servants. The first is nation first and the other citizen first. 2047's India will be totally different from now. Nagrik Devo Bhava should be the mantra of every civil servant, as it is the mantra of the government. Service to citizens should be the top priority of officers of the central and state governments. Citizens require quick solutions to their grievances. The examination cycle's timeline may be brought down further, observed the Prime Minister. He urged the Commission to standardize processes and procedures and said that UPSC is the link between Yuva Shakti and Rashtra Shakti.
2: Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Lok Seva Aayog ke Shatabdi Samaroh ko sambodhit kar rahe the. Is avsar par Mananiya Pradhan Mantri ne UPSC ki aitihasik yatra, लोक सेवा की भूमिका और देश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने इस समय युवाओं और लोक सेवा में उनकी भूमिका की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में प्रतिभा, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया। श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित समारोह संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करता है।

1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई यात्रा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चरण और स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संवैधानिक स्वरूप, इन सभी प्रयाणों से गुजरते हुए यूपीएससी ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया। आज का यह समारोह अतीत की विरासत को स्मरण करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए नई सोच, नई दिशा पर विचार करने का एक अवसर भी है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष प्रसारण से मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: अभी आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, स्वागत करती है बहुत बहुत आपका आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनते हैं वो कौन थी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा बेगम, हृदया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, सायमा खान, पोत्रा मुस्तावा खान, पोत्री अफिया खान, राहु भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटेनकर, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। और साथ ही ये खत हमारे हाथ में है रथचौक बहादुरपुर जिला जलगांव से। और हमारी ये भेजने वाले श्रोता हैं संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंडगवाड़, रविंद्र सोनार, सुन्नी मुन्ना, बंडू दादा और साथ ही साथ सुलताई माता नगर 40 गांव से पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखाताई सूर्यवंशी, नीरज ठाकुर, आरती ठाकुर और कुमारी नव्या।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। ये खत हमें मिला है ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौद सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहरदा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, मोहम्मद हलवाईना शेरकोटा जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर और पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी और तिवरता डबरी पारा से ये हमारे श्रोता है महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र मरकाम और जयंती मरकाम। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाह रहे हैं धनवान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में नीरज की लिखी गीत रचना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कन्यादान फिल्म से। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा सेफाली, जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से, राजेश, रेखा साव, कमलेश, रावी साहू, हनी, हिमांशु, डिम्पी, संजल साव, और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे, और ये खत लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से है, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू का। और इसी गीत की फरमाइश है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता और बनोजिया, अरुण बनोजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। तो इन सभी की पसंद पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गीत, जिसकी फरमाइश हमें मिली है खतों के माध्यम से।

और श्रोताओं, अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, और इस गीत को हमने लिया है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से, और इसकी फरमाइश खतों के माध्यम से हमें मिली है ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, राजकोट जयराज प्लॉट से ये हमारे श्रोता हैं, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज, और कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और ये एक खत और हमारे हाथ में है, जालौन उत्तर प्रदेश का ही है, दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका पूरा परिवार।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बावर्ची फिल्म का गीत मन्ना डे और असरानी की आवाज़ों में। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है और संगीत मदन मोहन का है। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक, मीका बीरक और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित और थाना रोड बक्सर से ही ये पत्र है ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानविका। और ये अंतिम पत्र हम शामिल कर रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। इन सभी की पसंद पर बावर्ची फिल्म का ये गीत।

मन्नाडे के गाए बावर्ची फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। संग्रहालय से लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। आज इस रेडियो धारावाहिक की 13वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी और आज की कहानी है नीलम की चीज़।

0: अरे भाई भोला राम जी, ये बरसात तो बहुत जोर की हो रही है।
1: हाँ कृपा शंकर, दो दिन से सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं।
0: ठीक कह रहे हो। अरे भाई भोला राम जी, एक बात तो बताओ।
1: पूछो।
0: ये अपने गंगाधर जी को सभी लोग शास्त्री जी क्यों कहते हैं?
1: अरे कृपा शंकर जी, अभी तबादला होकर आए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम।
0: क्या नहीं मालूम?
1: ये कि गंगाधर शास्त्री को लोग शास्त्री क्यों कहते हैं।
0: भाई मैं यहाँ अभी तबादला होकर आया हूँ और तहसील कार्यालय में मुलाजिम हूँ, इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें लोग शास्त्री क्यों कहते हैं। शायद उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की हुई होगी।
1: अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है।
0: भाई आपने तो रहस्य और भी गहरा कर दिया। अब तो मुझे जानना ही है कि लोग उन्हें शास्त्री क्यों कहते हैं।
1: तो एक बात और सुनो।
0: क्या बताओ?
1: उन्होंने शास्त्री वाला सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है और ये पढ़े लिखे भी कम हैं।
0: क्या बात करते हो भोला भाई, कम पढ़े लिखे हैं और शास्त्री नाम के साथ लगाते हैं।
1: यही तो बात है, पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर और नाम के साथ शास्त्री।
0: भाई वाह। ये बात तो समझ में आई कि ये पढ़े लिखे कम हैं, परंतु शास्त्री ये बात समझ के परे हैं।
1: अरे कृपा शंकर जी, इनके दादा के दादा संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए शास्त्री उपनाम इनके खानदान को मिला हुआ है।
2: पंडित गंगाधर शास्त्री थे तो कम पढ़े लिखे, परंतु शास्त्री कहलाते थे।
3: शास्त्री कहलाने का कारण ये था कि उनके दादा के दादा संस्कृत के विद्वान थे।
2: गंगाधर शास्त्री 35-36 रेलवे स्टेशनों के खोमचों के ठेके लिए हुए थे।
3: उनका एक ही पुत्र था वैतरणीधर, जो अब शादी लायक हो चुका था।
2: पंडित जी उसके लिए उपयुक्त वधु की खोज कर रहे थे, साथ ही वो ये भी देख रहे थे कि खानदान ऊंचा हो, घर बार भी खाता पीता हो, ताकि बहू के साथ भरपूर दहेज आ सके।
3: पंडित जी की खोज सार्थक हो गई, एक अच्छा परिवार मिल गया। समधी बहुत बड़े तालुकेदार थे, उनका नाम हम समय आने पर बताएंगे।
2: दोनों समधियों को भगवान ने अतिरेक दिया था, दोनों में अंतर था तो केवल संतानों की संख्या का। पंडित गंगाधर की पत्नी केवल वैतरणीधर को ही जन्म दे सकी थीं।
3: इधर तालुकेदार साहब को कोई 7 लड़कियां नसीब हुई थीं। आइए सुनते हैं कि भोला राम और कृपा शंकर आगे क्या बात कर रहे हैं।
0: भाई इतना

0: इतना तो हम जान गए कि आपके पंडित गंगाधर कम पढ़े लिखे हैं और शास्त्री इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके दादा के दादा संस्कृत के विद्वान थे।
1: बिल्कुल सही।
0: हमें तो आपसे ये भी पता चला है कि उनका एक ही पुत्र वैतरणीधर है जिसका विवाह तालुकेदार की पुत्री से तय हुआ है और
1: और उनकी 6 सालियां हैं। और सुनो, पूजा करते समय अपने पंडित जी तिलक से केवल टीका नहीं लगाते हैं
0: तो फिर
1: वो तिलक से सारा कपाल ही पोत डालते हैं। अब मैं उनकी रुद्राक्ष की माला के बारे में बताता हूँ।
0: अच्छा, तो उनकी रुद्राक्ष की माला भी विशेष है।
1: हाँ भाई, माला के रुद्राक्ष विशेष हैं। वो इतने कटीले हैं कि उनके कटीलेपन से गाय का बछड़ा भी गला छिल जाने के डर से अपने गले में उस माला को पहनने पर घबरा कर भागने लगता है। और सुनो, जब वैतरणीधर अपने पूज्य पिताजी की माला को या तो विनोदवश या उसका उचित स्थान जानकर किसी पड़ोसी की गाय के बछड़े के गले में डालने लगता है तो बछड़ा रस्सा समझकर भागता है।
0: वाह भोला भैया वाह। भोला भैया, आप चित्र खींचने में उस्ताद हैं। मैं आपकी इस कला से बहुत प्रभावित हूँ।
1: अरे अब मैं आपको उनकी पूजा करने की विधि के बारे में विस्तार से बताता हूँ।
0: क्या क्या क्या, पूजा का तरीका भी विशेष है?
1: हाँ भाई, पंडित गंगाधर जब शाम केवल हरि पूजा पर बैठते हैं तब षोडशोपचार पूजन में नीम की लकड़ी घिस घिस कर शालिग्राम शिला पर चंदन चढ़ाते हैं।
0: क्या बताया, नीम की लकड़ी घिसकर?
1: हाँ, अक्षत में चावल का एक कण चढ़ा देते हैं।
0: क्या, केवल एक चावल का दाना?
1: अरे जी हाँ, सुनते जाइए। पुष्प और धूप का काम वो एक नींबू के झाड़ की टहनी से लेते हैं। वे डाली को भगवान पर झुकाकर उसके पुष्प को नित्य चढ़ा दिया करते हैं और कह देते हैं, पुष्पम धूपम समर्पयामि।
0: भाई वाह।
1: और जब दीप की बारी आती है तो पंडित जी शुद्ध घासलेट के तेल की दूर जलती हुई टिमटिम दानी की तरफ उंगली दिखाकर कह देते हैं, दीपम समर्पयामि।
0: भाई, जब वो इतने कंजूस हैं तो वो नैवेद्य क्या चढ़ाते होंगे?
1: अरे वाह, नैवेद्य की आपने खूब याद दिलाई। भगवान के नैवेद्य की तो उनके घर में परमानेंट यानी स्थायी व्यवस्था है।
0: भाई, ये स्थायी व्यवस्था क्या है?
1: सुनो, दो सूखे हुए छुहारों की वो दलेल बोल दी जाती थी कि जब तक वैतरणीधर उन्हें चुरा कर ना खा जाए तब तक वे नित्य भगवान के भोग के लिए रख दिए जाया करें। अरे लो भाई, बारिश भी रुक गई।
0: हाँ भाई,
2: तो कुल मिलाकर बात ये थी कि पंडित जी जरा खर्च कम ही किया करते थे।
3: इतने में आ गई वैतरणीधर की शादी। वो किस धूमधाम से हुई ये कहना व्यर्थ है।
2: तालुकेदार साहब ने अधिक लड़कियां होने से यदि कार्य को सूत्र रूप में निपटाया तो पंडित गंगाधर जी ने एकाक्षर ब्राह्मण ओम की तरह अपना अंगूठा टेढ़ा कर भरी सभा में दिखाते हुए तालुकेदार साहब के सूत्र को मंत्र का रूप दे दिया।
3: विवाह में एक विचित्र घटना हो गई। जिस समय सारा ब्रह्म वृंद तालुकेदार साहब की चौपाल में भोजन करने के लिए बैठा, उस समय पहले तो कच्ची यहां नहीं पक्की वहां नहीं के संग्राम से निपट कर किसी प्रकार लोगों ने अपना खाना शुरू किया।
2: तालुकेदार साहब का नाम अब अधिक समय के लिए छुपा कर उनके साथ अन्याय करना उचित नहीं जान पड़ता।
3: उनका नाम था हलधर प्रसाद।
2: वे बहराइच तहसील बोर्ड के सभापति और अपने इलाके के पहले दर्जे के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे।
3: खैर, तो उनके पास एक नीलम जड़ी हुई सोने की अंगूठी थी। उसे पहनती तो थीं अक्सर तालुकेदारिन साहिबा, और जरा विशालकाय होने के कारण उनकी छिगुनी में वो ठीक बैठती भी थी।

0: अजी सुनती हो?
1: क्या है जी, क्यों शोर मचा रहे हो?
0: अरे भाई, मैं कह रहा था वो नीलम की अंगूठी कहाँ है?
1: ये पहन तो रखी है मैंने, शिगुनी अंगुली में।
0: अरे लाओ लाओ, इसे मुझे दे दो।
1: नहीं नहीं, क्यों?
0: अरे भाई, अपने घर में शादी है बिटिया की, है? समाज के लोग आएंगे, उसे हम पहनेंगे तो लोगों पर खूब रौब पड़ेगा। हाँ,
1: अब तो रौब ही पड़ेगा।
0: क्या मतलब है आपका?
1: मतलब ये कि जवानी में आप पर ये अंगूठी खूब फपती थी, अब केवल रौब ही डालती है।
0: अरे भाई, जवानी की बात अलग थी भाई।
1: हाँ जी, जवानी में आप थे भी तो कितने खूबसूरत, माल गुजार के सुपुत्र, और उसी गांव के निवासी होने के कारण ये अंगूठी आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती थी।
2: देखने वाले, आज के हल्दर जी का बनना सवरना, ओढ़ना पहनना सह जाते थे, क्योंकि एक तो वो ऑनररी मैजिस्ट्रेट थे, दूसरे वो इलाके के ताल्लुकेदार भी थे। इस समय उनकी उम्र 50 को पार कर चुकी थी। नए लड़के उनकी अंगूठी पर खूब हंसा करते थे, इसलिए वो विशेष अवसर पर ही इसे पहनते थे।

0: स्वजातीय लोग भूख नामक शत्रु का पता पाकर और उसे पेट में छुपा देखकर तरह तरह के प्रहार कर रहे थे।
1: बूरे के बारूद, पूरियों के चक्र, लड्डुओं के बम गोले, सभी से शत्रु पर वार किया जा रहा था।
0: जो कमजोर थे वो बूरे का बारूद, पूरियों के चक्र और लड्डुओं के बम गोलों के स्थान पर शाक तरकारियों का कीचड़ ही शत्रु पर अधिक फेंक रहे थे। ये सब देखकर श्रीमान हल्दर प्रसाद मन ही मन गर्व कर रहे थे।
2: बारे मैं, कितने सजातीय बंधु मेरे यहाँ भोजन कर रहे हैं, है किसी मतलब है? अरे कोई है? लाओ लड्डू लाओ, श्याममुख शास्त्री जी को परोसो।
0: हल्दर प्रसाद बार बार परोसने वालों को पुकारते और भिन्न भिन्न सज्जनों की थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसने को कहते।
1: चूंकि वो नीलम की अंगूठी तर्जनी में ही पहने हुए थे, अतः भोजन का आग्रह और नीलम की अंगूठी का प्रदर्शन दोनों साथ साथ ही होता चल रहा था।
0: ताल्लुकेदार साहब का ये कृत्य उनके समधी और दूल्हे के पिता पंडित गंगाधर जी को अच्छा न लगा।
1: उन्हें ये अपमानजनक मालूम हुआ कि लड़के के पिता के सामने नीलम की अंगूठी दिखाकर वो अपना बड़प्पन जता रहे थे। वे दूर एक चारपाई पर बैठे तंबाकू खा रहे थे और अपने आसपास की जमीन पर अपने और अपने साथियों के लिए थूक थूक कर कुंभी पाक नरक का निर्माण कर रहे थे।
0: वे तुरंत उठे और जियोनार के बीचों बीच आकर अपनी गर्मी के दिनों में भी पहनी हुई रुई की बंडी बाहर उतार कर खड़े हो गए।
1: उनके हाथ में कोहनी के ऊपर और कंधे के नीचे भुजा पर एक सोने का कंकड़ था। उन्होंने अपनी भलाई की तरह गीली चमड़ी पर से किसी प्रकार कंकड़ कोहनी पर सरकाया और तालुकेदार साहब ने ज्यों ही नीलम अंगूठी वाली तर्जनी को आगे बढ़ाकर कहा,
2: अरे भाई यहाँ इमारती परोसो।
0: तभी पंडित गंगाधर ने चिल्लाकर और अपना हाथ मोड़कर सोने के कंकड़ को आगे करके कंकड़ समेत कोहनी हिलाते हुए कहा,
3: अरे इधर देखो जी, यहाँ माल पोए परोसो। अरे हाँ, कब तक देखा जाए किसे भोजन मिल रहा है किसे नहीं।
0: लोगों पर आफत टूट पड़ी, उन्हें खाना और हंसना दोनों एक साथ करना पड़ रहा था। ताल्लुकेदार साहब तो अंगूठी पर कंकड़ की चढ़ाई देख ऐसे गायब हुए कि फिर उन्होंने मुंह नहीं दिखाया।

पंडित गंगाधर शास्त्री अपने घर चांद सी बहू लेकर आ गए। वैतरणीधर और उसकी माताजी श्रीमती पार्वती बाई बेहद खुश थे।

0: अम्मा, बुआ भी अपने घर विदा होने को है।
1: हाँ बेटा, वो कितने दिनों में आई है। दीदी को विदा में एक गाय देनी चाहिए।
0: ये अच्छा रहेगा अम्मा, वैसे भी रिवाज के अनुसार गाय देना ही ठीक रहेगा। और अपने घर में भी तो गाय है ना, क्यों ना बुआ को विदाई में वही दे दें।
1: पर तेरे पिताजी नहीं मानेंगे।
0: क्यों अम्मा?
2: क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं?
1: वैतरणीधर कह रहा था कि दीदी को विदा में अपनी गाय दे दें।
2: नहीं नहीं, हम वो नहीं देंगे। अरे भाई, वो हमारे घर के सदस्य की तरह है, बहन के लिए हम दूसरी गाय ले आएंगे।
0: पिताजी, सुना है मवेशियों की नीलामी होने जा रही है।
1: अगर मवेशियों की नीलामी होने जा रही है तो आप वहीं से क्यों ना एक गाय ले आते हैं।
2: वैतरणी ने कह दिया और तुम एकदम राशन पानी लेकर दौड़ गई हैं? अरे मैं पता करता हूँ कब नीलामी हो रही है, अगर सस्ते में गाय मिल गई तो लेता आऊंगा।
3: दूसरे दिन शास्त्री जी अपने गांव की प्राइमरी पाठशाला के पास से निकले। वहां करीब ही पोस्ट ऑफिस, स्टाम्प बिक्री की दुकान और एक कांजी हाउस भी था।
4: उस समय स्कूल के दरवाजे पर कुछ मवेशी नीलाम के लिए खड़े थे। एक चौपाया नीलाम पर चढ़ा था और कुछ लोग उस पर बोली लगा रहे थे।
3: स्कूल ऊंचे टीले पर था और उसी के नजदीक टीले पर होकर सड़क जा रही थी जिससे गंगाधर शास्त्री जा रहे थे। उन्होंने देखा।
5: भाई, इस जानवर की बोली शुरू करते हैं।
6: हाँ भाई, हाँ करो, लगाइए करिए करिए,
5: शुरू कर रहे हैं। एक रुपए से?
6: अच्छा, एक रुपए से?
5: हाँ, एक रुपए,
6: एक रुपए चार आना,
5: एक रुपए चार आना,
6: एक रुपया आठ आना,
5: एक रुपए आठ आना,
6: एक रुपए बारह आने,
5: इधर से एक रुपए बारह आना,
6: दो रुपया।
5: हाँ भाई, दो रुपए, दो रुपए से ऊपर है कोई? दो रुपए एक,
7: दो रुपए चार आना,
5: दो रुपए चार आना।
6: भैया, दो रुपए आठ आना। भैया,
5: हाँ भाई,
6: मेरी तरफ से तीन रुपया।
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
6: साढ़े तीन रुपए,
5: साढ़े तीन रुपए एक। बोलिए भाई, साढ़े तीन रुपए दो है कोई? बोलिए भाई, साढ़े तीन रुपए दो।
2: बछड़ा हो या बछिया, चार रुपए में महंगा नहीं पड़ेगा।
8: अरे अरे भाई, मेरी तरफ से चार रुपया।
5: हाँ भाई, है कोई? चार रुपया है, चार रुपए दो, चार रुपए तीन।
3: शास्त्री जी तो चार रुपए लगाकर चले गए। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस पर बोली लगाए हैं। जब बोली खत्म हुई तो तहसीलदार साहिबा ने पूछा,
9: ये जानवर किसने खरीदा?
10: जी, पंडित गंगाधर शास्त्री ने खरीदा है हुजूर।
9: उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी?
10: जी हुजूर, सबसे ज्यादा चार रुपए।
9: लाओ, कागजात लाओ, मैं उनकी मिल्कियत इस पे दर्ज कर देती हूँ।
10: जी हुजूर, ये रहे कागजात।
9: पंडित शास्त्री को बुलाओ और उनकी अमानत उन्हें सौंप दो।
10: जी हुजूर।
5: पंडित गंगाधर शास्त्री हाजिर होकर तहसीलदार साहिबा से अपना जानवर ले जाए। पंडित गंगाधर शास्त्री हाजिर होकर तहसीलदार साहिबा से अपना जानवर ले जाए।
10: हुजूर, शास्त्री जी तो शायद घर चले गए।
9: कृपा शंकर, पंडित गंगाधर शास्त्री हमारे ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हल्दर प्रसाद जी के समधी हैं
10: जी,
9: इसलिए इस जानवर को उनके यहाँ इज्जत से पहुँचा दो और नीलामी के चार रुपए लेते आना।
10: जी हुजूर, मैं अभी पहुँचा आता हूँ। ए दीनो, इसे हाथते हुए ले चलो।
6: ठीक है।
3: दीनो, जो कांजी हाउस का चरवाहा था, वो नीलामी में खरीदे जानवर को हांकता हुआ शास्त्री जी के घर की तरफ चल दिया। साथ में जरूरी कागजात लिए कृपाशंकर भी चल रहा था।
4: पंडित जी के घर आकर कृपाशंकर ने दो तीन बार दरवाजा थपथपाया।
2: अरे कौन है भाई, अरे कौन है भाई?
5: जी मैं हूँ कृपाशंकर, तहसील का मुलाजिम। आपका नीलामी में खरीदा जानवर लेकर आया हूँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, गाय ले आए? ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ।
3: इस समय लोगों की भीड़ का क्या कहना, उससे दसवीं भीड़ भी नीलामी की जगह पर नहीं थी। शास्त्री जी ने नीलामी में खरीदा जानवर देखा तो झल्ला कर बोले,
2: क्या मैंने ये जानवर खरीदा है? ये जानवर, ये गधा? क्या मैं बर्तन बनाकर बेचता हूँ? क्या मैं कपड़े धोता हूँ जो ये गधा खरीदता है?
10: देखिए शास्त्री जी, ये मैं नहीं जानता, आपने 4 रुपए इसी के लगाए थे। हाँ, और देखिए तहसीलदार साहिबा ने आपके नाम पर बोली खत्म कर दी, और मुझे 4 रुपए दीजिए, मैं रसीद ला दूंगा, और ये गधा संभालिए बस। हाँ।
2: अरे अरे, मुझे बताना तो चाहिए था कि बोली गधे पर लग रही है, हैं?
10: आप वहाँ ठहरे भी कहाँ, न जानवर देखा और न उसके बारे में मालूमात की, बस बोली लगाई और घर चले गए। तहसीलदार साहिबा ने आपको बहुत ढूंढवाया, जब नहीं मिले तभी तो मुझे आपके घर भेजा है।
2: देखो भाई, मैं तो ये गधा नहीं लूंगा।
10: तब तो आपको तहसीलदार साहिबा के पास चलना होगा।
2: ना रे बाबा ना, रुपया चाहे 4 के 8 ले लो, पर एक तो मुझे गधा न दो, दूसरे मुझे तहसीलदार साहिबा के पास न ले चलो भैया।
0: पिताजी, आप खुद तहसीलदार साहिबा के पास चले जाएं और साफ साफ कह दें। भोला चाचा, आप भी पिताजी को कहिए ना।
11: हाँ शास्त्री जी, आप गधे को ले जाकर तहसीलदार साहिबा से साफ साफ कह दें, ये सब भूल से हो गया है।
3: इतने में चर्च के पादरी जी वहाँ आ गए।
12: शास्त्री जी, हमारे धर्म में गधा बुरा नहीं माना जाता है।
2: जी, तो आपके धर्म में गधा कैसा माना जाता है?
12: मुझे कहते दुख है कि आप लोग गधों के गुणों को नहीं जानते। ग्रीस देश की कुछ जातियां गधों को बहुत पवित्र प्राणी मानती थी और वहां उनकी पूजा की जाती थी।
2: धन्य पादरी साहेब, बड़े वक्त पर पधारे आप।
12: ग्रीस देश में एक गधे ने अपने युद्ध में गए हुए स्वामी के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए वो गधा प्राण रक्षक की तरह माना गया।
2: अरे यहां एक तरफ बांध रहे गधा, मुझे पादरी साहब के उपदेश सुनने दे।
12: पर्शिया के राजा ओजस का एक गधा था, उसे उसने इतना पवित्र माना कि उसका एक मंदिर ही बनवा दिया। फिर सारी जनता उस खर प्रतिमा की पूजा करने लगी। ग्रीस देश में ही निकॉन नाम का एक गधा सवार सेनानी गधे पर चढ़े हुए ही एक युद्ध जीत गया। वो व्यक्ति ग्रीस के धार्मिक इतिहास में विजेता निकॉन के नाम से

0: प्रसिद्ध है। अरे वाह, जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो ग्रीस के सम्राट ने उस गधे के पूरे कद का एक तांबे का पुतला बनवा दिया था।
1: पादरी साहब, अब मैं और धीरज नहीं रख सकता।

0: बिल्कुल ठीक बात
1: पंडित जी 4 के 8 ले जाने का कहते रहे, परंतु कृपा शंकर ने उनकी एक न सुनी, 4 के 4 ही लिए और चला गया।
2: लोगों की शरारत शुरू हो गई। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और कपड़े धोने वाले को तैयार कर लिया, यहां तक कि कांजी हाउस वाला भी उनका साथ देने इस मस्ती में तैयार था।
1: इसका परिणाम ये हुआ कि पंडित जी गधे को किसी को भी नहीं बेच सके और ना ही पुनः कांजी हाउस बेच पाए।
2: शास्त्री जी ने गधे को 10-5 मील दूर छुड़वा भी दिया, पर दुर्भाग्य की जय, वो ईमान का पक्का प्राणी फिर संध्या को शास्त्री जी के खूंटे पे हाजिर।
3: अरे ये तो फिर आ गया। अरे क्या करूं, इसे कहां छोड़ूं? अरे मेरे बाप, पीछा छोड़ मेरा। अरे कोई है जो इससे मेरा पीछा छुड़वाए?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 13वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर नागरिकों से वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा में योगदान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में अनेकों बदलाव के बाद भी भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन उपार्जन के लिए 3 से 17 अक्टूबर तक ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किए जा सकेंगे। किसानों को पंजीयन के लिए सभी पंचायत, तहसील और सहकारी समितियों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर कल से 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा सेतु अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रशासनिक दलों द्वारा ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वर्ष 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की है। वहीं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 3 योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निर्णय नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत अधिकारियों को हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने और हर माह समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस और

आबकारी विभाग संयुक्त कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार मानो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। मैं अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकालकर आप आ जाइए हमारे साथ, यानी अपने रेडियो सेट के नज़दीक। आपकी अपनी बातों के साथ और कुछ जानकारी लेकर मैं आ गई हूं, और साथ में ले आइए घर के बड़े बुजुर्गों को भी अपने साथ, जिन्हें आप अकेला नहीं छोड़ पा रहे या जिनकी आपको फिक्र है। वैसे एक बात तो है बहनों, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारे माता पिता, घर के बुजुर्ग हमारी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ते। स्वयं असमर्थ होने पर भी वो आपसे हमेशा यही पूछते हैं कि बेटा खाना खाया, बच्चों ने खाना खा लिया, या फिर नियत समय पर आने वाला थोड़ा सा भी देर होने पर पूछते हैं कि क्या हुआ, आज देर कैसे हो गई, रास्ते में कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई। यही तो उनका प्यार है। जिंदगी के इस पड़ाव में वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें, इसके लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनसे थोड़ी बातें करते रहें, थोड़ी उनकी सुनें, उनके अनुभव, उनका जीवन संघर्ष, उनका धैर्य संयम, उनकी सीख निश्चित ही हमारे लिए लाभदायक रहेगी। बहनों, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसमें 16 दिन की वो अवधि जिसमें हिंदू अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, उन्हें जल देते हैं। यही तो हमारी भारतीय परंपरा है। तो हमारे जीवित बुजुर्ग पूर्वज जो सदा आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वृद्ध हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, साथ ही हमारे समाज के लिए पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार भी होते हैं। जिस क्षेत्र में उनकी विशेषता रही है, उस क्षेत्र में उनसे मदद लेने पर अपने आप को वो निश्चित ही सम्माननीय समझेंगे। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इस दिन को नामित किया था, और पहली बार 1 अक्टूबर 1991 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। इसको मनाने का उद्देश्य ही यही था कि दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ होने वाले भेदभाव, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोका जा सके, साथ ही समाज में उनके योगदान, ज्ञान और गरिमा का सम्मान किया जा सके, वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों, उनके अनुभवों के प्रति आभार जताया जा सके, और उनके स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा सके। वृद्ध मनुष्य जीवन की खुली पुस्तक के समान होते हैं, बस हम उनसे जो चाहे ले सकते हैं। सदैव अपने आप को उनके सानिध्य में ही रखें। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दीजिए, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दीजिए, फल ना देगा ना सही, छाया तो देगा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हजार है, आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: मैंने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत सरकार का एक डिजिटल और बहुआयामी मंच है जिसे अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। ये योजना देश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि ये सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग, जल परिवहन और बिजली नेटवर्क जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के डेटा को एक ही मानचित्र पर जोड़ता है। इससे अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बढ़ता है और जिससे परियोजनाओं को पूरा होने में देरी नहीं होती और लागत भी बचती है। मैंने इस योजना को बाइसेग एन भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये क्लीन एनर्जी और सबका प्रयास से संचालित है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर की मिलकर की गई कोशिशें, जिसमें सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए नौकरी और एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े मौके मिलते हैं। बहनों, जब हम अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में रचते हैं तो या तो कहानी बन जाती है या कविता का रूप ले लेती है। तो बहनों, हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते हैं कथा कुंज क्रम में कहानी। तो आज की कहानी है सौगात। कहानीकार है श्री बी डी बजाज।
1: सौगात, उसे यह अजनबी शहर जहां वो पहली बार आया था अपने शहर से बहुत सुंदर एवं शांत तथा सुखी लग रहा था। छत की मुंडेर पर खड़े होकर वो आसमान में टिमटिमाते तारों को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी अजनबी चीज को देख रहा हो। हल्के हल्के हवा के झोंकों के स्पर्श से वो आनंद विभोर हो उठा। तभी अचानक उसकी नजर दूर, बहुत दूर, पेड़ों के झुंड पर कलात्मक ढंग से लगी रंग बिरंगी टिमटिमाती बिजली की झालर पर जा पड़ी। वो बहुत खुश हुआ और अपने शहर की तुलना इस शहर से करने लगा। तभी अचानक किसी बूढ़े के भयानक खांसने की आवाज उसके कानों को छेदती हुई निकल गई। वो घबराकर छत के नीचे झांकते हुए इधर उधर देखने लगा, किंतु नीचे अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो कुछ सोच ही रहा था कि नीचे से मामी की आवाज आई, राजेश नीचे आओ, खाना लगा दिया है। खाना खाने के बाद राजेश ने चाहा कि वह फिर छत पर जाए और पता लगाए कि ये भयानक खांसने की आवाज किसकी थी, पर राजेश की हिम्मत नहीं हुई। वो बिस्तर पर अचेत सा लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वो किसी पत्रिका के पन्ने पलटते हुए करवटे बदलता रहा। अब वो सीधा लेटा हुआ था, उसकी आंखें छत की ओर शून्य में जा टिकी। वो फिर सोचने लगा। अचानक उसकी आंखों में एक आकृति तैरने लगी जिसे वो मन ही मन रूप देने लगा कि एक वृद्ध जिसने शायद कई दिनों से खाना नहीं खाया हो, जिसका पेट पीठ से चिपका हुआ, गाल दाढ़ से सटे हुए, बाल एवं दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई हो और आंखें फाड़े फटे पुराने बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश कर रहा है, किंतु उसकी खांसी उसे उठने नहीं दे रही। उसने आंखें मूंद कर उस काल्पनिक तस्वीर पर कालिख फोड़ दी और गहरी निद्रा में विलीन हो गया। आज फिर वो छत पर निडर होकर घूम रहा था। कल के हादसे को उसने जैसे तैसे भुला दिया था। अचानक उसके कानों पर किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आई। वो फिर छत के नीचे झांक कर देखने लगा। इस बार उसे टिमटिमाती हल्की रोशनी के बीच नीचे कई छोटे छोटे घर दिखाई दिए। कान लगाने पर उसे कुछ इस तरह समझ आया कि एक माँ अपने बच्चे से हिसाब ले रही है। उस बच्चे का नाम अन्नू है जो एक सिनेमा हॉल के पास चाय की घुंटी लगाता है। आज अनु के हाथ से 2 लीटर दूध गिरकर नुकसान हुआ था। नाराज होकर उसकी माँ उसे डांट रही थी। ये हादसा भी उसके लिए सोचने का मुद्दा बन गया। उसे लग रहा था कि उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उसने तय किया कि वो आगे छत पर कभी नहीं आएगा। राजेश इंटरव्यू हो चुका था।

0: आज वो घर लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने मामी के चरण स्पर्श कर विदाई ली, तभी उसकी मामी ने उसे थैले में एक मिठाई का डिब्बा दिया और कहा, ये सौगात पड़ोसन दे गई है, उसकी बिटिया अनीता तुम्हारे मोहल्ले में ब्याही है। अशोक नाम है लड़के का। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उन तक पहुँचा दूंगा, कहते हुए राजेश ने थैला मामी से ले लिया। ट्रेन में बैठे बैठे वो गुजरे दिनों की याद में गुम हो गया। उसे बारी बारी गुजरे दिनों की घटनाएं याद आने लगी, बूढ़े की भयानक खांसी, बच्चे का सबक कर रोना। फिर उसे अचानक याद आया, वो जब अपने मित्र की दवाई की दुकान पर बैठा था तब एक महिला ने आकर 200 रुपए की दवाई ली थी। फिर कुछ सोचकर उसने 100 की दवाई वापस करके सामने मिठाई की दुकान से मिठाई ली थी। तब वो सोचने लगा, कितना अंतर है दवाई और मिठाई में, दोनों का क्या संबंध है आपस में। वो समझ नहीं पाया, सोच सोच कर उसका सर चकराने लगा। विचारों से पिंड छुड़ाने के लिए वो खिड़की के बाहर प्रकृति के सौंदर्य को निहारने लगा। अब वो अपने घर पहुंच गया था। नहाकर भोजन करने के पश्चात उसने थैला उठाया और अनीता के घर देने निकल पड़ा। उसके घर पहुंचकर उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, तभी किसी महिला ने कुंडी खोली जो इस समय पोछा लगा रही थी। राजेश ने पूछा, क्या अनीता आप ही हैं जिसका मायका भोपाल में है। अनीता ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और राजेश को बैठने को कहा। अनीता को देखकर राजेश गजब में पड़ गया, सोचने लगा, क्या ये वही अनीता है जो कुछ वर्ष पूर्व ब्याह कर हमारे मोहल्ले में आई थी, जिसके खूबसूरती और संस्कार की चर्चा सारे मोहल्ले में हुई थी। जब अनीता ने सुना कि राजेश भोपाल से उसके मायके से मिलकर आया है, वो बहुत खुश हुई और एक ही सांस में उसने पूछ लिया, कैसे थे मम्मी पापा, पापा की खांसी ठीक थी ना, अब पापा को पेंशन तो समय पर मिलती ही थी ना, अनु कैसा था, अरे हाँ अनु की चाय की दुकान ठीक चल रही थी ना। कहकर अनीता आशा भरी नजरों से अच्छा समाचार सुनने के लिए राजेश को निहारने लगी। ये सुनकर राजेश हतप्रभ रह गया, उसके पास अनीता के सवालों का जवाब नहीं था। घटना के बाद घटना उसे याद आने लगी, वो उलझ सा गया। एक पल रुककर उसने अनीता का दिल रखने के लिए कह दिया, हाँ सब ठीक था, कहते उसने मिठाई का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी मम्मी ने सौगात भेजी है। अनीता ने जैसे ही मिठाई का डिब्बा लिया, तभी उसकी सासू माँ आ गई। अनीता ने सासू माँ को मिठाई का डिब्बा देते हुए कहा, ये लीजिए माँ जी ये सौगात मम्मी ने भेजी है। तभी सासू माँ ने डिब्बा लिए बिना तनक कर कहा, हाँ हाँ मालूम है, आधा किलो मिठाई क्या मिली है, ऐसे खुश हो रही है जैसे खजाना मिल गया हो। यह सुनकर राजेश अचंभित हो उठा। अनीता बर्फ के सिल्ली की तरह जम सी गई। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी, राजेश दरवाजे के नजदीक बैठा था। राजेश ने दरवाजा खोला, देखा टेलीग्राम वाला खड़ा था। राजेश ने टेलीग्राम लिया। अनीता लड़खड़ाते कदमों से राजेश की ओर बढ़ी और बोली, क्या लिखा है। राजेश ने टेलीग्राम खोला और पढ़ते हुए धीमी आवाज में बोला, सुंदरलाल एक्सपायर। यह सुनकर अनीता फूट फूट कर रोने लगी। तभी मिठाई का डिब्बा उसके हाथ से गिर गया। यह देखकर राजेश स्तब्ध रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, मित्र की दवाई की दुकान में जब वो बैठा था, वहां जो महिला दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लाई थी उसमें भी तो सुंदरलाल ही लिखा था। तभी वह सोचने लगा, रिश्तेदारी निभाने में और गिला शिकवे से बचने के लिए आदमी कितना मजबूर है कि वो अपनी जिंदगी की रक्षा से जरूरी रिश्तेदारी की औपचारिकता निभाने को देता है और अपने लिए मुसीबत पैदा कर देता है। अब उसे समझ आया दवाई और मिठाई के बीच का अंतर, जो वो कभी सोच रहा था। सोचते हुए राजेश को लगा, अब वो मामा के घर की छत पर निश्चिंत होकर जा सकेगा। अब उसे किसी वृद्ध की खांसी परेशान नहीं करेगी, न ही किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आएगी। शायद ये सारे हादसों का अंत है। तभी राजेश ने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। अनीता की सासू माँ धरती से मिठाई के पीस बीनते हुए अनीता को कह रही थी, बस करो अब ये रोना पीटना, अब क्या होगा। इस समय अनीता फूट फूट कर रो रही थी। उसको सांत्वना देने अड़ोस पड़ोस के कई लोग इकट्ठे हो गए थे। उसकी सासू माँ नजर नहीं आ रही थी, वो शायद सौगात संभाल कर रखने कमरे में गई हुई।
1: अभी हमारी बहनें सुन रही थीं कहानी सौगात। कहानीकार थे

श्री बीडी बजाज। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के साथ साथ आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, जिसे आज के दिन यानी 1 अक्टूबर को मनाते हैं, ताकि किसी व्यक्ति के जीवन में रक्त की जरूरत और महत्व को समझा जा सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1 अक्टूबर 1975 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनिटोहेमेटोलॉजी के जरिए हुई थी। आज के समय में जरूरतमंद व्यक्ति को खून देना इंसानियत का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खून देने वाला कौन है और खून लेने वाला कौन है। मैंने जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, रक्त की मांग बढ़ती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं, सर्जरी, पुरानी बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के साथ सुरक्षित रक्त की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। रक्तदान केवल एक नेक कार्य ही नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो हर रोज जीवन बचाता है। बहनों, आपके हमारे एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है, क्योंकि दान किए गए रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग रोगी की जरूरत के अनुसार किया जाता है। बहनों, रक्त की जीवन काल बहुत कम होता है। लाल रक्त कोशिकाएं केवल 42 दिन और प्लेटलेट्स केवल 5 दिन तक ही जीवित रहते हैं, इसलिए आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए निरंतर रक्तदान आवश्यक है। तो क्या आप भी सोच रही हैं, क्या मैं भी रक्तदान कर सकती हूँ? तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच है और आपका वजन 45 किलो या उससे अधिक है और हीमोग्लोबिन 12.5 से 18.5 के बीच है और आप किसी संक्रमण या लंबी बीमारी से पूर्णतः मुक्त हैं, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो आप निश्चित ही रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपने 1 वर्ष के भीतर टैटू बनवाया है, आपको डायबिटीज या उच्च रक्तचाप हो, या फिर गर्भवती हो, या फिर हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, या बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ हो, तो आप सभी को रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान न केवल लेने वाले के लिए जीवन रक्षक है, बल्कि दानदाताओं के लिए भी कई तरह से लाभदायक है। शरीर में अतिरिक्त आयरन को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, नए रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, कैलोरी तो जलाता है और शरीर के वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। जब दूसरों की मदद करते हैं तो निश्चित ही हमें भावनात्मक संतुष्टि भी मिलती है और सामुदायिक भावना का निर्माण भी होता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मेरा इस गीत के साथ ही अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और दीजिए अनुमति आपकी अपनी सखी अमृत को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत और लोक संगीत का कार्यक्रम। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में रामचंद्र अहिरवार के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में किशन भट्ट के गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। एक छोटा सा अंतराल।

0: आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। लता मंगेशकर के साथ दूसरी आवाज है किशोर कुमार की। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत खय्याम का है। फिल्म का नाम थोड़ी

अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजपूत फिल्म का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों के हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: राजपूत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने के हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार के परिजनों से फोन पर बात कर उनके साहस की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्मिथ मच्छार फिलहाल तबुक के अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य लोगों ने भी उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दरअसल दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में उड़ान के दौरान को पायलट ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छार ने हमलावर का मुकाबला किया और यात्रियों तथा क्रू की मदद से उसे काबू करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल के विकास के साथ आदर्श गौशाला के काम में तेजी लाने और सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में नई टाउनशिप और माइनिंग सेक्टर की संभावनाओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। आईटी क्षेत्र में निजी कंपनियों को पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और जबलपुर के सेमी कंडक्टर इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पंजीयन के दौरान भुगतान वाले आधार लिंक बैंक खाते में 1 रुपये भेजकर उसका सत्यापन किया जाएगा। पिछले साल करीब 7 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था और करीब 1,476 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस साल 7 से 10 लाख किसानों के पंजीयन और करीब 20 लाख टन सोयाबीन खरीदी का अनुमान है। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 3 महीने बाद आज से जंगल सफारी शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से पर्यटकों ने ताला, मगधी और खितौली जोन में जंगल का भ्रमण किया। जंगली हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए पार्क प्रबंधन ने गाइड और वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय के मुताबिक नए पर्यटन सीजन के पहले महीने की बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के बाबा महाकाल के भस्म आरती हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान का जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, चंदन, आभूषण और गुलाब के फूलों से बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित करने के बाद भगवान का राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। आकाशवाणी भोपाल में स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आकाशवाणी परिसर के उद्यान में 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने उत्साह के साथ पौधे लगाए और उन्हें पानी दिया। कार्यक्रम में क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा पी वर्धन समेत केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में मानसून प्रदेश से विदा हो सकता है। हालांकि इससे पहले कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज चमक की संभावना है, लेकिन कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी नगर निगम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने कल पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगुलामुखी मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री जन विश्वास जन संवाद शिविर आयोजित हुआ। शिवपुरी में किसानों की सुविधा को देखते हुए रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बुरहानपुर में सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इंदौर में सेवा मेरा योगदान विषय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशियंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और public@airnewsalerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
4: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और

0: निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
1: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
2: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति।

शांति का एक गाना। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, न्यानाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। और ये पत्र है धामड़ी मनोरा से लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रवचल डेरे और अनुत। इसी गाने के लिए हमारे पास में ये फरमाइश है, लिखने वाले हैं इन्होंने जगह का नाम लिखा, हाँ ये है गोवर्धन, रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत, एकनाथ काले और इन्होंने ज़िला बाझिम से ये पत्र लिखा है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का ये गाना। आवाज़ें इसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की हैं। फिल्म का नाम क्रांति है और संतोष आनंद का लिखा हुआ ये गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत।

क्रांति फिल्म के गाने के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नसीब का एक गाना। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आयशा भोसले, ऊषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यवतमाल से। लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी, स्वीटी बेबी, प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन जमप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रिया प्रणेता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़, वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, कुमारी धोनी गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ, रेडियो संघ नेहरू वार्ड, बस स्टैंड यादव मोहल्ला, सनावद, मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं पूनम फिल्म का गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, अनु मलिक का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कवई सालपुरा ज़िला बारा राजस्थान से, सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गोला बक्सर, गोला बाज़ार बक्सर से लिखने वाले हैं सिद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और

उनके परिवार के सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार आफरीदी, मोहम्मद इकबाल आफरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी, हिना कौसर और उनके परिवार के सदस्य। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से स्टार रेडियो श्रोता संघ के जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, सारा गांव सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा की। सुनिए ये गीत।

अगला गाना हमने लिया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको लिया है हमने खुदा कसम से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है थाना रोड बक्सर से, लिखने वाले हैं जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुषी, आयुष और सानवी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्रपति शंभाजी नगर से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश का ये ख़त आया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब साइमा खान, मुजतबा खान और आफिया खान, रऊफ खान और शाहिद भाई का। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है राजा बाजार

बिही या आरा से लिखने वाले हैं सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतिज्ञा केसरी, प्रतीक केसरी और ओम नंद केसरी की फरमाइश आई है, सुनवाते हैं खुदा कसम का ये गाना।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चकमा का एक गाना, आवाज़ सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफ़ी की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए फरमाइश आई है सिंहपुर बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चर डोंगरी पिपरिया से, लिखने वाले हैं दुर्गा राम साहू, अजय साहू, जय किशन साहू और उनके परिवार के सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजिए गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेग ब्रक, मीका ब्रक और उनके परिवार के सदस्य। और ये आखिरी ख़त है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन तानिया का। सुनते ही ये गाना।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो के घड़ी में 2:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार के परिजनों से फोन पर बात करके उनके साहस की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्मिथ मच्छार फिलहाल तबुक के अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल के विकास के साथ आदर्श गौशाला के काम में तेजी लाने और सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पंजीयन के दौरान भुगतान वाले आधार लिंक बैंक खाते में 1 रुपये भेजकर उसका सत्यापन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 3 महीने बाद आज से जंगल सफारी शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से पर्यटकों ने ताला मक्थी और खितौली जोन में जंगल का भ्रमण किया। आकाशवाणी भोपाल में स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान का जल अभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे नेको हैं।

मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3 बजे हैं, लीजिए सुनिए शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर, शाम 6:30 पर।

और रात 8:35 पर, और साथ ही सुन सकते हैं 9:30 पर और रात 10:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00। किसान वाणी 7:30 पर। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, ये कार्यक्रम 8:00 प्रसारित किया जाएगा। 10:00 आप सुन सकते हैं एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें कलाकार होंगे यशवंत पुगा जोशी, इनका सुनेंगे आप ख्याल गायन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:02 हुए हैं, अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद डीटीएच ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ जावेद खान। 3:02 हुए हैं, थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

निजी लोक संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं रामचरण अहिरवार और साथियों के गाए लोकगीत। इसके बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में किशन भट्ट के गाए गीत और भजन।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत, हम आपको सुनवा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पवित्र गंगा का एक गाना, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। फारूक कैसर ने इस गाने को लिखा है और एम रंगा राव और दिलशाद मलिक का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सिलसिला से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है, शिव हरी का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बगावत का गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों के हैं, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: डर समझ रहा है? नाता मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नसीब का एक गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

नसीब फिल्म के बाद आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साथ में किशोर कुमार की भी आवाज़ है, दोनों की आवाज़ में हम दीदार यार फिल्म का एक गाना। और गाने को लिखा है साहिर ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। भोपाल में आज पर्यावरण और जीवन शैली विषय पर प्री सीओपी 31 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के साथ राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा हो रही है। भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन के क्षेत्र में आज अपना पहला पदक जीता। जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल से रजत पदक जीता। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून प्रदेश से विदा हो सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने को हैं।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और लीजिए प्रस्तुत है नाटक सपना और सच। लेखक हैं उमाकांत मिश्र और प्रस्तुतकर्ता अनिल मुंशी।
1: प्रस्तुत है उमाकांत मिश्र का लिखा नाटक सपना और सच। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता ही अनिल मुंशी।

0: बबली, आज तेरे बाबूजी को बहुत समय लग रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, इनकी तो पूजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
1: कहां मां, अभी 9 कहां बजे हैं? अभी तो पूरे 2 मिनट बाकी हैं 9 बजने में। भला बाबूजी कभी अपने टाइम टेबल और नियम कायदों में चूक सकते हैं क्या?
2: ओम शांति शांति शांति।
3: अरे नीरज, ओ नीरज।

0: कहाँ हो भाई? अरे अखबार कहाँ रखा है?
1: क्यों चिल्ला रहे हैं? नीरज सो रहा है।
2: सो रहा है?
1: अरे रात देर तक पढ़ता रहा, सुबह तड़के ही सोया है। और ये रालो, आपका अखबार और ये चश्मा।
2: अरे जगाओ जगाओ उसे, कोचिंग पर नहीं जाना है क्या? ऐसे कैसे करियर बनेगा उसका? सुबह 9 बजे सोकर उठने वाले बच्चे बस सोते ही रह जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता उनके।
3: क्यों नाराज हो रहे हैं बाबूजी? और भैया की कोचिंग खत्म हुए पूरे 15 दिन बीत गए हैं।
1: कहीं आप ये भी तो नहीं भूल गए कि उसने अपनी प्रवेश परीक्षा दे दी है और MBA की परीक्षा में अभी समय है।
2: लगता है बूढ़ा हो चला हूँ। अरे मुझे तो वाकई याद ही नहीं रहा कि IIT की प्रवेश परीक्षा तो वो दे ही चुका है।
3: हाँ, और अब तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं नीरज भैया।
1: नीरज से ज्यादा इंतजार तो उस रिजल्ट का तेरे बाबूजी कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या सपने बुन रखे हैं इन्होंने तेरे भैया के करियर को लेकर।
2: एक बार मेरा बच्चा IIT में आ जाए बस, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना उसे। डिग्री, फिर टॉप की नौकरी, फिर फॉरेन पोस्टिंग, ठाट बाट। अरे यही तो करियर होता है और क्या।
4: पांडे जी, पांडे जी।
0: अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे रुकिए तो जरा,
2: लगता है चतुर्वेदी जी हैं।
4: पांडे जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: क्या बात है भाई, बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कुछ खास चल रहा था क्या?
2: अरे खास नहीं भाई, सबसे खास चल रहा था।
4: अच्छा,
2: नीरज के करियर की तैयारी में लगे थे हम लोग। हाँ
4: है? नीरज का रिजल्ट आ गया है क्या?
2: अरे बस आया ही समझो चतुर्वेदी। हाँ, हम तो उसके बाद की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे।
4: अच्छा।
1: छोड़िए भाई साहब, इन्हें तो बस रात दिन नीरज के कैरियर की ही चिंता लगी रहती है। मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए।
4: पांडे, तुम नीरज के करियर को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो यार। सालों से देख रहा हूँ तुम्हें, वही IIT, विदेश की नौकरी, चमक दमक, कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो तुम अपने बेटे को लेकर।
2: यार चतुर्वेदी, सच कहूँ तो नीरज तो मेरी जिंदगी का सपना है, एकमात्र सपना। सुन, तुझे एक राज की बात बताऊं। असल में नीरज जैसा करियर तो मैं अपना बनाना चाहता था, मगर परिस्थितियों ने साथ ना दिया, वरना आज, अरे आज यूरोप के किसी देश में बैठा ठाट कर रहा होता। हाँ,
4: ठाट क्या विदेश जाकर ही किया जा सकता है बस, हैं? क्या अपनी मिट्टी, अपने देश की जमीन पर शान शौकत की जिंदगी नहीं जी जा सकती?
1: यही बात तो मैं भी इन्हें समझाती हूँ, मगर न जाने ने विदेश का भूत क्यों सवार रहता है। चाय लीजिए भाई साहब।
2: अरे तुम लोग क्या जानो विदेशों की शान शौकत भरी खुले विचारों की जिंदगी को, यहाँ तो बस।
1: आप बस भी कीजिए, बहुत हो गया विदेशी गुणगान। गैया दरवाजे पर आई नहीं और दूध के बर्तन पहले ही इकट्ठा कर लिए। बच्चे को पास तो हो जाने दीजिए।
3: क्या मां तुम्हें भैया के सिलेक्शन पर कोई शक है? पूरे एकेडमिक कैरियर में एक भी क्लास में नंबर 2 पर नहीं रहे, हमेशा टॉप किया है मेरे नीरज भैया ने। हाँ
1: लो, अब ये भी शुरू हो गई अपने भैया के गुणगान में।
4: अच्छा भाई, मैं तो चलता हूँ, रिजल्ट आया तो मुझे भी खबर करना। नमस्कार।
2: नमस्कार
4: भाभी।

0: नीरज की माँ, आखिर ये लड़का चला कहाँ गया? पूरा एक घंटा हो गया गए हुए रिजल्ट देखने।
1: आता होगा, आप बैठ क्यों नहीं जाते एक जगह पर? जब से वो गया है तब से बेचैनी से टहल रहे हैं। क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? हो सकता है किसी दोस्त के घर चला गया हो।
2: हाँ बाबूजी।
0: अरे अरे, मगर खबर तो करनी चाहिए ना।
1: जा बेटा, एक गिलास पानी ले अपने बाबूजी के लिए।
2: जी।
1: और आप बैठ क्यों नहीं जाते कहीं? इस तरह बेचैनी से टहलते रहने से क्या जल्दी लौट आएगा नीरज?
2: लीजिए।

0: बाबूजी पानी पीजिए। माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो इसलिए भैया?
1: अरे क्या उल्टा सीधा खुदर पुदर कर रही है बबली, चुप कर।
2: हाँ बेटी, ऐसी अशुभ बात मत बोल। हे भगवान, अब तो मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। ये नीरज क्यों नहीं आया अभी तक, कहाँ चला गया?
1: लगता है नीरज का फोन होगा, उठा तो जरा बबली।
0: हाँ मैं उठाती हूँ।
2: अच्छी खबर ही देना, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है।
0: हेलो, कौन बोल रहा है?
1: अरे Hello? कौन क्या भाई? अरे नीरज होगा, पूछ रिजल्ट का क्या हुआ।
2: आप शांत तो रहिए।
0: हेलो,
2: बात तो कर रही है वो।
0: ओफो, आप लोग इतना शोर करेंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगी। हेलो, हाँ चतुर्वेदी अंकल नमस्ते जी। हमें पता चल गया, जी जी जी रिजल्ट आ गया है। भैया रिजल्ट पता करने गए हैं मगर अभी तक लौटे नहीं है। जी ठीक है, जी जी जैसे ही हमें पता लगेगा आपको जरूर बताएंगे। जी नमस्ते।
1: क्या कह रहा था चतुर्वेदी?
0: कुछ नहीं बाबूजी, भैया के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे।
1: अरे ये लड़का भी अजीब है, आधे शहर को रिजल्ट आने की खबर लग चुकी है और हजरत अभी तक रिजल्ट पता लगाकर घर नहीं लौटे।
0: ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है, डोरबेल क्यों नहीं बजा रहा?
1: अरे तू दरवाजा तो खोल बेटी।
2: काम वाली बाई होगी, वो कभी कभी घंटी नहीं बजाती, दरवाजा पीटती है।
0: अच्छा मैं खोलती हूँ। अरे नीरज भैया, आप घंटी क्यों नहीं बजाई आपने?
3: बबली तू चुप कर।
0: इतने उदास क्यों हैं आप, रिजल्ट का क्या हुआ?
2: अरे भीतर तो आने दे उसे, अंदर आ बेटा। रिजल्ट का क्या हुआ?
3: माँ वो असल में शायद घंटी में कुछ गड़बड़, थोड़ी देर हो गई मुझे घर आने में।
1: रिजल्ट का क्या हुआ बेटा?
3: आपका बेटा?
1: हाँ।
3: बाबूजी आपका बेटा? हाँ। पास हो गया बाबूजी, और वो भी मेरिट लिस्ट में।
0: बाबारा, मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरे भैया टॉप करेंगे।
2: इधर आ बेटा।
3: जी।
2: मेरे गले से लग जा।
3: जी।
2: इतनी देर कहाँ कर दी, हम सबका तो दिल ही बैठा जा रहा था।
3: अरे माँ, ना तो संजय क्या लाइट थी ना ही गुप्ता अंकल क्या। अच्छा। बड़ी मुश्किल से इंटरनेट कैफे से रिजल्ट पता करके आ रहा हूँ।
2: अपने बाबूजी का आशीर्वाद ले, जब से तू गया है रिजल्ट देखने एक पल को भी चैन से नहीं बैठे हैं, बस इधर से उधर परेशान टहल रहे हैं।
3: बाबूजी असल में
1: आजा मेरे हृदय से लग जा मेरे बच्चे।
3: जी।
1: तूने मेरी बरसों की तमन्ना पूरी कर दी, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है।

0: नीरज बेटा, सब सामान तो ठीक से रख लिया है ना?
1: हाँ माँ, सब रख लिया।
0: वो खाने वाला डब्बा बैग के ऊपर वाली जिप पॉकेट में रखना, ताकि उसमें हवा लगती रहे
1: जी।
0: नहीं तो गर्मियों में बहुत जल्दी खराब हो जाता है।
2: क्या माँ, भैया कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं जो तुम एक एक बात उन्हें समझा रही हो।
0: मेरी निगाह में तो ये बच्चा ही है।
2: मेरी निगाह में तो ये बच्चा ही है। अरे माँ, भैया आप मुंबई जैसे शहर के IIT के स्टूडेंट हैं और देखते ही देखते साहब बन जाएंगे मिस्टर नीरज पांडे IITian। पता नहीं तब हमसे सीधे मुंह बात भी करेंगे कि नहीं।
0: क्यों नहीं करेगा भला, अरे इतना संस्कारी बच्चा है मेरा। क्या कोई बड़ा आदमी बनकर अपने संस्कार छोड़ देता है?
3: अरे चलो नीरज बेटा चलो, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो गया है।
1: जी बाबूजी, निकल ही रहा हूँ बस।
0: अपना ध्यान रखना बेटा,
2: और पहुँचते ही फोन भी करना भैया, हमें आपकी चिंता रहेगी। नीरज।
1: क्या माँ, ऐसा करोगी तो भला कैसे रह पाऊंगा माँ?
3: अरे चलो चलो निकलो भाई, देर हो रही है।
1: अच्छा माँ, बबली चलता हूँ मैं।

0: ये तुम रोज कैलेंडर में तारीख क्यों काटते रहते हो?
1: ताकि नीरज को गए कितना समय हो गया है ये रोज पता चलता रहे। देखो आज पूरा एक साल हो गया उसे।
0: लेकिन अब के 10-12 दिनों से कोई फोन नहीं आया उसका। कहीं तबीयत वगैरह तो खराब नहीं हो गई होगी उसकी?
2: नमस्कार पांडे जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आओ आओ चतुर्वेदी, क्या हाल है भाई?
2: अरे मेरा हाल तो ठीक है, मगर बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो मैंने सोचा चलकर मिलाऊं। सब ठीक तो है ना?
0: हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक है।
2: और वो नीरज की क्या खबर है, कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई?
1: अरे अब तक तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सोचा था। आज पूरा एक साल बीत गया यार। चतुर्वेदी, कुछ भी कहो, बच्चे बाहर रहते हैं तो मन कुछ उदास तो रहता है। हमेशा लगता है कि पता नहीं क्या खाया क्या पिया, कैसा चल रहा है, है?
2: आज ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, है? अभी तो नीरज इंडिया में ही है और उसे अभी सिर्फ एक साल ही हुआ है तुमसे दूर गए, फिर ये सब अकेलेपन की बातें कहाँ से आ गई बीच में? अभी तो उसे यूरोप जाना है, तुम्हारा सपना पूरा करना है, अपना करियर बनाना है।
1: वो तो सब खैर होना ही है, मगर तुम अपने हो ना, इसलिए मन की बात शेयर कर रहा था तुमसे।
0: देखिए ना, रोज कैलेंडर पर एक एक दिन गिनते हैं नीरज के जाने का, भला ये क्या भेजेंगे उसे बाहर देश। और सच मानो तो मैं भी कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा कहीं बाहर जाए।
1: देखो नीरज की माँ, अब तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। बहुत मेहनत और लगन के बाद नीरज की तकदीर में उजाला होने जा रहा है। उसे तो अपना करियर बनाना ही है, पर भाई ना होगा तो आगे पीछे हम भी साथ चले चलेंगे उसके। भाई चतुर्वेदी,
2: हाँ?
1: तुम्हारा लड़का कैसा है? उसका सीए का कोर्स तो पूरा हो गया ना?
2: हाँ, उसने तो प्रैक्टिस भी शुरू कर दी।
1: अच्छा?
0: भाई साहब, आपने उसे विदेश भेजने की कोशिश नहीं की?
1: हाँ?
0: आपका बेटा भी तो पढ़ने में बहुत होशियार है।
2: हाँ, बिल्कुल, मगर मुझे लगता है कि वो यहाँ रहकर भी सब कुछ हासिल कर सकता है। मेरी निगाह में करियर की डेफिनेशन यानी परिभाषा जरा अलग है।
1: अच्छा?
2: और मेरी परिभाषा में बच्चे के करियर के साथ माता पिता की वृद्धावस्था, उनकी देखभाल, घर परिवार का ध्यान, समाज से जुड़ाव, ये सब कुछ आता है। सिर्फ पैसा कमाना या विदेश जाकर बसना ही करियर नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये करियर शब्द पर बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, समझे पांडे?
1: अरे कोई आवश्यकता नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि यूरोपीय देशों का रहन सहन, खान पान सभी कुछ हमसे बेहतर है। हाँ, जीवन का सच्चा सुख और मनुष्य होने का महत्व तो वहाँ के लोग खूब समझते हैं चतुर्वेदी।
0: क्या खाक समझते हैं, जो बात हमारी परंपराओं और संस्कारों में है वो भला वहाँ के लोगों में कहाँ?
1: सब बकवास है, सब बकवास है। घर में रहती हो ना, इसीलिए। सीना आ जाता है। हाँ, 65 साल की उम्र हो चली, पूरी जिंदगी मास्टरी करता रहा, अब खुद का अपना एक मकान तक न बना सका, और तुम संस्कारों और परंपराओं की बात करती हो।
2: अरे बस करो यार, बस करो। चलो तुम्हारी बात सही है, क्यों बीपी बढ़ाते हो अपना? भाई सभी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने अनुभव हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हारा सपना पूरा करे।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कान्याल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके लिए निरंतर अविरल बहती रहती है, जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे। और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है बस। हम जानना चाहते हैं आपसे सतेंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी, क्योंकि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हुई है, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने। तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है sekhoifmarathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिंदगी यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी, थर्ड एडिशन में आप ज़रूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल ज़रूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: हाँ, अब मैं आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। वो येलो लाइन, वायलेट लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहां पे इवेंट है। 4:30

0: फर्स्ट फ्लैग ऑफ 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहाँ पहुँच जाएँ। और एज़ फार एज़ फैसिलिटीज़ कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
1: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है? क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज़्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पहुँचें?
0: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन अरेना में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहां पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट। अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है और क्राउड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहाँ डांस कर रहे थे, दे वर इन्जॉइंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज़ जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक। तो इस फैसिलिटी को ज़रूर अवेल करें।
1: जी, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं?
0: इंडियन एयरफोर्स का दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम करते हैं। जो बिल्कुल
1: आसमान जितना बड़ा है,
0: आसमान स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आएं और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।
1: वाह, क्या बात है! तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी, भले ही आप सेको इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज़्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं, वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएँ और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा ज़रूर बनेगी, ज़रूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए ज़रूर पहुँचें, और आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये नगमा हमारी ओर से।

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहेंगे दोबारा सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के। तो आपका पुनः स्वागत करना चाहते हैं हम सत्येंद्र साहब। अब बात ये उठती है कि हम ना कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कहीं जाने से पहले। वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं एक दिन पहले ही ना मन में कहते हैं कि पेट में जो तितलियां हैं उड़ने लगती हैं,
1: बटरफ्लाइज
0: कि कल सुबह जल्दी उठना है, पहुंचना है, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एक्सपो में अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमने सारा लेआउट्स टाइमिंग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, पर नेवरदलेस उसके बाद भी हम एक ट्रिगर मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड एन ईमेल सबको भेजेंगे बिफोर द इवेंट कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या क्या एन रूट होने वाला है, पूरी जानकारी उसके अंदर होगी तो वो अपनी बटरफ्लाइज सेटल कर सकते हैं एडवांस में।
0: क्या बात है, और अपनी बटरफ्लाइज को वहाँ वहीं उड़ाएं मैदान जंग कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, फोर्सेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो वो सारी तितलियाँ उड़ने के लिए आतुर हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से 4 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे समय से पहले ही, लेकिन समय क्या है, किस वक्त रिपोर्ट करना है?
1: हाँ, पहला जो हमारा फ्लैग ऑफ है 21 किलोमीटर का वो 5:30 बजे है, तो हमने जो रिपोर्टिंग टाइम नॉर्मली 1 घंटा पहले रहता तो 4:30 उनको रिपोर्ट करना है। वो रिपोर्ट करेंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आएंगे, उसके बाद उनका जुम्बा सेशन होगा, वार्म अप होगा और फिर 5:30 फ्लैग ऑफ होगा।
0: वाह क्या बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर कुछ है या अपने वेरिफिकेशन के लिए उनको क्या दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी पहुंचे गंतव्य पर जो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है लेकिन आप भारतीय वायुसेना के परिसर, उस वक्त भारतीय वायुसेना का परिसर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या वो अन्य गंतव्य जो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है ये मैराथन, तो वहाँ पर सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्या फैसिलिटी
1: हाँ,
0: है?
1: आज जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सपो चल रहा है तो हम बिब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें नाम और उनके डिटेल्स होते हैं, तो ये सब बिब सारे रनर्स को दी जाती है और एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन है जो उनको उस दिन अपनी टी शर्ट के साथ पहन के दौड़ना है, तो जो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है मूवमेंट्स के लिए, तो ये बिब जो पहन के आएंगे उनको ही जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग एंटर नहीं कर पाएंगे।
0: जी, तो आपके लिए प्रतिबंधित है अगर आपके पास, जैसा कि हमें सतेंद्र साहब ने कहा, विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर साहब ने, कि अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बिब नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं पा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कायम रखिए अगले साल आपको फिर मौका मिलेगा। अगर आप इस मैराथन रेस की बात की जाए तो इसकी यूनिकनेस क्या है, क्या खास बात है?
1: ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस, मैं इसलिए कहूँगा मैराथन्स होती हैं अक्रॉस इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं, पर ये मैराथन के साथ एक, इसको हम इवेंट काउंट करेंगे बिकॉज ये शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स की भी है। आज हम सिविलियन वर्ल्ड के साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दे तो हम इंडियन एयरफोर्स की माइट भी उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई मैराथन देखो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आउटर एरिया से हो जाती है, वहीं पे से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लोग अपना मेडल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है और अपने घर चले जाते हैं, बट ये एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब लोग दौड़ के वापस आएंगे, अपना मेडल लेंगे, अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, तो उन सबको हम अशर करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल रौद्र रूप देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्काई डाइविंग। हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम है वो परफॉर्म करेगी, हमारी बैंड है वो परफॉर्म करेगी एंड मैनी मदर मोर एक्टिविटीज। तो आप एक इवेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस नहीं, रेस के पोस्ट रेस के जितने इवेंट्स हैं वो भी जरूर देखने।
0: मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ मिस कर दिया है समय पर रजिस्ट्रेशन ना करवा कर।
1: जैसा आपने कहा कि हमेशा मौका मिलता है,
0: बिल्कुल। और भारतीय वायुसेना जैसा कि आपने कहा कि विशाल है और आसमां की तरह है, आसमां को छूने जैसी बात है, तो ये आपको मौके देती रहती है और निश्चित रूप से अगला एडिशन और भी सुखद होगा। लेकिन इस एडिशन की अगर बात की जाए और विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा है कि बहुत यूनिक है, इसका हिस्सा बनिए और फिर देखिए जो अनुभूति आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप ताउम्र उसको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगले एडिशन में

0: हम हिस्सा ज़रूर बनेंगे इस मैराथन का। अब बात आती है, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि अलग अलग स्टेशन पर एक साथ ही कार्यक्रम होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो क्या सच में बताइए एक साथ होने वाला है?
1: ये बिल्कुल, ये वो तो आप कहते हैं ना, एयरफोर्स प्रिसीजन पे बिलीव करती है, जो हमारा मिशन है वो प्रिसीजन है। तो हमारा मिशन यही है कि एक ही टाइम पे शुरू होना, एक ही टाइम पे ख़त्म होना, एक ही दिन करना। तो ये हमारा प्रिसीजन को हम सबको दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इतना हमारा जबरदस्त प्रिसीजन है कि हम उसको आउटरीच कर सकते हैं। बेशक हम कोलोकेटेड ना हो, अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो, पर हम उसको अचीव कर सकते हैं।
0: ठीक उस तरह जिस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स है, जो ठीक 4 बजे अलग अलग केंद्रों पर सुनाई देता है, तो आपके और हमारे बीच में एक समानता तो यह हो गई कि हम प्रेसिशन यानी कि डिसिप्लिन समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और फोर्सेस की यही खास बात है और आकाशवाणी की भी यही खास बात है कि समय हमारे लिए सर्वोपरि है। सही समय पर बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है।
1: जब भी हम आई थिंक एक मंच पर एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं,
0: वह क्या बात है। और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, हम यूं ही एयरफोर्स भारतीय वायु सेना का परचम लहराते रहें। परचम आप लहरा रहे हैं, लेकिन उस परचम को हम अपने हाथों में ले दुनिया तक पहुंचाएं। अब एक बार फिर से बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है मैराथन के लिए लोग भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे मन से तन से, और यही सोचेंगे कि हमें जीत हासिल करनी है। एक बार दोबारा से हमारे सभी सुनने वालों को ना कैटेगरीज के बारे में आप बताएं, और ये भी बताएं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में का हिस्सा बनते हैं तो जीत में हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, वो अवार्ड्स जो इस मैराथन के माध्यम से उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में भी जिक्र करें।
1: हाफ मैराथन्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में होती है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर टाइम रन होता है, कंपटीशन होता है, 5 किलोमीटर नॉर्मली फन रेस होता है। पर हमने ऐसा नहीं किया, हम चाहते हैं तीनों कैटेगरी में कंपटीशन हो। तो हमारे 21 के, 10 के और 5 के तीनों कॉम्पिटिटिव हैं, और तीनों में जो भी ओपन कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज़ मिलेगा, एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहीं पर होगी JLN में। एंड एक अच्छा अमाउंट है, 25 लाख के आसपास हमने ईयरमार्क किया है फॉर द इवेंट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट।
0: डिफेंस पर्सनल और सिविलियंस के लिए अलग अलग अवार्ड कैटेगरीज हैं।
1: हर रेस में डिफेंस के लिए अलग है और सिविलियंस के लिए अलग है। जो जिन्होंने जैसे डिफेंस ने रजिस्टर किया तो वो उसमें कॉम्पीट करेंगे, और सिविलियंस का जो हुआ है उसमें कॉम्पीट करके दोनों को अलग अलग प्राइज मिलेंगे। कैटेगरीज दोनों के लिए अलग अलग है
0: जी, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना के या डिफेंस पर्सन्स जो हैं वो तो सक्षम हैं, और किसी भी कहते हैं जंग पर लड़ना उनके लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जहां हमने ये सोच लिया कि बस ये जीत हमारी है, वहां आधा काम खत्म, हमें हमेशा तैयार रहना है, हमेशा अपने आप को गियर अप करना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कोई पार्टिसिपेंट रजिस्टर करता है तो उस वक्त उसकी शारीरिक सक्षमता कितने मायने रखती है? क्या उसे कोई मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होता है?
1: ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे मैराथन्स की, कि उसको ही और शी हैज़ टू टेल के ही इज़ मेडिकली फिट टू अंडरगो। उसको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, और हम उसको कंसिडर करते हैं अगर कोई इंसान सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है।
0: जी, सबसे पहले अपने शरीर को हम स्वयं जानते हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, तो हम यही कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं। अब यही सवाल मैं डिफेंस पर्सनल्स के संबंध में पूछना चाहूँगी, वो डिफेंस पर्सनल जो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पर्सनल्स ऐसे भी होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब भले ही सेवा में नहीं है, फोर्सेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाओं का हिस्सा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किस माध्यम से होता है?
1: ये इसको स्मूथली हम ईज करने के लिए हमने एक्सपो में एक काउंटर्स बनाए हैं, वेरिफिकेशन काउंटर्स, जहाँ पर हमारे सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वो आ सकते हैं। वो अपना आईडी कार्ड दिखा के वो अपने बिप कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जाएंगे वहाँ पे बहुत ईज है, डिफरेंट काउंटर्स हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
0: वाह क्या बात है, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ आपको आसमां छूने का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल बिना किसी भय के इस कार्यक्रम का

हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपके साथ है, आपके लिए कार्यरत है और आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि आप हिस्सा बन सके सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026।

0: व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एयरफोर्स स्टेशन में बैठी हुई हूँ, और भले ही हमारे साथ यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यूनिफॉर्म में हैं, पर ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस नीली पोशाक ने ना अपनी रंगत इस स्टूडियो के अंदर बिखेरी हुई है, और मैं इस रंग में बहती चली जा रही हूँ और आसमान के किसी छोर को ना पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ. आपको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. और भारतीय वायुसेना जो हर साल, यूँ कहूँगी मैं कि हर वक्त यही कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी भारतवासियों को जोड़े, और इसकी पहल, इसकी मुहिम सुब्रतो कप और अब सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के माध्यम से की जा रही है. ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का आप खुद साक्षी रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता है?
1: अगर मैं कहूँ, मतलब वो कहते हैं गूज़बम्प्स, तो ये एक पहला वर्ड होगा. अब मैं अपने श्रोतागण को बोलना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ के माध्यम से इमेजिन करें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हरी घास, ओपन एरिना, वाइट फ्लड लाइट वहाँ पे है. हमारी जो टी शर्ट की थीम है वो वाइट कलर है विथ ट्राई कलर थीम. तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, एक तारों की पूरी चादर बिछी हुई है, तो अगर कोई हाइट पे खड़ा होकर देखे तो उसे ऊपर भी तारे दिखेंगे और ज़मीन पे भी तारे दिखेंगे. तो ऐसा माहौल होता है कि मन करता है बस ये देखते ही जाए.
0: वाह, क्या बात है. आपने कहीं ना कहीं कहते हैं कि रेडियो के माध्यम से वैसे भी हमारे जो श्रोता है ना, उनकी आंखों के आगे चित्र घूमने लगते हैं. मेरी आंखों के आगे साक्षात आपके शब्दों से चित्र बनने लगे हैं, और मैं महसूस करने लगी हूँ कि कितना भव्य माहौल वहाँ होने वाला है. आप खुद को महसूस करने वाले हैं उन हवाओं में, फिजाओं में, जिनकी कल्पना आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने भर मात्र से कर ली होगी. भले ही आपके मन में द्वंद्व भी होगा, परेशानी भी होगी कि हम क्यों इसका हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि हम कहते हैं कि जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है, तो तीसरे एडिशन का आप हिस्सा जरूर बन पाएंगे. अब बात करें, और जानकारी हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम अर्जित कर सकें. हमें भारतीय वायुसेना पर पूरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा हमारे जो भारतीय हैं वो जुड़ेंगे और अगली मरतबा फिर आएंगे. अगर हम बात करें वहाँ जिस तरह की फैसिलिटीज़ आपने जैसे बताया कि यहाँ पर की गई हैं, रूट्स और मैप्स, उसके लिए क्या हमारे पास वहाँ पर प्रावधान है? कितना आसान, कितना सरल है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे, उनके लिए आप बताएं.
1: जो रेगुलर रनर्स है, अगर जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा जाए तो 21, 10 और 5 के का स्टैंडर्ड रूट रहता है. इसकी पूरी जानकारी हमने एक्सपो में दे रखी है, बट ये सारी जानकारी थ्रू मेल भी लोगों के पास गई हुई है. फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा बताना चाहूँगा कि 21 किलोमीटर जो है वो पूरा ल्यूटेंस दिल्ली में घूमते हुए कर्तव्य पथ पे जाती है, और जब वापस हम आते हैं तो जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, उसके राउंडल के थ्रू आती है. तो एक यूनिक चीज़ है. नॉर्मली रेसिस वहाँ से नहीं होती हैं, पर हमने परमिशन ली है वहाँ की, तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे. और जो 21 किलोमीटर के रनर्स होते हैं नॉर्मली 7:15 के आसपास वहाँ से निकल रहे होते हैं, और उस टाइम सनराइज़ हो रहा होता है, तो वो एक ऐसा पिक्चरिस्टिक माहौल होता है कि आपको थकावट भी आपकी दूर हो जाती है और आनंदित हो जाते हैं. एज़ फार एज 10K गोज़, तो 10 किलोमीटर भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकल के लोधी रोड के एरिया के आसपास सर्कुलर रूट है, वहाँ पे करते हुए वापस आएगी, और 5 किलोमीटर भी उसका जस्ट हाफ है, उसी रूट पे रहेगी.
0: बहुत खूब. तो आपके लिए पूरे प्रावधान, पूरी फैसिलिटी भारतीय वायुसेना ने कर रखी है, बस आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है. अब एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो पूछ लूं.
1: अरे बिल्कुल.
0: वो जो गुडी बैग आप देने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है? कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मन में उत्सुकता होने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है.
1: काफी कुछ मिलने वाला है. अगर आप गुडी बैग को ही देखें तो उसमें सेखो साहब की फोटो है सबसे बड़ी, तो आप मनमोहक हो जाएंगे उस गुडी बैग को देख के. गुडी बैग के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, एक जो हम अपने ओवरऑल्स पे एक सेखो का पैच, जो नॉर्मली जैकेट से है उस पर एक पैच लगाते हैं, पैच है उसके अंदर अवेलेबल, एनर्जी बार है उसके अंदर, एक रिस्ट बैंड है, जब भी आप भागेंगे और आपको पसीना

0: उसको सुखाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है भाई टी शर्ट, इस बार हमने रिबॉक के साथ कोलैबोरेशन किया है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको रनिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी।
1: बहुत खूब। एक बात कहूँ, आप गुडी बैग नहीं दे रहे हैं, आप सपने दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसी दौर में फिर पहुँच जाऊँ जब मैं फिर एफओस का एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को तैयार करूँ। तो सपने दे रहे हैं यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, आप ज़रूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एफओस मैराथन सिम 2026, और उम्मीद की लौ कायम रखिए, थर्ड एडिशन आपके लिए और भी शानदार होगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो
0: किसी का ये आप सर ने सही बोला, सपने देखेंगे जब भी तो पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सपने दे दे अपने हाथों से तो उससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ और हो नहीं सकती। एक सवाल हमारे पास और है। अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बैगेज होता है। अब हम सोचते हैं खासतौर पर जब मैराथन में जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो उस वक्त हमारे सामान का क्या होगा, तो इसके लिए क्या फैसिलिटी है?
0: इसके लिए फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। जब जैसे आप एंट्री करेंगे, हमने बहुत बड़े बैगेज काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां आप अपना बैगेज सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं और जब आपकी रेस खत्म होती है वहां से वापस ले सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल निश्चिंत तो होकर जाइए, आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करने वाला है इस मैराथन में। अब अक्सर ना हमारे साथ क्या होता है, टिकट मिला है, टिकट दिया है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त तुम चले जाओ। अक्सर हमारे साथ ये होता है। हाँ। तो क्या इस मैराथन में कोई पार्टिसिपेंट ऐसा कर सकता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो अब मेरा घर का परिजन, मेरा दोस्त चला जाए?
0: काश ऐसा हो पाता, बड़ी नॉन ट्रांसफरेबल है।
1: जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा वेरिफिकेशन देगा, पूरा आपका ब्यौरा देगा कि आप वही हैं जो अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए जनाब कि आपको पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी और उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे। आज मैंने इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर का जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद बहुत से संदेश यहाँ तक हमें मिले हैं। और वंदे मातरम लिखा है हमारे पास, सरवाड़ से संदीप आया है, अरकेड़ी पंडित चन्नप्पा का संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें द्वारका सेक्टर 15 से शंकर का संदेश है। वंदे मातरम में यश शिंदे मुंबई से इन्होंने लिख भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आपके संदेश तफसील से मैं कमांडर साहब को, विंग कमांडर साहब को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ समय की नज़ाकत है, सिर्फ नाम पढ़ पाऊंगी। पंकज अमरावती संदेश भेजा है, यशवंत आडमुटे इन्होंने संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, बीकानेर से हमारे पास संदेश आया है, मंसूर अली का दमदार संदेश टू सोल्जर्स इन्होंने लिख भेजा है वंदे मातरम, तमिलनाडु से हमारे पास आया है ये संदेश, नाम नहीं लिखा, विजय कुमार भी इन्होंने संदेश नाम भेजा है, और चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अनिल कुमार का हमारे पास संदेश है, आज समय कम है लेकिन संदेशों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, स्पिरिट ऑफ सिखों क्या है ये हमें बताएं।
0: ये एक हमने पहल करी है इस एडिशन से, हमने देखा है कि मैराथन्स में काफ़ी लोग होते हैं जो किसी इश्यूज़ की वजह से डिप्राइड होते हैं, किसी अंग में कोई डिफेक्ट होता है या अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, या कुछ लेडीज़ होती हैं जो ओल्ड एज होती हैं वो साड़ी वगैरह पहन के भागती हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स इस तरह की होती हैं, तो ये शो करता है कि हाँ ये दीज आर डेडिकेटेड। जैसे सेखों साहब का स्पिरिट था इतना हाई इंडिया के लिए, ऐसा ही इन लोगों के लिए यूनिकनेस है कि इनका स्पिरिट इतना हाई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी उनको वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो इस रेस में भाग रहे हैं। तो हमारी वहाँ टीम रहेगी जो असेस करेगी ऐसे हमारे धावकों का और उनको हम फेलिसिटेट करेंगे रेस के बाद।
1: बहुत खूब। एक बात और, महिलाएं और पुरुष दोनों की तादाद आप अगर कंपैरिजन तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर बात की जाए जितना बढ़ चढ़ कर पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी आपने फर्स्ट एडिशन में देखा होगा, तो महिलाओं का भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया रहती है?
0: काफ़ी योगदान रहता है, मैं कहूँगा बराबर तो नहीं, मैं 60-40 की रेशो तो 100% रहती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, तो अगली बार मैं भी हूँ इसीलिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रही हूँ खासतौर पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी को। अब एक बार दोबारा से उन सभी स्टेशन का नाम ले लीजिए। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ना अपने राज्य से, अपने जहाँ पे भी एयरफोर्स स्टेशन है, एक आत्मीयता जुड़ी होती है और लगता है अच्छा हमारे शहर में, हमारे जो शहर का जो एयरफोर्स स्टेशन है राज्य का, यहाँ पर भी है। हाँ। उनका नाम ले लीजिए।
0: तो जैसा मैंने पिछली बार नॉर्थ टू साउथ गया था, अब मैं सोचता हूँ रिवर्स एक्शन करते हैं, अब साउथ टू नॉर्थ चलते हैं।

0: तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो तिरुवनंतपुरम पहला स्टेशन है, बेंगलुरु दूसरा स्टेशन है, उसके बाद और ऊपर सेंटर में आए तो ग्वालियर है, ईस्ट में जाए तो गुवाहाटी है, वेस्ट में मुंबई और जोधपुर है, और नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़।
1: वाह, तो आप कहीं से भी हैं

0: हिस्सा बन पाए इस मैराथन का।
1: अगर आप गूगल पे डालेंगे secho-marathon.in, ये साइट का नाम है, आप एक बार इसको देख लें। मैं अर्ज करूंगा जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए फिर भी इस साइट को एक बार विजिट कर लें, फ्यूचर में भी यही साइट रहने वाली है, हम इसी पे अपने नेक्स्ट एडिशन कंटिन्यू करेंगे।
0: बहुत खूब, हम दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का, और हम यही चाहते हैं कि हर मर्तबा हम आपके साथ यूँ ही हर शो में शामिल हों, आपसे बात करें, और सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026 सफल हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा जीतना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, एंड ऑल द बेस्ट।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

वे कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मछार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछावर पर गर्व है। वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस साल सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वो राजपत्र अधिसूचना फर्जी है जिसमें दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी शनिवार सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। और भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। स्क्वैश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के युवानी कार्यक्रम में। आज के इस सफर को और भी रोचक और जानकारी से भरपूर बनाने के लिए आपके साथ हम हैं आपके रेडियो दोस्त डिम्पी रावते
1: और आद्या नायक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। कुछ मनोरंजन, कुछ नई जानकारियाँ और ढेर सारी दिलचस्प बातों के साथ।
0: दोस्तों आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दो प्रश्नों के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च नया मौसम उपग्रह कौन सा है?
1: और हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 कितने शिक्षकों को मिला? इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में।
0: दोस्तों इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क से, जिसमें आवाज दी है अजय गोगावले ने।

0: डिम्पी, घर में बुजुर्ग हूँ तो घर सिर्फ घर नहीं रहता, उसमें अनुभव और अपनापन भी बसता है।
1: हाँ आद्या, उनकी बातें बीते कल की सीख होती हैं और आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन।
0: दोस्तों, आज विश्व वृद्ध दिवस पर बात करते हैं उस रिश्ते की जिसे सम्मान ही नहीं हमारे समय और साथ की भी जरूरत है।
1: साथियों, हमारे बुजुर्गों की कहानियों में इतिहास है, उनकी गलतियों में सीख है और शायद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम उनके अनुभवों को सुने, उनके अस्तित्व को महत्व दें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे परिवार के बीच होते हुए भी अकेले नहीं हैं।
0: हाँ डिम्पी, क्योंकि जिस पीढ़ी ने हमें चलना सिखाया है उन्हीं के साथ जीवन की इस यात्रा में कुछ कदम चलना हमारा भी फर्ज है।
1: आद्या, शायद बुढ़ापा उम्र का नाम नहीं, बुढ़ापा तो उस खामोशी का नाम है जब घर में सबके पास समय हो लेकिन आपके लिए समय निकालने वाला कोई ना हो।
0: साथियों, इसीलिए बुजुर्गों को हमारी दया नहीं हमारा अपनापन चाहिए। उन्हें ये एहसास चाहिए कि उनके जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि उनके अनुभव आज भी किसी के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
1: दोस्तों, आइए इस वृद्ध दिवस यह संकल्प लें कि जिन्होंने हमें उम्र भर अपने आशीर्वाद की छांव में रखा है उन्हें बुढ़ापे की तपती धूप में हम अपनेपन, सम्मान और सहारे की ठंडी छांव दें, उनकी मुस्कान में अपनी खुशी और उनकी गरिमा में अपना सम्मान देखें।
0: विश्व वृद्ध दिवस पर सभी बुजुर्गों को सादर नमन। आपकी मुस्कान बनी रहे और आपके अनुभवों की अनगिनत सीख आने वाली पीढ़ियों को यूं ही मिलती रहे। इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अंधाधुंध से और जिसे आवाज दी है अमित त्रिवेदी ने।

0: साथियों, आज हम आपको मध्य भारत की उस महान विभूति की जीवन यात्रा से परिचित कराने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास, पुरातत्व, भाषा, प्रशासन और हर क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता है। ये है राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल।
1: राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल का जन्म 1 अक्टूबर 1867 को कटनी मुड़वारा क्षेत्र में हुआ था। संस्कृत और भारतीय इतिहास के प्रति उनका आकर्षण आगे चलकर उनके शोध जीवन की आधारशिला बना।
0: दोस्तों, उनकी शिक्षा यात्रा भी उतनी ही उल्लेखनीय रही। उन्होंने 1881 में माध्यमिक शिक्षा, 1883 में एंट्रेंस और 1888 में बीए की जीवन की शुरुआत की।
1: डिम्पी, उनकी प्रतिभा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रही। 1896 में उन्हें स्कूलों के एजेंसी इंस्पेक्टर के रूप में रायपुर में नियुक्त किया गया। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने भाषाओं, जनजाति, समाज और क्षेत्रीय संस्कृति का गहन अध्ययन आरंभ किया।
0: साथियों, 1899 के अकाल और 1901 की जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। उनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें एथनोग्राफी तथा गजेटियर तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए।
1: दोस्तों, उनके मुख्य कार्यों में मध्य प्रांत और बरार के शिलालेख, एथनोग्राफिक नोट्स, ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित अनेक गजेटियर और शोध कार्य उल्लेखनीय है।
0: साथियों, उन्होंने लगभग 10,000 संस्कृत और प्राकृत पांडुलिपियों की खोज का कार्य किया। 1910 में उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। वे नागरी प्रचारिणी सभा से भी जुड़े रहे और उसके उपसभापति तथा सभापति के पद तक भी पहुंचे।
1: आज जब हम उनके जीवन को स्मरण करते हैं तो यह केवल एक महान विद्वान को याद करना नहीं है, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को पहचानना भी है।
0: साथियों, लगभग 7 दशकों तक ज्ञान और शोध की अलग जगाने वाले डॉक्टर हीरालाल का 19 अगस्त 1934 को निधन हो गया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि किसी व्यक्ति की महानता केवल उसके पद या सम्मान से नहीं, बल्कि उसके परिश्रम और समाज तथा इतिहास के लिए छोड़ी गई विरासत से निर्धारित होती है।

0: डिम्पी सबने सुना है, रक्तदान महादान, लेकिन कभी हमने सोचा है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि हमारा दिया गया थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जिंदगी की नई उम्मीद बन सकता है।
1: हाँ दिया, लेकिन जैसे ही रक्तदान की बात आती है कई लोग डर जाते हैं, खून देने से कमजोरी आ जाएगी ये सोचते हैं, लेकिन सही जानकारी और उचित जांच के बाद योग्य व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है।
0: और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे दिए हुए रक्त से किसकी जिंदगी बची। हो सकता है किसी दुर्घटना में घायल हुए इंसान को उस रक्त की जरूरत हो, या किसी पेशेंट के ऑपरेशन के समय वही रक्त उसके काम आ जाए।
1: सही कहा, इसी वजह से युवाओं की भूमिका बहुत जरूरी होती है। हम सिर्फ खुद ब्लड डोनेशन करने के बारे में ना सोचें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी जागरूक करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे तभी अस्पतालों में जरूरत के वक्त समय पर रक्त उपलब्ध हो जाएगा।
0: लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, हर व्यक्ति तुरंत रक्तदान ना करे। रक्तदान करने से पहले अपनी उम्र, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जांच जरूर करवाएं, और हमेशा अधिकृत रक्तदान केंद्र या हॉस्पिटल्स में ही रक्तदान करें।
1: बिल्कुल आद्या, क्योंकि रक्तदान सिर्फ खून देने का काम नहीं है, ये किसी अनजान इंसान के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करने का नाम है।
0: तो इस राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर हम सिर्फ एक पोस्ट लगाकर या स्टेटस लगाकर काम खत्म नहीं करेंगे, हम खुद भी जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: रक्तदान करें, जीवन बचाएं।
0: आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म डंकी से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों कार्यक्रम में वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का।
1: हमारा पहला प्रश्न था, इसरो द्वारा लॉन्च नया मौसम उपग्रह कौन सा है, जिसका उत्तर है इनसेट 4G।
2: और हमारा दूसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 कितने शिक्षकों को मिला, जिसका सही उत्तर है 50। दोस्तों वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
1: और डिम्पी रावते को।
2: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत, और फिल्म है तेरे इश्क में।

इस गीत के बाद सुनते हैं नादानियाँ फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं तुषार जोशी, मधुवंती बागची और सचिन जिगर की। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इन प्रयासों का असर लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है। आज की हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक मिसाल से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और योजना ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की, जिसने देश के कई लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर ही सशक्त जीवन का आधार है। जब घर में कोई गंभीर बीमारी आती है तो इलाज के खर्च की चिंता न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ देती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए देश के अंतिम व्यक्ति तक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए शुरू की गई है आयुष्मान भारत योजना। आज इस योजना ने देश के करोड़ों गरीब, वंचित और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक संबल प्रदान किया है। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक पहल, इसकी पहुंच, डिजिटल व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों को मिले नए उपहार पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार अभिषेक जी।
1: तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। रंजन जी, सबसे पहला सवाल मेरा, आयुष्मान योजना को जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना माना जाता है, इस ऊपर है। केंद्र सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय ने भारत के आम और गरीब परिवारों को इलाज की चिंता से मुक्त कर किस प्रकार जीवन का एक बड़ा संबल प्रदान किया है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है और इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस है, मतलब ये लोगों को इंश्योर करता है कि आप जहां भी रहें, अगर वंचित वर्ग से आप आते हैं तो आपको इस स्कीम के तहत ट्रीटमेंट मिलेगा
1: जी,
2: फ्री मिलेगा, कैशलेस मिलेगा
1: जी,
2: और जिससे आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें
1: जी।
2: इसको कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसके पहले ऐसी कोई स्कीम पूरे भारतवर्ष को लेकर के नहीं सोची गई
1: जी।
2: और इसका इसकी जो व्यापकता है, उसकी इस व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश में इस समय करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसमें इंडिविजुअली कवर्ड हैं
1: जी।
2: उसमें से करीब 10.74 करोड़ लोग हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं
1: जी।
2: फिर बाद में इसका विस्तार होते होते आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर्स, उनको भी इंक्लूड किया गया
1: जी।
2: और 2024 से इसका और विस्तार करते हुए जो सीनियर सिटीजन है 70 वर्ष से ऊपर, उनको भी शामिल किया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है अभिषेक जी, कि आप देखे होंगे जो हेल्थ स्कीम्स हैं, जो इंश्योरेंस स्कीम्स जो आती हैं कंपनियां, जैसे जैसे आदमी ओल्ड होता है, ओल्ड कवरेज वो कम करने लगती है
1: जी।
2: आपको बहुत मुश्किल होती है ओल्ड एज में आके किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेना, और जबकि बीमारी जो होती है ज्यादातर ओल्ड एज में होती है और गंभीर बीमारी होती है
1: जी।
2: तो ये इतनी अच्छी स्कीम है खासकर सीनियर सिटीजन के लिए और वंचित वर्ग के लिए तो ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसका अंदाजा इस बात से और लगा सकते हैं कि जब से स्कीम चालू हुआ है 2018 में अब तक लगभग 8 साल में जनता का जो पैसा बचा है 2 लाख करोड़ से ऊपर इसमें पैसा बचा है। और इसको अगर जीडीपी के उसमें देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है
1: जी,
2: जो लोगों को सहायता कर रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने रंजन जी, क्योंकि सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो बुजुर्ग उम्र में बीमारियां जब बहुत ज़्यादा आती हैं तो कई सारी जो निजी इंश्योरेंस स्कीम्स थी उसमें उस वक्त तक आते आते बीमा का कवरेज कम होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है और देश की जीडीपी में भी एक बड़ा योगदान दे रही है क्योंकि लोगों की लगभग 2 लाख करोड़ की पूंजी को बचा रही है ये योजना। इस योजना का सबसे सुंदर पहलू उसकी पारदर्शिता और पहुँच है। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से आज एक आम नागरिक कितनी आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर देश के किसी भी कोने में मुफ्त इलाज का लाभ ले पा रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, हम लोग तो मध्य प्रदेश में हैं जहां से देखा, हमने देखा है कि माइग्रेटेड वर्कर्स हर जगह जाते हैं
1: जी,
2: उनको इलाज नहीं मिलता था। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है, पोर्टल पे जो वेब पोर्टल है
1: जी,
2: इस स्कीम का बैठे बैठे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं
1: जी।
2: आधार कार्ड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, डिजिटली आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया
1: जी,
2: डिजिटल कार्ड बन गया, वेरिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया
1: जी।
2: और जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां भी कुछ नहीं करना आपको
1: जी,
2: चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ये भी अच्छी बात है स्कीम की। अगर आपको लगता है हमारा इलाज, हमारी बीमारी ऐसी है या जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शायद वो सुविधा ना मिले या वो डॉक्टर ना मिले उस विशेषज्ञता के, तो आप किसी पास के या जहाँ भी आप चाहें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं
1: जी।
2: वहाँ 5 लाख रुपए तक का, सबसे अच्छी बात है, पूरे परिवार को 5 लाख पर ईयर आपको कवरेज मिलता है
1: जी।
2: और 5 लाख रुपया किसी भी परिवार के लिए, खासकर वंचित वर्ग के लिए अभिषेक जी, बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं जानता हूँ ऐसे कितने परिवार हैं जो बीमार होने पर उनको लोन लेना पड़ता है
1: जी।
2: और एक बड़ी, एक बार बार ये बात कही जाती है कि बीमारी ऐसी चीज है अभिषेक जी, जिसमें आदमी एपीएल से बीपीएल बन जाता है
1: जी।
2: अगर खर्च ज्यादा आ जाए किसी के खाते में, जो मिडिल क्लास के लोग भी हों, 5 लाख रुपए अचानक होना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है
1: जी।
2: हेल्थ इंश्योरेंस इसकी महंगी होती जा रही है
1: जी।
2: ऐसे में जो आपने बात कही डिजिटल, उसमें डिजिटल पार्ट हो गया, आपका कैशलेस वहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया
1: जी।
2: आप बाहर आते हैं उसका भी, उसमें भी बाहर आने पर भी कुछ हद तक आपका कवरेज होता है
1: जी।
2: और आप कहीं भी रहें, आप चाहे अगर झाबुआ के ट्राइबल इलाका से आते हैं, आप गुजरात में हैं वहाँ भी इलाज होगा, आप बुंदेलखंड से आते हैं दिल्ली में वहाँ भी इलाज होगा। तो बहुत ही सुंदर स्कीम है जो डिजिटली ही गवर्न कर रही है इस चीज़ को।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और अभी तक, अभी आपने चर्चा की कि इस योजना में जो एक बहुत बड़ी चीज़ आम आदमी को राहत पहुंचा रही है कि बीमारी का खर्च, जिससे हर व्यक्ति डरा रहता है कहीं ना कहीं कि अगर उसके परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई तो घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। और कहीं ना कहीं बीमार तो एक व्यक्ति होता है लेकिन उसको सफर पूरा परिवार करता है। 5 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच की बात की गई। अब हम इसकी बीमारियों पर की कुछ चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार ने इसके दायरे को किस प्रकार से इतना व्यापक बना दिया है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल है, इसको किस प्रकार से देखते हैं।
2: जैसे मैंने आपसे जी बताया कि जो इंश्योरेंस स्कीम्स आती है प्राइवेट कंपनी की, मैंने देखा कि वो गंभीर बीमारी को अवॉइड करती हैं कवर करने में
1: जी।
2: इसकी खूबसूरती इस बात में है कि ये स्कीम पूरे भारत में जो लोग इसके बेनिफिशियरी हैं उनके गंभीर बीमारी को भी कवर करती है। कैंसर है आपका, डायलिसिस हो रहा हो, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, पेसमेकर लगना है, तो जिस गंभीर बीमारी का नाम सुन करके आप डर जाते हैं कि कितना खर्च होगा हमारा
1: जी
2: किसी हॉस्पिटल में और कहां से इतना पैसा लाएंगे, उन बीमारियों को कवर करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, 27 ऐसी विशेषज्ञताएं हैं मेडिकल फील्ड की जिसको जो कवर करता है, और करीब 1700 से आसपास है उसके ऊपर ऐसी बीमारियां हैं जो इसके कवरेज में आती हैं। तो बहुत ही वाइड रेंज है जो स्कीम बीमारियों को और विशेषज्ञता को कवर करता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीमारी कभी ये देखकर नहीं आती कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है और कितना गरीब है, इसीलिए

0: लिए हर प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी सबसे एक महत्वपूर्ण बात है रंजन जी की, इस जब भी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो अस्पताल में बीमारी के दौरान आने वाला खर्च तो काफी बड़ा होता ही है, डिस्चार्ज होने के बाद भी जो इलाज है वो लंबे समय तक चलता रहता है। इस पहलू को भी इस योजना में शामिल किया गया कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से लेकर डिस्चार्ज के बाद तक की दवाइयों और जाँचों का खर्च भी इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार की इस सोच ने गरीब परिवारों की जेब पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ये कितनी बड़ी राहत है,
1: बहुत बड़ी राहत। जैसे हम लोग बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, स्वस्थ भारत की चर्चा कर रहे हैं
0: जी,
1: और एक आर्थिक पहलू की भी चर्चा कर रहे हैं, तो जब भी ऐसी बीमारियां हमें लगती है, हमें हो रही हैं या होने वाली हैं, इंडिकेशन आने लगते हैं उसके पहले
0: जी।
1: तो सबसे पहले डर यही लगता है कि जो हमें इनिशियल स्टेज पर जो डायग्नोसिस होगा, जो टेस्ट होगा, उसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। फिर बाद में एडमिशन की बात आती है, बाद में पोस्ट जो एडमिशन है उसकी बात आती है
0: जी।
1: तो इसकी खूबसूरती यह है कि आपको चिंता नहीं करनी है, सब क्राइटेरियन फिक्स है, आपको पैकेज हॉस्पिटल डिसाइड कर देते हैं। बीमारी का जैसे डायग्नोसिस होता है, पैकेज डिसाइड होता है, और पैकेज के तहत आपका प्री एडमिशन भी कुछ पार्ट में इलाज होता है। एडमिशन तो फ्री है ही है, उसमें एडमिशन में आईसीयू भी है, रूम भी है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चीज छोड़ दी गई हो
0: जी।
1: हर पहलू कवर किया गया है। और फिर जब आप डिस्चार्ज होते हैं किसी हॉस्पिटल से, उसमें भी कुछ समय तक जो डॉक्टर लिखते हैं, जो उनको प्रिस्क्रिप्शन होता है,
0: दवाइयों का खर्च,
1: जो खर्च होता है, सब कुछ पार्ट भी कुछ समय तक इस स्कीम के तहत सरकार वहन करती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और एक और बड़ा पहलू है इस योजना का कि देश के बेहतरीन प्राइवेट निजी अस्पतालों को भी आयुष्मान भारत से जोड़ा गया। निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे आम नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ बहुत सुलभता से मिल रहा है। कितना बड़ा कदम मानते हैं इसे?
1: बहुत बड़ा कदम है। इस सेंस में अगर मैं ग्रामीण भारत को देखूं
0: जी,
1: या वंचित वर्ग को देखूं अभिषेक जी, तो सरकारी अस्पताल के अलावा वो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल सोच भी नहीं सकते थे
0: जी।
1: आपने देखा होगा कितनी गहरी एक डर भय कहें लोगों के मन में व्याप्त था
0: जी,
1: कि पता नहीं कितना इलाज होगा। सरकारी तो ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल है तो कम पैसे लेंगे, प्राइवेट में जाते ही बहुत ज्यादा पैसे लेंगे। लेकिन सरकार ये कहती है इस स्कीम के तहत आपको कोई चिंता नहीं करनी है, 5 लाख रुपए तक पर ईयर पूरे परिवार का इलाज हो सकता है। जिस विशेषज्ञता का आपको इलाज चाहिए, जो बीमारी आपकी है गंभीर है, तो वैसे कुछ आपको लगता नहीं हमें जाना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसका इलाज वहीं होगा
0: जी,
1: वहीं हम स्वस्थ होंगे, तो वहां चले जाइए। करीब 38,000 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिस सरकारी और प्राइवेट जिसमें इम्पैनल्ड है, और उसमें करीब 16,000 से आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो भारत के कोने कोने में है, और उसकी पूरी सूचना आपको पोर्टल मिल जाती है। आप हॉस्पिटल चुनिए, बीमारी देखिए और वहां चले जाइए, और कैशलेस ट्रीटमेंट आपको वहां भी मिलेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आज की स्थिति में एक ऐसा दौर लोगों ने देखा है कि जब लोग अपने सगे संबंधियों के लिए भी अस्पताल जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, और वहां पर होने वाले तमाम खर्चों को देखते हैं, तो मन ही मन ये मनाते थे कि हमें कभी इसमें ना आना पड़े, कितना खर्च कहां से हम कर पाएंगे। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के बाद लोगों का वो डर खत्म हो चुका है, क्योंकि विश्व स्तरीय अस्पतालों में भी आप निःशुल्क इलाज करा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। अगला सवाल मेरा इसके एक अलग पहलू को लेकर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का उपहार दिया है। अभी हमारी चर्चा में भी इस पर चर्चा हुई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय से हमारे बुजुर्गों के जीवन में एक बहुत बड़ी निश्चिंतता आई है, तो जो हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखने का एक संबल दिया है सरकार ने, ये किस प्रकार से आप देखते
1: हैं? आपने बड़ी अच्छी बात कही अभिषेक जी। कई बार सगे संबंधी भी घबराने लगते हैं
0: जी,
1: खासकर ओल्ड एज में जब बीमारियां आती हैं, और परिवार की हम बीमारी ऐसी चीज है कि अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो बहुत परिवार टूट जाते हैं
0: जी।
1: ऐसे में ये संबल बहुत बड़ा है, और खासकर जो 70 ईयर्स का जो रूल आया है
0: जी,
1: इसमें कोई ऐसा वंचित वर्ग ही नहीं है, कोई भी आदमी शामिल हो सकता है
0: जी।
1: और करीब 12 करोड़ से ऊपर की संख्या बताई आपको, तो 4.5 करोड़ तो ऐसे लोग परिवार है जहाँ पे जो वृद्ध लोग 70 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं वो उसमें शामिल है
0: जी,
1: उनका भी इलाज, और हमने जैसे कहा सारी बीमारियों का इलाज जो इस योजना में है वो उसमें कवर होता है। ओल्ड एज में दिक्कत क्या आती है, हिप रिप्लेसमेंट की दिक्कत आ सकती है
0: जी,
1: नी रिप्लेसमेंट की दिक्कत आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज से रिलेटेड चीजें हैं
0: जी,
1: लीवर से रिलेटेड चीजें हैं, तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो गंभीर बीमारियां हैं जिससे आप त्रस्त हो सकते हैं और परिवार आर्थिक रूप से टूट सकता है, उस बीमारी को भी कवर किया गया। और इंटरेस्टिंग बातें हैं अभिषेक जी, ये उस जो कवरेज मिलता है 5 लाख उससे अलग है, 70 साल के जो लोग हैं तो उनको कवर करता है।
0: अब यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से अब तक करोड़ों आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के दूर दराज और ग्रामीण अंचल

0: तक स्वास्थ्य सेवाओं का यह प्रकाश पहुंचाने में योजना कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है।
1: अभिषेक जी, इससे इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 50 से 60 करोड़ इंडिविजुअल
0: जी,
1: उसमें अब आशा वर्कर भी आ गई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं, 70 साल के ऊपर भी लोग हैं
0: जी,
1: तो करीब 40% लोग भारत के इसमें कवर्ड है। तो इसकी व्यापकता का अंदाजा लगा सकते हैं
0: जी,
1: और कितने लोगों को ये फायदा पहुंचा रहा है, कितने लोग रिलीफ दे रहा है
0: जी।
1: जो हम चिंता में रहते हैं कि कितना पैसा खर्चा होगा, वो जो हमारी विशेषज्ञता के जो डॉक्टर जो खोजते हैं मिलेंगे नहीं मिलेंगे
0: जी,
1: तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं
0: जी।
1: तो 40% के आसपास लोग, पूरे भारत के लोग इसमें कवर्ड हैं, इससे इसकी व्यापकता का अंदाजा लगा सकते हैं और कितने लोगों को ये फायदा पहुंचा रहा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आयुष्मान कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी की एक सुविधा भी दी गई है, यानी एक राज्य का व्यक्ति देश के किसी भी अन्य राज्य में इलाज करा सकता है
1: जी।
0: और केंद्र सरकार का ये जो कदम है, विशेषकर प्रवासी मजदूरों और ऐसे कामगार जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। इसको किस प्रकार से देखते हैं?
1: बहुत बड़ा है। देखिए, आप जो देखते हैं समाज को, उसमें से माइग्रेशन एक पार्ट है
0: जी।
1: लोग बेहतर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्य के लोग आपके राज्य में आते हैं
0: जी।
1: तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है आपकी, वहाँ पे कोई ऐसा, तो आपका एड्रेस प्रूफ तो वहाँ पे होता नहीं है
0: जी।
1: आप जाते हैं वहाँ पे कुछ आधार कार्ड बना लेंगे, तो जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है, ओरिजिनल एड्रेस है, ओरिजिनल आईडी जो आपका है
0: जी,
1: जो आपने क्रिएट किया हुआ है, वो हर जगह काम करेगा
0: जी।
1: तो जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश का आदिवासी कोई मजदूर है गुजरात में है
0: जी,
1: बुंदेलखंड का कोई आदमी दिल्ली में है, पंजाब में है, कहीं भी है
0: जी,
1: तो उसको इस योजना के तहत उसी तरह से पूरे परिवार को रिलीफ मिलेगा, जो कि पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ते हुए आपसे मेरा सवाल है कि आयुष्मान भारत योजना ने एक हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल किया है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ना बोलकर हेल्थ एश्योरेंस, मतलब आपके बेहतर और स्वस्थ समाज की सुनिश्चितता करती है, एश्योर्ड करती है। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। रंजन जी, आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना आज केवल एक योजना नहीं बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक रक्षा कवच बन चुकी है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इसमें शामिल करना और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से इसे पारदर्शी बनाना भारत को सशक्त और आरोग्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आकाशवाणी भोपाल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद अभिषेक जी।
0: और साथियों, इसी के साथ आज का यह विशेष कार्यक्रम आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत यहीं समाप्त होता है। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: यह था क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा किया, जिसमें वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर भारत के बढ़ते कद के बारे में बताया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि ये विकास स्थानीय व्यवसायों, गाइडों, कारीगरों और समुदायों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। वे भोपाल के भील दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में शामिल होकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली गौपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर कल देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। श्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश में जारी विकास कार्यों, जनकल्याणकारी पहलों, उपलब्धियों, निवेश और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी और सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देश में बदलाव किया है। संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग टोल व्यवस्था को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
1: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा

0: जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
0: बनबकेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
0: मेघालय जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओं मेघालय यानी मेघों का घर।
0: जी
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
0: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
0: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
0: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
0: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था, फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
0: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
0: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।
0: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
0: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
0: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
0: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें और सुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
0: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती
0: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ आज की कहानी से हम 3 बातों को जरूर याद रखें।
0: जी।
1: तो पहली बात,
0: संकट में घबराएं नहीं।
1: दूसरी बात,
0: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
0: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
0: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
0: जी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप

0: कीजिए NCERT बुक्स PDF और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी
2: श्रम का राग सुनाती चींटी
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा
2: दाना चुनकर लाती चींटी
1: सचमुच कैसी कलाकार है घर को खूब सजाती चींटी छोटा तन पर बड़े इरादे
2: छोटा तन पर बड़े इरादे
1: नहीं कभी घबराती चींटी नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी
1: काम बड़े करके दिखलाती
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की हमको यही सिखाती चींटी अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना ना ना नहीं,
4: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
5: प्लीज मेघा
6: दिखा दो।
4: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
7: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
4: चलो चलो चलो।
8: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
8: बहुत अच्छी।
9: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
10: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
10: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
10: जी
4: मैडम आप ही कहते हैं, इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
4: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
10: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। हाँ। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
4: अरे किताब मिल गया।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
10: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
4: सैनिकों के बारे में?
10: सैनिकों के बारे में है।
4: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
10: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
10: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
9: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
4: सैनिकों को तो बड़ी मेहनत करनी होती होगी।
10: कितने बहादुर हैं हमारे सैनिक।
4: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
9: मुझे भी।
4: इसके बाद में नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
10: हां हां, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
4: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
4: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
10: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
10: जी मैडम।
8: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
10: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
10: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
4: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
10: बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
10: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
10: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
4: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
10: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूं?
11: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए।
11: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: ओ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
11: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
10: जी मैडम।
3: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
4: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
7: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
9: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
12: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
13: नमस्ते सर।
14: नमस्ते बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
10: जी मैडम।
14: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
10: धन्यवाद सर।
14: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
10: धन्यवाद सर।
14: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
10: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
14: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
14: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
13: एक हिंदुस्तान।
14: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
15: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
14: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा।

0: मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
1: शाबाश जांबाजू, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, फायर फायर।
0: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
1: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
0: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
1: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए। हमला भी हुआ पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
1: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं पर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर!
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
1: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना नहीं पाए, आगे बढ़ो, फायर!
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया। पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए।

0: अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
1: यस सर, शाबाश।
2: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
2: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
2: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
1: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
2: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत कटी पतंग फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

अगला गीत अब्दुल शेख की आवाज़ में विक्रम भट्ट का लिखा हुआ गीत है, प्रतीक वालिया ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है तुमको मेरी कसम।

उदित नारायण की आवाज़ में लीजिए सुनिए सिर्फ तुम फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

कार्यक्रम का आखिरी गीत फतेह फिल्म से, जुबिन नौटियाल और विवेक हरिहरन ने इस गीत को गाया है। मनदीप खुराना ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं विवेक हरिहरन।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 दर्ज हुआ।

0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रम। 7:30 पर किसानवाणी में सुनिए लोकेश गंगराड़े की लघु वार्ता ई टोकन खाद क्या है। 8 बजे सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स का अनुप्रसारण रात्रि 10 बजे दिल्ली से किया जाएगा। 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे यशवंत बुआ जोशी के ख्याल गायन, राग होगा विहाग। शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित किए जाएंगे बुंदेली समाचार।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। गांधी चर्चा का समय है 9:15। जिले की चिट्ठी सुनिए 10:00। 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम होगा, इसमें आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर सुनेंगे मनोज कुमार का ध्रुपद गायन, राग है गुजरी तोड़ी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा, इसमें 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश का समय है 12:00 और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनवाएंगे मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की पहली कड़ी। हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनेंगे दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां छतरपुर केंद्र की होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 8:00 सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। खेल जगत का समय है 9:30, इसमें कल आप सुनेंगे पंकज कुमार जैन की वार्ता, खेलों के विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स दिल्ली से रिले की जाएगी 10:00। 10:30 पर रागरजनी में सुनवाएंगे मनोज कुमार का ध्रुपद गायन, राग होगा विहाग। कल शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कंप्यूटियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया, कहा देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर, यूपीएससी में भी जरूरी सुधार हों। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दिया न्योता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को आएंगे भोपाल, गोपालक सम्मेलन में होंगे शामिल। और महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर कल से प्रदेश में मनाया जाएगा मद्य निषेध सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी जरूरी सुधारों पर काम करना चाहिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा युवाओं के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और समय की निश्चितता का पालन जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी को ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने पर जोर देना चाहिए जो सरकारी पद के बजाय जनसेवा की भावना से प्रेरित हों। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस साल 2027 में प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और निवेश, औद्योगिक विकास तथा रोजगार के अवसरों से प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और 17 सितंबर से चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही गतिविधियों की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। वे भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे। श्री शाह डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी बांटेंगे। इस दौरान उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए डेयरी प्लांट का भूमि पूजन और भोपाल में फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। कार्यक्रम में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ के दुग्ध उत्पादकों को करीब 12 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल के विकास के साथ आदर्श गौशाला के काम में तेजी लाने और सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में नई टाउनशिप और माइनिंग सेक्टर की संभावनाओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। आईटी क्षेत्र में निजी कंपनियों को पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और जबलपुर के सेमी कंडक्टर इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने के निर्देश दिए। पीएम एमएसएमई योजना ने हरदा के एक छोटे उद्यमी को कारोबार बढ़ाने का मौका दिया है। दलहन यूनिट से शुरू हुआ सफर अब चीन और दुबई तक पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हरदा से आकाशवाणी संवाददाता लोमेश कौर।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम योजना यानी पीएम एमएसएमई योजना से प्रेरणा लेकर हरदा के दीपक उपाध्याय ने एक साल पहले हरदा में दलहन उत्पादन यूनिट की शुरुआत की। अपनी मेहनत और शासन की योजना का लाभ उठाकर उन्होंने कम समय में कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस यूनिट में तैयार मूंग की दाल अब हरदा से निकलकर देश के साथ विदेश तक पहुँच रही है। चीन और दुबई में भी हरदा की मूंग की दाल की मांग है। एक वर्ष में यूनिट का कारोबार करोड़ों रुपए तक पहुंचा है। इस बारे में दीपक उपाध्याय बताते हैं।
2: मैं विनायक श्री इंडस्ट्रीज के नाम से एक दाल मिल चलाता हूं, जिसके अंतर्गत मैं मूंग की दालों का उत्पादन एवं मूंग पॉलिश का उत्पादन करता हूं। मैं पीएम एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के माध्यम से यह बिजनेस चला रहा हूं। मुझे सरकार के द्वारा लिंक उत्पादन सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जो कि टोटल टर्नओवर का 1% होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
1: तो आपने सुना, हरदा में तैयार हो रही मूंग की दाल अब चीन और दुबई तक पहुंच रही है। स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए उद्यम के विस्तार की एक मिसाल है। लोमेश कुमार गौर, हरदा।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा वरिष्ठजनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि बुजुर्ग परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर है और उनका सम्मान हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। कार्यक्रम में 100 साल की आयु पूरी कर चुकी 3 शतायु माताओं को 5100 रूपये की सम्मान राशि और शॉल देकर सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में नशा मुक्ति रैलियां, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य जांच शिविरों के जरिए लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को नशा ना करेंगे ना करने देंगे की शपथ दिलाई जाएगी, जबकि गाँवों में नशा मुक्ति के संकल्प के साथ ग्राम सभाएं भी होंगी। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत ही होगी। किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पंजीयन के दौरान भुगतान वाले आधार लिंक बैंक खाते में 1 रुपये भेजकर उसका सत्यापन किया जाएगा। राज्य में सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 3 अक्टूबर को विकासखंड स्तर पर और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जाएगा। खासतौर पर किसान, ग्रामीण, श्रमिक महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों के लंबित काम और आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में मानसून प्रदेश से विदा हो सकता है। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 1.5 इंच कम बारिश हुई है और 55 में से 30 जिले बारिश का कोटा पूरा नहीं कर पाए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मुरैना के वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य परीक्षण और विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। वहीं इस अवसर पर शिवपुरी के मंगलम वृद्धाश्रम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जबलपुर के शासकीय मोहनलाल हर गोविंद दास गृह विज्ञान और विज्ञान महिला महाविद्यालय में वृद्धों से संवाद और अनुभव साझाकरण विषय पर गतिविधि आयोजित की गई। नर्मदापुरम में भी वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। खंडवा जिले में विपणन वर्ष 2026-27 के तहत भावांतर योजना में सोयाबीन फसल के पंजीयन की प्रक्रिया 3 से 17 अक्टूबर तक चलेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: क्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाले सभी किसान भैया हरन खो अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना की दो हाथ जोड़ी की राम राम पहुंच जाए। भैया आज 1 अक्टूबर है, देखो टेम कैसे निकल जाते ये को पतो ही नहीं चले। काम काज में हम सब इतने उलझे भी दे रहे थे कि कब दिन महीना साल निकल जाते पतो नहीं चल पाए। मनो भैया टेम जब निकलत है तो वो अपने पाछे अनुभव और बहुत सारे संदेश बहुत सारी सीख है हमको दे जाते। तभी तो कहते हैं कि अपने बूढ़े सियाने जो सिखाएं उखो ध्यान से सुनो। अपने बूढ़े सियानों की सीखों हमें गांठ बांध के रखबो चाहिए, उनकी हर बात में दम होत है। और जा बात हम ए मारे भी कह रहे हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, मतलब पूरी दुनिया में आज को दिन 1 अक्टूबर को दिन बूढ़े सियानों के लाने समर्पित है। वैसे भी भैया पुरखा चल रहे हैं, करे दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं। हम इन दिनों अपने सब पितरों को बूढ़ो पूर्वजों को याद करत हैं, उनके आशीर्वाद लेवे को हम प्रयास करत हैं, जैसे कि हमारे जीवन सुखी रहे और आनंदित रहे और हमारे जीवन में हमको कोई कठिनाइयां ना आए। भैया ऐसे ही एक बूढ़े सियानों की सीख हम आपको आज बताएं। बूढ़े सियाने कहते गौ में बसते लक्ष्मी, मतलब के गौ माता में लक्ष्मी को वास है, पशुधन में समृद्धि है, पशुधन जो है वो सुख और शांति को कारक है। और जा बात झूठी नहीं आ, आज सबरे कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गौ पालन करके पशु पालन करके हम अपने घर में उन्नति समृद्धि ला सकते हैं। कैसे के ओई के मिले गोबर से ही गौमूत्र से ही तो हम जैविक खेती कर हैं, और जब जैविक खेती करते हैं तो हमें शुद्ध अनाज मिलत है, अच्छो अनाज मिलत है जो हमें रोगों से बचाऊ थे, हमरे लाजे सबको स्वस्थ रखत है। और कहते हैं ना कि प्रथम सुख निरोगी काया, जब हमारी काया स्वस्थ हुई है हम स्वच्छ अनाज खें।

0: हैं, जैविक अनाज खे हैं, जैविक फल सब्जियां खे हैं, तो हमरो शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, हम दीर्घायु हुई हैं और प्रसन्न चित्त जीवन जीपे हैं। और यही मध्य सरकार ने एक योजना भी चलाई है भैया, आपने एको नाम सुनो हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। यह योजना को उद्देश्य ही जो है कि पशुपालन को बढ़ावा दो जाए, पशुपालकों की आय और किसानों की आय बढ़ावे के ई के माध्यम से नए नए रास्ता खोजे जाए। योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों का उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन के लाने प्रोत्साहित करो जाए, मतलब उनको उत्साह बढ़ाओ जाए और उन्हें जरूरी जो भी सहायता हो बा उनको दी जाए। भैया सीधी सी बात है, गौ पालन करें तो हमें दूध तो मिल है, गोबर मिल है, गौमूत्र मिल है, जैसे कि हम जैविक खाद बना सकते हैं और अपनी खेती में डाल के भरपूर स्वच्छ उत्पादन ले सकते हैं। आज जब जब बात निकली है तो हम आपके लाने एक ऐसे प्रगतिशील कृषक से मिलवाए दे रहे हैं, हमने जिनसे बातचीत करी है थी और हमें बड़ी नौनी जा बातचीत लगी, सो हमने सोची खाए ने कि हम आपको भी जा बात सुनवाएं। हमने बातचीत करी है थी दिनेश वर्मा से, नीलकंठ गांव भैरूदा जिला सीहोर के रहने वाले हैं और भैया जी पशुपालन भी करते हैं, जैविक खेती भी करते हैं, प्राकृतिक खेती भी करते हैं और बड़े अनुभवी आदमी हैं। तो इनकी बातचीत का पहले अपन सुनते हैं फिर आगे की बात करें। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जैविक कृषक हैं, जैविक कृषि को आप या उसके लाभों को आप कैसे समझाएंगे?
1: देखिए जो परंपरा बनाई गई है या हम बात करें कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तो एक दूसरे के साथ चलने के लिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, गाड़ी के पहिए होते हैं या पति पत्नी होते हैं, नर और मादा होते हैं। तो जैविक कृषि को समझने के लिए आप जैविक को समझेंगे जीवों के माध्यम से, जो कृषि जीवों के माध्यम से होती उसको ही जैविक कृषि कहा जाता है।
0: और जैविक कृषि करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये आसान इसको क्यों कहा जाता है?
1: बिल्कुल, देखिए जो पर्यावरण के साथ आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसलिए तो इसको आसान कहा जाता है। और इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, एक साइकिल या एक चक्र बनाया गया है, जैसे धरती, फिर पेड़ पौधे या फसल, पशु पक्षी या मनुष्य, उससे निकलने वाले उत्पाद, फिर वो उससे निकलने वाले जैसे गाय ने घास खाया, फिर गोबर से खाद, और खाद को अर्थवर्म मतलब केंचुए खाएंगे, और केंचुए खाने के बाद में फिर मिट्टी मिलेगा, तो जहाँ से आया वहीं तक का एक साइकिल पूरा तैयार हो जाता है। अब हम मनुष्य ने क्या किया, बीज की कड़ियों को तोड़ दिया है। अब बीज की कड़ी तोड़ने के कारण से सारे दुष्परिणाम सामने आने लगे।
0: अच्छा, अब जैसे जो व्यक्ति जैविक कृषि करना चाहता है या इस समय कर रहा है, जैसे आप कर रहे हैं, आपको इसमें लाभ की अगर मैं बात करूं, आपको कितना लाभ होता है?
1: देखिए सबसे पहले तो मैं लाभ की परिभाषा को दूसरे नजरिए से देखता हूँ, लाभ को पैसे के माध्यम से मैं नहीं देखता हूँ। तो लाभ की बात करें तो जैविक कृषि जो करेगा उसको शारीरिक लाभ जो होगा और जो शतायु हो सकता है, जिसकी लगभग 100 वर्ष की उम्र हो सकती है, या उसके घर में कोई बीमारी ना हो, उस ढूंढने से गोली दवाई ना मिले, तो सबसे बड़ा लाभ मैं उसको मानता हूँ। पहला सुख निरोगी काया।
0: बिल्कुल सच बात है। बड़ा अच्छा आपने विषय छेड़ दिया है कि निरोगी हो जाते हैं इसको खाने से। रासायनिक जब हम दवाएं डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उसमें और जैविक खाद डालने में क्या फर्क देखते हैं आप?
1: बिल्कुल
0: स्पष्ट फर्क क्या?
1: बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि धरती जीवित है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव जो हमारे दुर्लभ चक्षुओं से नहीं देख सकते, लेंस वगैरह से देखना पड़ेगा, जैसे दही के अंदर जो जीव होते हैं,
0: बैक्टीरिया
1: होते हैं, हमारी आंतड़ियों के अंदर भी होते हैं, जो भोजन को पचाने काम करते हैं। अगर हम हमारे मित्र सर्कल की अगर बात करें तो प्रकृति धरती का मित्र केंचवा, गोबर, मट्टी, कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधे हैं। उसके विपरीत अगर जाते हैं, जैसे पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती और मंत्र तंत्र से ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था तो एक साथ सबको खत्म किया जाता था, तो अगर वो रासायनिक चीजें हम जब जमीन में डालेंगे तो मित्र और शत्रु दोनों जीव हमारे मर जाएंगे, और उनके मरने से हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, क्लाइमेट है, वो पूरा खराब होगा। तो आपको मैं छोटी सी बात कहूंगा, एक गोबर के ढेर पे आप सीड को ग्रो कर सकते हो, बीज उगा सकते हो, ना कि केमिकल के अंदर किसी बीज को उगा सकते हो। उसकी मात्रा होती है और ये अनलिमिटेड दे सकते हो।
0: मिट्टी में वो दम है, मिट्टी में वो शक्ति है कि वो बीज को अंकुरित कर देती है।
1: वो गोबर भी कर देगा लेकिन कंप्लीट केमिकल नहीं कर पाएगा।
0: बिल्कुल सच बात है। अब यहाँ हमारे जो लोग सुन रहे हैं, हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को, हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, उनके मन में ये आता होगा कि अब जैविक खेती की अगर हम शुरुआत करें तो किस तरह से करें।
1: बिल्कुल, इसके लिए फिर मैं 40 साल पहले लेकर जाऊंगा आपको, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, हरित क्रांति से। पहले हमारे पूर्वज जैविक कृषि ही करते थे, उनके पास पशुपालन होता था, फसल चक्र के साथ चलते थे। जैसे जैसे केमिकल घर के अंदर घुसा तो हमारे किसानों ने किसी डीएपी यूरिया या किसी केमिकल को घुसने नहीं दिया था, तो हम इसको मैं अपनी भाषा में कहूँ, जैसे जैसे बिगड़े थे ऐसे ऐसे धीरे धीरे वापस लौटना है। जैसे पहले हमने 2 किलो डाला, 5 किलो, आज हम 3-3, 4-4 बोरियों के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हमको एक साथ बंद नहीं करना है, हमको 3 बोरी से 2.5 बोरी पे आना है, 2 पे आना है 1.5 पे आना है, और ऐसे पशु वंश को बढ़ाना, और धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमारी जमीन में बढ़ाना है। और हमारे खुद के लिए अगर हम जैसे शहर की भाषा में बात करें तो किचन गार्डन होता है, सेम ऐसे हमारे परिवार के लिए हर घर में छोटा सा एरिया होना चाहिए हमारे लिए। गेहूं उगाए, दाल उगाए, अनाज उगाए या फल फूल, उसको केमिकल से वर्जित रखें तो हम खुद अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देख पाएंगे।
0: क्या बात, आपने देखो बातों बातों में दो विषय आपने छेड़ दिए, एक तो किचन गार्डन और दूसरा पशुपालन। पशुपालन के बारे में आपका क्या विचार है?
1: देखिए, कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू के बिना काम नहीं चलता है। कृषि के अंग है सब्जी और दूध, कृषि के अंग है सब्जी और दूध, कैश क्रॉप है, रोज पैसा किसान को मिलेगा, तो उसकी फसल जो 4 महीने 6 महीने में आएगी वो एफडी के रूप में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और पशुपालन होगा तो व्यक्ति जल्दी उठेगा, उसका व्यायाम होगा, वो दूध दोहने का काम करेगा, घर में हस्तपुष्ट रहेगा, थोड़ा बचेगा तो मार्केट में देगा, तो उसके अन्य खर्चे उससे चलेंगे, और बोनस के रूप में जो गोबर मिलेगा तो हमारी जमीन मजबूत होगी और वो फसलें बीमारियों से बचेगी, और ऐसे हम जैविक कृषि पे जा सकते हैं।
0: बहुत सही है। आप पशुपालन में आज देसी जो गाय है उसको बहुत ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, आपका क्या विचार है?
1: देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, हरित क्रांति आई, ऐसे श्वेत क्रांति आई थी, एचएफ जर्सी गाय विदेश से हमारे देश में लाए, लेकिन हमारे देश से भी तो भाई ब्राजील गिर गाय गई है गुजरात से, जिसका मोहनो नंदी आज म्यूजियम में रखा गया है, भारत का नंदी गिर नस्ल का। तो कहने का उद्देश्य कि हमने संवर्धन पे काम नहीं किया, हमारी गायों को बेकार कर लिया, इसलिए वो रोड के ऊपर आ गई। अब हमको नस्ल सुधार पे काम करना पड़ेगा, जैसे हम गोत्र मनुष्य में संबंध बनाने के लिए करते हैं, तो ऐसे गायों के गोत्र पे हमको काम करना पड़ेगा। जब हम ब्रीडिंग करेंगे, संवर्धन करेंगे, तो उनका मिल्क रिकॉर्ड, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, गाय श्रेष्ठ हो जाएगी और रोड से धीरे धीरे घर पे चली आएगी।
0: बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता है सर, कि आपका जो विचार है जानकर बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो श्रोता हैं उनको भी चीज समझ में आती होगी कि हम अपने ही वंश की, हमारे भारत वंश की जो गाय है, उन गायों को अगर हम संरक्षण देते हैं, उनसे दूध लेते हैं, तो हमारा जो पौष्टिक दूध हमको शुद्ध दूध मिलता है और जैविक खेती में भी उपयोग होता है। एक आपने बीच में जिक्र किया था किचन गार्डन का, किचन गार्डन की परिकल्पना को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, मैं शहर पे जाऊंगा, व्यक्ति सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जिम जाते हैं, या फूल वाले गमले में पानी डालते हैं। मेरा कहना यह है कि व्यक्ति कहीं भी अगर जाता है, किसी भी बागड़ के ऊपर उसको देसी बीज अगर मिलता है ओपन पोलिनेशन वाला, तो उनको धीरे धीरे संग्रहित करने का काम करे। शहर हो गाँव हो, हर जगह हम कर सकते हैं, शहर में टेरिस के ऊपर कर सकते हैं, और जहाँ भी उनको वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद या किसानों से गोबर का खाद मिल सकता है, तो धीरे धीरे आजकल तो ऐसा है कि जैसे आज हमारी आकाशवाणी हुई या दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम आते हैं उनको देखना चालू करें, तो उसमें हर ऐसे एक्सपर्ट आते हैं, वो प्रोग्राम बनते हैं, तो वो व्यक्ति जब उसकी आदत सी बनेगी, तो छत के ऊपर एक बाल्टी अगर पानी लेकर जाता है दूरदर्शन, एक बाल्टी सब्जियां ऑर्गेनिक अपने बच्चों के लिए
0: लेकर,
1: तो हमको उससे मोह हो जाएगा, उस काम से प्रेम हो जाएगा, तो किचन गार्डन से मोह होगा तो 100% वो सक्सेस हो जाएगी।
0: गांव में भी लोग जो है, बहुत छोटा सा बाड़ा है, तो वहां भी अपना एक छोटा सा किचवाड़ा या बगिया लगा सकते हैं। तो उसको किस तरीके से बनाना चाहिए कि 12 महीने उनको फल सब्जियां फूल मिलते रहें?
1: देखिए,
0: आपके मन में कल्पना है?
1: हाँ, मैंने एक बाड़ा आधे एकड़ का बनाया है, उसको नाम क्या दिया आप समझेंगे, संपूर्ण पोषण आहार वाटिका। मतलब उसके अंदर से सारे पोषण हमको मिलना चाहिए।

0: मैंने एक लिस्ट तैयार की कि कितने फलदार वृक्ष होते हैं। तो मैंने हर रो में फलदार वृक्ष 20-20 फीट की दूरी से लगाए हैं, उसके अंदर बेल वाली सब्जियां लगाई है, कुछ जमीन के अंदर वाली लगाई है। तो उससे क्या होता है, अभी आप जाएंगे तो गन्ने खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं। तो वो वर्ष भर उसको कह सकते हैं अपन सीजन वाले फल हाथ से तोड़कर खा सकते हैं, सब्जियां हो सकती है। और उस एरिया को ऐसा रखना है कि केमिकल पेस्टिसाइड से, जैसे ये हम उपवास रहते हैं, ऐसा रखना तो प्रैक्टिकल भी होगा और हमारा आसानी से काम उसमें चल पाएगा।
1: बिल्कुल सच बात है दिनेश जी, आपने वाकई जो बात कही है वो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको ये चीज़ समझ रहे होंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ों को अपनाना है और रसायनों से दूर होना है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, वातावरण स्वस्थ रहे, हमारे पशु पक्षी पर्यावरण सब स्वस्थ रह पाए। बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी।
2: भैया कैसी लगी जब बातचीत? अभी हम बात कर रहे थे प्रगतिशील कृषक दिनेश वर्मा से। भैया कहते ना कि सुखी जीवन को एक और आधार है, वो है भक्ति, भगवान को भजन। और अगर भगवान को भजन सही ढंग से हो जाए तो हमारी जो जीवन की कठिनाइयां हैं वे भी घट जाते हैं, वे भी कम हो जाते हैं और जीवन में आनंद मिला थे, सुख मिला थे, समृद्धि मिला थे। तो जब संजय बिरिया एक बढ़िया सो जो भजन हम आपको सुनवा रहे हैं, रई सिंह यादव और साथियों के सुरों में गाव भाव आनंद लेते हैं। पावन

भैया रई सिंह यादव और साथियों के सुरों में अपन ने जो बढ़िया नोनो गीत सुनो है, हम एक बात और आपको बता देवे कि खेती किसानी में तजवीज बहुत बड़ी चीज होते। कैसे के हम अगर पारंपरिक तरीके से भी सब ढर्रा में चलत रहेंगे तो हम सफल ना हो पाए। और सरकार आपके लाने ऐसे कई तरीका से आपको आगे बढ़ावे को प्रयास कर रही है, आपको खेती में सुविधाएं मिले एको प्रयास कर रही है। और एक प्रयास में एक और सरकार को प्रयास है, खाद्य वितरण की ई टोकन व्यवस्था। खाद्य वितरण की ई टोकन व्यवस्था का है जहाँ पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लोकेश।

0: गंगराडे, जो कि सहायक संचालक कृषि है जिला देवास में।
1: नमस्कार, ई टोकन के बारे में मैं आप किसान भाइयों से चर्चा करना चाहता हूं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश शासन ने ई टोकन वितरण उर्वरक प्रणाली का मोबाइल के माध्यम से और ई विकास पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। इसमें किसान भाई मनचाहा खाद, मनचाहा रिटेलर और मनचाहा उर्वरक किसी भी विक्रेता से ले सकते हैं। सिंपल किसानों को ये करना है कि किसान को ई विकास पोर्टल पर जाकर आपकी फार्मर रजिस्ट्री से के माध्यम से आपका जो खसरा नंबर है वो आपका फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से लिंक है, तो आपको अपना सिंपल अपना ई टोकन में जब ई विकास प्रणाली में आप जाते हैं, ई विकास पोर्टल जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आप सिंपल एक आपका आधार नंबर जो मोबाइल से लिंक है आपको आपका आधार नंबर डालना होता है, और आधार नंबर डालने के बाद में आपके आपके मोबाइल पर ही एक OTP आएगा। उस OTP को आप वेरीफाई जैसे ही करते हैं तो वेरीफाई करने के बाद में आपकी भूमि की जानकारी, खसरे की जानकारी वो आ जाती है, और आपको कितनी आपके खसरे में कितनी ज़मीन है वो उसमें प्रदर्शित होने लग जाती है, और आपको किस प्रकार का उर्वरक की अभी इस समय आवश्यकता है। यदि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट खरीदना चाहते हैं, यदि आप यूरिया खरीदना चाहते हैं, या NPK, DAP 12-32-16 जो भी आप खाद आपको खरीदना चाहते हैं तो वो आपको उसमें पोर्टल पर शो होगा, और आपको उसमें वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित मात्रा की भी उसमें उल्लेख किया गया है, और साथ ही उसमें वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उसको अनुशंसित मार्का, जैसे गेहूं की बात करता हूं, मक्के की बात करें, या चने में जो अपनी दलहनी फसल है, दलहनी फसल में किस उर्वरक की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो उसमें बहुत ही विस्तारपूर्वक से बताया हुआ है। तो किसान भाई उस वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा का आप उसमें से चयन करके अपने मन चाहे रिटेलर जो भी आपके निकटस्थ हैं उस निकटस्थ रिटेलर का आप चयन करके आप उस अपने उर्वरकों का उठाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने अभी आज से कुछ समय पहले से रबी के अग्रिम उठाव के लिए भी एक सुविधा किसानों को दे दी गई थी, जिससे कि किसान अभी से ही जब रबी का जब सीजन आता तो उस समय उनको किसानों को अपनी खेती की तैयारी करने के लिए समय कम रहता है, तो इस विषय में मध्य प्रदेश शासन ने उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए किसानों को अग्रिम उठाव की भी सलाह दी है, और हम लोग भी लगातार अपने मैदानी अमले हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से और सहकारी समितियों के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो किसान को अभी आगामी रबी मौसम में जो फसल जो लगाना चाह रहे हैं तो उसका यदि वो यूरिया, DAP या NPK जो भी उर्वरक लेना चाहते हैं तो उसका अग्रिम उठाव अभी से कर सकते हैं। इसमें ई विकास पोर्टल में आप जैसे ही भी ओपन करते तो इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है कि आपको सभी प्रकार के विकल्प खुले हुए हैं। यदि आपकी राजस्व पट्टा भूमि है तो उसका भी आपके पास में विकल्प और उसका वीडियो दिखाया हुआ कि आप किस तरीके से राजस्व पट्टाधारी के लिए आप खाद बुक कर सकते हैं। जो वन पट्टाधारी किसान हैं जिनका कईयों का खसरा उसमें जोड़ा नहीं रहता है तो वो वन पट्टाधारी किसानों के लिए भी है। धार्मिक ट्रस्ट की बात करते हैं जहाँ पे मंदिर और कोई की ज़मीन होती है वो वहाँ पे भी खेती लंबे स्तर पे मंदिर के पुजारी और ट्रस्ट लोग करते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सुविधा दी है। मंदिर के पुजारी के साथ में जो सरकारी जो ज़मीनें हैं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसका भी एक अलग से वो दिया हुआ है कि आप उसके माध्यम से भी आप उसकी बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सरकार ने बहुत अच्छी एक व्यवस्था जो मृत किसान हो चुके हैं, मृत किसानों के लिए भी इसमें बहुत अच्छी सुविधा दी है कि यदि जो किसान मृत हो चुके हैं और उनका भूमि का नामांतरण अपने नेक्स्ट जनरेशन में नहीं हो पाया है तो उनको भी वो किसान के बच्चे भी उस भूमि के आधार पर वो अपनी रबी फसल के लिए या जो भी उर्वरक वो लेना चाहते तो वो ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक बहुत अच्छी पारदर्शी व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन ने लागू की है। इससे कोई भी किसान पहले जनरली होता यह था कि कई किसानों को ये पता नहीं होता था कि उसके पास के किस रिटेलर के पास में कितना कितना खाद है। आज किसान घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से दे सकता है कि उसके यहाँ पे यदि 5 या 6 डीलर हैं तो उस 5-6 डीलर उर्वरक डीलरों के यहाँ पे किस मात्रा में कितना उर्वरक उपलब्ध है उसकी पूरी उसकी क्वांटिटी वो उसमें से देख के वो उसको बुक कर सकता है कि कौन सा उसको समीपस्थ पड़ेगा और उस समीपस्थ पे जाके अपना उर्वरक का वो उठाव कर सकता है। तो अब इस प्रकार से ये है कि किसानों को जो भी खाद जितनी आवश्यकता होती है उतनी अब मिलेगी और मिलने के बाद भी यदि उसको और आवश्यकता होती है वो उर्वरक भी उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद।
0: समझ गए भैया, खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था का है, तो अब झट

0: से अपनो मोबाइल निकालो और आप ना जानो तो अपने पढ़े लिखे जो मोड़ा मोड़ी हैं उनसे बात करके, उनसे समझ के और अपनो खाद को ई टोकन ले के फिर ओके बाद निश्चिंत हो जाओ। जो टाइम आपको मिलो है, जो तारीख आपकी मिली हो, तारीख पे जाके बढ़िया अपनो खाद उठा के लाओ और खेती करो। भैया खेती में एक बात और है, अब जैसे कि खरीफ की फसलों को कटाई को काम चल रहा है तो जा टाइम पे हम अपने किसान भाइयों को एक कृषि सलाह दे वो चाह रहे हैं बच्चा कि जो बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहे हैं किसान भैया भी अपने खेत में गनमन घूम फिर के देख लेवे, जो और प्रजाति के पौधा हो उनको निकाल के अलग कर देवे, फिर ओके बाद में ही कटाई की व्यवस्था करें, खरपतवार है तो उनको निकाल देवे। जैसे कि आपको एक दानी अच्छो बढ़िया जो किस्म आपने लगाई थी वही किस्म को बीज आपको मिलने लगे। संगे ही संगे एक बात को और ध्यान रखने हैं, कटाई करते टाइम जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करने हैं। सोयाबीन की फलियां जब पूरी तरह पक जाएं, पत्ता ओके सूख के झर जाएं, ओके बाद ही अपन को कटाई करने हैं। और सोयाबीन की कलाकारी तो जाइए भैया कि सही टाइम पे बिल्कुल सही ढंग से कटाई करी जाए तो बहुत अच्छो है, ना तर अगर देर कर दी तो फलियां चटकन लगाते हैं, सो भी नुकसान होने लगते हैं। सो हमें जा बात को ध्यान रखने हैं कि सही टाइम पे सोयाबीन की कटाई करने हैं और कटाई करने के बाद डिबियों को खेत में 2 दिना तक छोड़ दो, जैसे कि वे फरेरी हो जाए, सूख जाए, उनमें जो नमी हुए बा हट जाए, जैसे कि थ्रेशिंग में आपके लाने दिक्कत न हुए। हाँ, जो किसान भैया रबी के लाने तैयारी कर रहे हैं वे भी ध्यान रखें, रबी में गेहूं चना मसूर जो भी आप बोन चाह रहे हैं, बाकी अनुशंसित बीज उन्नत किस्मों के अच्छे बीजों की जानकारी लेके वे बीज अभव से लेके धर लो। और ध्यान जो रखने हैं कि बीज जब भी खरीदो प्रमाणित संस्था से ही बीज खरीदने हैं, पक्को बिल जरूर लेने हैं, बोरी पक्की सील बंद है बाबी हमें देखने हैं, और हमें जावाद को भी ध्यान रखना है कि बीज हमारे क्षेत्र में अनुशंसित है कि नहीं है, हमें वो ही बीज लेने हैं, और कितने पानी की व्यवस्था है हमारे पास वही हिसाब से बीज लेने हैं। अगर हमारे पास पानी पर्याप्त है तो हमें सिंचित किस्में लेने हैं, अगर पानी कम है तो अर्ध सिंचित किस्मों को चुनाव करने हैं, और अगर पानी बहुत ही कम है तो हमें असिंचित क्षेत्रों में जो फसलें जो बीज लगाए जाते हैं उनको चुनाव करने हैं। संगे संगे बीज उपचार करे बिना हमको बिल्कुल नहीं बुआई करने हैं, को जल्दी नहीं है भैया, अब टाइम है बुआई करे में, ऐसे जल्दी बिल्कुल ना करें, पहले अपनी फसलों की कटाई करें, खेत के लाने अच्छो सुधारे, साफ करें, और हाँ एक बात और, जो फसल से निकले वारो कचरो है वो कचरे खो आप बिल्कुल भी, फसल अवशेष खो बिल्कुल भी आग ना लगाइयो, ओखो मेड़ से बाहर खेत के रख के वो को खाद बनाइयो, जैसे कि जो खाद आपको आगे जाके काम आएगो, आगी लगावे से, नरवाई जलावे से, खरपतवार जलावे से, खेत में आगी लगावे से, आप तो जाना तो भैया मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाते, मतलब मिट्टी की पैदावार देवे की क्षमता खत्म हो जाते, मिट्टी के मित्र कीट खत्म हो जाते हैं, जैसे हमारी फसलें जो है वे कमजोर होने लगते हैं, और कमजोर होवे के कारण उन्हें जब पोषक तत्व कम मिलाते हैं तो ये कारण जो बाहर से आवे वाले रोग और कीट हैं बेबी उन पे हावी हो जाते हैं और हमरो नुकसान होने लगे थे। तो हमें जे कछु बातों को ध्यान रखने हैं, हमें अच्छी खेती करने हैं, समृद्ध खेती करने हैं, उन्नत खेती करने हैं और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो आपका जानकारी दी गई है वह आपको अच्छी लगी हुई है, उपयोगी लगी हुई है। तो अब जय उम्मीद के साथ अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना को देव आज्ञा, स्वीकार करो दो हाथ जोड़े की राम राम, जय सिया राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। विषय है हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: नमस्कार। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में आप सभी का स्वागत। विकास की दौड़ में आज दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करना। भारत ने इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव ईंधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जलवायु अनुकूल विकास को अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान गुजरात में जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ जैसी पहलों तक हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सामने आए हैं। गुजरात का चारण का सोलर पार्क देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में सहयोग कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की सौर क्रांति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है, ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ ऊर्जा की क्या भूमिका है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान तकनीक नीतियों और जनभागीदारी का किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आनंद शर्मा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: और आइए सुनते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ कर रहा है और अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से।
5: भारत में सौर ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। भारत की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया गया ISA सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के भीतर सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में भी पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट हो चुकी थी। वर्ष 2014 में ये क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा का विस्तार केवल अधिक बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से भी है। साथ ही रूफटॉप सोलर के विस्तार से परिवार बिजली की लागत कम करने और कुछ मामलों में अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।
2: आनंद शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में

0: श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहलें बहुत चर्चा में रही हैं। गुजरात के इस अनुभव ने देश की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या गुजरात का जो ये मॉडल था, ये देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है?
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये विजनरी स्टेप था, और वो भी 2009 में, जब शायद इतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर। उस समय एक स्टेप लेना और एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना जो कि ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन अडेप्टेशन मुद्दों पे जिसने एक लीड रोल निभाया, और एक उसी विभाग के अंडर जो है उन्होंने अपना एनर्जी का डिपार्टमेंट है, गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना की, और वो आज एक पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। करीब करीब वहाँ पर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी आज जनरेट की जा रही है, और 2030 तक उसका टारगेट शायद 150 गीगावाट का है, और 2050 तक 300 गीगावाट का है। और उसी की देख रेख में, उसी की पहल को देखते हुए अन्य स्टेट जो हैं, केरल भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है भारत जिस तरह से सौर ऊर्जा में गुजरात ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल मोदी जी, उनके अंडर जो विजनरी स्टेप लिया था, वो एक मतलब कि इस समय जो दिख रहा है कि उस समय जो स्टेप लिया था, आप सोचिए कि इस समय जब लड़ाइयाँ शुरू हुई खासकर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और हमारी एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हुआ है, तो अब समझ आ रहा है कि देखिए उस समय जो लिया हुआ स्टेप है कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो वो एक बहुत ही विजनरी स्टेप था, और मुझे लग रहा है आज इसको हम और मतलब जैसे कहते हैं गति लानी होगी, और उसके लिए भी सरकार जो है पूरा सब्सिडी दे रही है, के साथ साथ जो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 5 और 6% पे इंटरेस्ट पे पैसा भी मिल रहा है सोलर पैनल लगाने का। और आपने जैसे कहा पीएम सूर्य घर, करीब करीब 10 लाख घर जो हैं वो इसको लगा चुके हैं, और मुझे लगता है टारगेट शायद 1 करोड़ जी से ज़्यादा घरों का है आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ सोलर पंप्स, वो एक बहुत फ़ायदा होगा किसानों को। कई बार क्या होता है आपके ग्राउंड में पानी तो है मगर आपके पास डीजल नहीं है उसको निकालने के लिए पानी के, सोलर पंप है तो आप खास कर सिंचाई कर पाएंगे फसल को उस समय जब आपकी लंबे समय से बारिश नहीं होती है। तो आपको ये देखिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी मिली उससे आपको फूड सिक्योरिटी में भी फायदा हो रहा है
0: जी।
1: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूँगा, और अन्य कंट्रीज को एग्जांपल दिया जा रहा है जहाँ यूरोप और चाइना इवन उनकी पूरी इकोनॉमी कोल बेस्ड है, और खासकर लड़ाई के बाद उन्हें पूरा कोल पे आ गए, और वहीं इंडिया जो पहले शायद 5-7 साल पहले हम भी यही बात कर रहे थे, पर अब हमने शिफ्ट होके सोलर पे आ गए, तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात होगी ये, क्योंकि हमें 0 कार्बन पे आना है मिनिमम, और नेचुरली कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपकी तो क्लाइमेट चेंज में मिनिमम होगा या कम हो जाएगा, तो और यदि वो होता है तो हैजार्ड्स कम होंगे तो आपके जो पैसा और उससे जो नुकसान होता है और वो रिलीफ में जो पैसा आता है वो बचेगा, और वो पैसा फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से,
0: और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये फुल साइकिल आपने चर्चा की। आनंद शर्मा जी, 25 सालों का अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और जो अनुभव वहाँ से उन्होंने इकट्ठा किए उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने लागू किया, और उसके जो परिणाम हैं आज हम वो देख रहे हैं। हम कई देश में, शहरों में, कई राज्यों से जब गुजरते हैं तो घरों की छतों पर लगा हुआ सोलर पैनल इस बात की गवाही देता है। आज कई राज्य हमारे, कई शहर जो हैं, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। और आपने अभी जिस पूरी एक साइकिल की बात की देश के विकास में किस तरीके से लोगों की बिजली की बिल में जो बचत हो रही है वो पैसा अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ावा दे रहा है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका कि ये क्या जो सोलर पैनल हैं घर घर में कहाँ तक हम पहुँचे हैं, और आगे 5 से 10 साल में हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं?
1: नहीं देखिए, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है उसमें कोई डाउट नहीं है, यदि पूरे वर्ल्ड लेवल पर चले तो इंडिया की प्रोग्रेस सराहनीय है, और कुछ स्टेट जो है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये पहला स्टेप गुजरात में लिया गया तो गुजरात तो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। आपने अभी एक वो पार्क की बात करी, वो उसके अलावा खेवड़ा जो है सोलर पार्क है वो तो बहुत ज़बरदस्त, उसके कहते हैं 30 गीगावाट, जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई थर्मल पावर उतनी एनर्जी जनरेट करने वाला है, जो कि करीब करीब मुझे लगता है 5,300 एकड़ में फैला हुआ है, और आपने आप में शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक जनरेशन वाला रीजन होगा। तो एक ये बहुत बड़ी पहल है, और आपने भी सही कहा कुछ दिनों में ये गुजरात जो होगा सरप्लस स्टेट में होगा, और वो यही नहीं कर रहे उसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ शुरू कर दिया है, मतलब कि पानी भी होगा आपके पास, ऊर्जा भी हो सकता है, और वो सब ये मार्जिनल लैंड में जहाँ कुछ ग्रो नहीं करता था। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि वो वाली

0: कोई अच्छी वाली, कई बार लोग कहते हैं ना उपजाऊ भूमि खराब हो गई, वो भी नहीं, ये तो मार्जिनल लैंड थी, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है। और हु नोस कि कल को उसी के नीचे कुछ और पानी हार्वेस्ट हो जाएगा तो कुछ और लगने लग जाएगा। तो ये सोलर पैनल बड़ी अच्छी प्रयास है और मुझे लग रहा है इसको जिससे वार फुटिंग पे मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस को अभी जो हाल ही में एनर्जी क्राइसिस हुआ है तो हर घर पे हर बिल्डिंग पे ये ज़रूर देखने चाहिए और वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये होता है तो हम लोगों की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल की वो करने के लिए वो भी ख़त्म होगी, और जब एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा और आप एक सुपर पावर भी बन पाएंगे।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में जो सौर ऊर्जा की क्रांति हुई है, काफी घरों की छतों पर अब हम देखते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है और हर घर लगभग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब ये नहीं है कि बिजली आएगी गाँव में, पोल लगेगा तब होगा, लोग बड़े आराम से उसको लगा रहे हैं और सरकार सहयोग कर रही है। तो इन 12 वर्षों में अगर सिर्फ सोलर पैनल की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कहां से कहां हम पहुंचे हैं?
0: एक समय ऐसा आ रहा था कि नेचुरली आपको मालूम होगा कई प्रदेशों में तो बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो मात्र 3-4 घंटे रहती थी। अब क्या है, लोग इंडिविजुअल अपने यहाँ जब से लगाने लगे हैं तो उनके पास अब घर में बिजली भी आ रही है, और नेचुरली बिजली होगी तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपके सोलर पंप हैं, आप पानी भी निकाल पाएंगे तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक समय पे ये बात हो रही थी कि ऑफ द ग्रिड, मतलब आपको मेजर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर पैनल लगाइए और अपनी बिजली खुद पैदा कीजिए, और अब जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो फिर बात हो रही है कि ये वाली जो ग्रिड है ऑफ ग्रिड नहीं, इसको मेन ग्रिड से, मतलब आप खुद तो अपने घर का खर्चा निकालेंगे ही बिजली का और बेचेंगे भी सरप्लस को, तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कहीं जहाँ ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन ग्रिड।
1: मतलब आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं निशुल्क, और साथ ही पैसे भी कमा रहे हैं।
0: पैसे भी कमा रहे हैं,
1: बिल्कुल। आनंद जी, आपसे एक सवाल और है कि जलवायु परिवर्तन जो है आज केवल पर्यावरण का विषय ही नहीं रहा, बल्कि कृषि, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कृषि है, स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: भारत में बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए, कहीं बहुत तीव्र गर्मी है तो कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल विकास की क्या आवश्यकता है और मौसम विज्ञान विभाग इस दिशा में किस प्रकार से योगदान कर रहा है?
0: देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात हो रही है वो एक बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जो कि कंबाइन करती है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करेंगे आप तो यू विल बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सोसाइटी, मतलब कि अडेप्टेशन है एक तरफ आपका मिटिगेशन है, और ये साथ में जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिक गोल तो क्या है कि हमें, यदि आपको क्लाइमेट एक्शन जो है उस पर मेजर फोकस है, और क्लाइमेट एक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन में मीन्स है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, नेचुरली आपको ये तो मालूम ही होगा, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सबको बड़े घर चाहिए, कारें चाहिए, रहन सहन की और सहूलतें चाहिए, तो जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करते हैं, और उसके चलते जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज से नेचुरली जब क्लाइमेट जल्दी से बदलेगा और ज़बरदस्त बदलाव आएंगे तो चरम सीमाएं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी सूखा होगा, कभी फ्लड होंगे, कभी हीट वेव होगी, तो ये सब करने के लिए, इसको बचने के लिए हमें मिटिगेशन बड़ा ज़रूरी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करें, यानी कि हमारा जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें आगे चलना है। मिटिगेशन आ गया ये पहला। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि जहाँ भी कोई रिस्क है, जैसे समुद्र के पास है, गुजरात की बहुत बड़ी कोस्ट है, या ज़्यादा पूरा इंडिया में इतनी, वहाँ पे सी लेवल राइज का खतरा लोग कह रहे हैं, साइक्लोन का खतरा रहता है, तो ये जो खतरे हैं उसमें कहाँ रिस्क है वो रिस्क को जानना, और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यदि आप सही समय पर आपको रिस्क मालूम है और आप हज़ार्ड को प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसकी वार्निंग जनता को दे देते हैं, उनको समय पर हटा देते हैं, तो जान माल आप बचा लेंगे, और यदि आप ये कर लेते हैं तो वही बात होगी, आपका पैसा बच गया, वही पैसा आप डेवलपमेंट में जाएगा जो कि रिलीफ में जा रहा था पहले। तो यही अडेप्टेशन और मिटिगेशन है, और जब अडेप्टेशन मिटिगेशन ढंग से होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, हर बार हैजार्ड आएगा, आपने प्रेडिक्शन नहीं किया, हजारों जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ेगा और आपका पैसा रिलीफ में जाता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी कि जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हमारी चॉइसेस होनी चाहिए, यानी कि ये है कि ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे तो वो उसके चलते क्या हुआ, घर ऐसी जगह पे बना दिया कि वो हैजार्ड बाढ़ में बह गया, तो आपस में इन सब में लिंक्स होने चाहिए अक्रॉस द पॉलिसी।

0: मतलब हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक को फिक्स करते हुए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो आपस में एक इंटेग्रेटेड वो रहना चाहिए, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्लियर इम्प्लीमेंटेशन जो है गैप है उसको क्लियर करना है। अभी क्या है कि कई चीज़ें तो हम बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उनको, बट उसको अभी शायद उसका कार्यान्वयन करने की बहुत स्कोप पड़ा है हमारे पास, और यदि वो हम करते हैं तो ये गैप जो है हमारे गोल में और एक्शन में अभी थोड़ा गैप है, उसको पूरा करना होगा।
1: आनंद शर्मा जी, सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर उपकरणों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की है। पहले हम इसे आयात करते थे, अब उत्पादन तो हो ही रहा है, और इसके उत्पादन में जो सामान लगता है, जो उपकरण लगते हैं, उसका निर्माण भी हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, आप अभी बात कर रहे थे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि ऐसा था अभी जब हम कुछ साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले, तो एक्चुअली जितने भी सोलर पैनल थे हम सब लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, और इम्पोर्ट कर रहे थे वो तो एक चीज़ थी। उसके बाद में जब से फिर ये चला आगे को, तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सवाल आया कि भाई दिन में तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और रात को तो नहीं है, तो इसको स्टोर कहाँ करें एक्स्ट्रा को? तो उसके लिए बैटरीज की बात आई, लिथियम बैटरी, वो भी हम कहाँ से इम्पोर्ट कर, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, तो हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग जा रहा था। अब यह है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है अब हमने ये सोलर पैनल्स इंडिया में बनने लग गए हैं, और ऐसे ही बैटरीज भी बनने लग गए हैं, मगर फिर भी आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लिथियम हमें जो है उसके लिए, और सिलिका जो कहते हैं हमें इसके लिए चाहिए सोलर पैनल्स की, इन दोनों पर आज भी हमें निर्भर होना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। तो वो निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी, इनोवेटिव कहते हैं हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलप करनी पड़ेंगी स्टोरेज के लिए, और पैनल्स बनाने के लिए भी हमें मतलब सिलिका से जो है जो उस पर डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यदि वो हम ख़त्म कर पाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की हमारी भारत सरकार की पॉलिसीज़ हैं, तो हम शीघ्र ही उसमें भी मतलब कि अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे सामने में, और ऊर्जा में तो डेफिनेटली आ ही चुके हैं, और ये तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। सिर्फ हमें जो दो करने की ज़रूरत है वो यही है कि लिथियम की जो बैटरीज हैं वो भी हम पूर्ण अपने मतलब कि खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाएं उसमें भी, और पूरे पैनल को बनाने से लेकर उसके जो उसमें जो सिलिका जो भी पार्ट लगते हैं उसमें भी हम पूर्ण सेल्फ रिलायंट होना हमें जरूरी है अभी।
1: और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में मिशन लाइफ क्या है।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और तकनीक के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, और टिकायु खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में अब तक 40 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 7 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए देश भर में 12 लाख से अधिक इको क्लब भी मिशन लाइफ के तहत काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ का संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। मिशन लाइफ इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, और टिकायु जीवन शैली को जन भागीदारी से जोड़ता है।
1: आनंद शर्मा जी, इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आम नागरिकों की दैनिक आदतों, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ उपभोग की कितनी भूमिका हो सकती है, और इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मौसम विभाग और पर्यावरण जागरूकता की खास तौर पर क्या भूमिका आप देखते हैं?
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जो आपका COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहाँ ये इन्होंने ये इनिशिएटिव जो था लिया था, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, और इसका बेसिकली जो मेन है टू प्रमोट माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिड्यूस माइंडलेस कंजम्पशन। तो अभी समय क्या हो रहा है, माइंडलेस कंजम्पशन हो रहा है, जबकि होना चाहिए माइंडफुल कंजम्पशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी। दूसरा है कि अभी तक हम कर रहे थे यूज एंड थ्रो, यूज करो और थ्रो करो, और उससे क्या हो रहा है गार्बेज और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उसको अब चेंज कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि आप कचरा भी पैदा करेंगे तो उसको सेपरेट भी करेंगे और उसको आप रीयूज करेंगे, जैसे कि आपका वेस्ट निकल गया बायो

0: उससे आप बायोमास से अपना एनर्जी निकाल ली, आपने उससे आपने कहते खाद बना ली, आपने उसको मल्च की तरह यूज़ कर लिया खेती में, ये बहुत सारे बेनिफिट हो गए उससे, बायोगैस बना ली आपने, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में सब आ रहा है। और उसमें पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना एसओपी बनी है बड़े अच्छे ढंग से कि हर चीज़ को मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी और आपका वेस्टेज भी मिनिमम होगा। और ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को। और इसमें फोकस क्या है, फोकस है आपका प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हर जो नागरिक हो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवली प्ले करेगा कि भाई मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रो प्लैनेट पीपल, वो इसका मेन फोकस है। तो उसमें आपने पूछा कि मौसम विभाग और पर्यावरण विभाग का क्या रोल हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज की आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज़्यादातर लोग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस है, एयर कंडीशन स्कूल है, एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन कार है, तो वो नेचर से जो है हमारी प्रकृति से कट ऑफ हो गए हैं। इसको मैं इसको कहता हूँ नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर हो गया कि उसको प्रकृति में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है बाहर। तो जब वो पता ही नहीं तो वो उसको कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसको पता ही नहीं मेरी यमुना नदी खराब हो चुकी है, मेरे लैंडफिल इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। पहले उसको कनेक्ट करना है, किताबी ज्ञान से ये लोग सीख नहीं पाएंगे पर्यावरण के बारे में, उनको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक चीज। दूसरी बात, जब कनेक्टेडनेस कैसे होगी, जब उनको समझाना पड़ेगा भी देखिए आप जब एक्स्ट्रा कोई पॉलीथीन लेते हैं या आप एसी कोई आप कहते हैं करना चाहिए आपने 18 डिग्री पे लगा के रखा है, यदि आप उसको 24 डिग्री पे करके रखते हैं बिजली बचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी बताना चाहिए बिजली कहाँ से आ रही है,
1: और आप अपना स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं,
0: स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, बिल्कुल स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं आप। और जब आपने और इसको ये मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन कहाँ जा रहा है, ये नदी में जा रहा है, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फिश वगैरह में जा रहे हैं, उसी को लोग खा रहे हैं, तो कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ये सारा कनेक्टेडनेस जो है इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ये जब हम समझाएंगे और बताएंगे वही पॉलीथीन को आप जला रहे हो तो फिर CO2 गैस निकल रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है और आप पिछड़ते रहेंगे क्योंकि आपका सारा पैसा तो कहते इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा आपका, फिर आप उसी में पैसा लगाओगे तो नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नई यूनिवर्सिटीज आप कैसे खोलेंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये कनेक्टेडनेस जब लोगों को ये समझ आ जाएगी सिंपल भाषा में कि भाई हाँ ये तो मुझे तो प्रो प्लैनेट पीपल बनना है,
1: बिल्कुल
0: मुझे है ना, मेरे को धरती पे अपना बोझ कम से कम करना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम कितना पानी डेली यूज कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लोग नहीं बता पाते, कोई कहता 10 लीटर, कोई कहता 50 लीटर, जबकि वो 500 लीटर कर रहे हैं। तो वही जो है ना,
1: वो दे आर नॉट माइंडफुल, उसके बारे में माइंडफुल,
0: माइंडफुलनेस जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइंडफुलनेस लेके आनी है उनमें, कि उनको रियलाइजेशन हो कि भाई हम कर क्या रहे हैं। आजकल के देखा होगा जो बच्चे हैं हर उठाते हैं फोन से सामान पे सामान आ जा रहा है, और आप देखेंगे तो दिन भर में इतना कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा वो कचरा, वो सारा फिर वो आप जला देंगे कहीं ले जाकर, सेग्रीगेट तो सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कर दिया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वही उनको समझाना है ये फेंकना नहीं है, इसको रिसाइकिल करना है। और काफ़ी इसमें पहल हो रही है, काफ़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, आजकल तो कपड़े भी मिलते हैं आपको, बोलते हैं रिसाइकल्ड है ये कपड़ा या ये बैग है जो रिसाइकल्ड हो रहा है, मगर इसमें एक और भी ध्यान रखना कि ग्रीन वॉशिंग ना हो, कि बोल रहे हैं हम कर नहीं रहे हैं, करना है, करके दिखाना, क्योंकि अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
1: आपने सही कहा, पॉपुलेशन बड़ी है क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इसकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है, कहाँ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड, और कहाँ केरल, और कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ गुजरात, कच्छ, इतना बड़ा देश है। अब ऐसे इतने बड़े भौगोलिक देश में एक्सट्रीम वेदर्स की भी समस्या है, कहीं हीट वेव है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, बाढ़ है, कहीं चक्रवात है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव रहा है उस पर चलते हुए उनके नेतृत्व में इन सब चीज़ों पर ख़ास तौर पर ध्यान देना शुरू किया है। हमने ये भी देखा था एक वक्त पर कि IMD, आप वहाँ रहे हुए हैं एक बड़े पद पर, IMD जब कहती थी कि बारिश होने वाली है, बारिश होती नहीं थी, और उनके कई सारे जो पूर्वानुमान होते थे वो या तो सटीक नहीं होते थे या कई बार गलत साबित होते थे, लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूर्वानुमान की सटीकता सही रही है, समयबद्धता में सुधार हुआ है, आम नागरिकों तक चेतावनी भी समुद्री इलाकों में बड़े समय से पहुंच रही है। IMD ने ये कैसे किया, क्या रणनीति है
0: इसमें? बहुत सारी चीज़ें आप किसी से पूछेंगे मीडिया से तो एक एक्सेलेंट फोरकास्ट मेरी, चाहे वो मैं कर्नाटका में था, चाहे मैं सिक्किम में था, चाहे मैं देहरादून में था, दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके पीछे सब कुछ है कि निरंतर प्रयास। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी पिछले 15 साल में तो बहुत तेजी आई है इन प्रयासों में, पर पहले भी प्रयास हुए हम लोगों को, जो जिस तरह से मतलब सुपर कंप्यूटर 87 में आ गया था, उसका एक मेजर रोल रहा, सबसे मेजर रोल

0: रहा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर दे नहीं रहा था, फिर सुपर कंप्यूटर मिला और उस सुपर कंप्यूटर के चलते जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन शुरू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा रोल आया। दूसरा सैटेलाइट जो आए, सैटेलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, डॉपलर वेदर रडार आ गए, मगर इनके नंबर कम था डॉपलर वेदर रडार का, सैटेलाइट में भी कुछ इतने सेंसर्स नहीं थे जितने हम मौसम विभाग को चाहिए थे। फिर वो जब बोला गया और बीच में, तो ये पिछले 10-15 साल में इनमें बहुत भयंकर तेजी आई, यानी कि मतलब काफी पैसा इसमें गया और नए सुपर कंप्यूटर्स लिए गए, नेटवर्क को बढ़ाया गया। डॉपलर वेदर रडार जो है मेरा ख्याल अभी 25-30 लग चुके हैं और मेरा ख्याल 100 इनका नंबर पहुंचने की बात हो रही है अगले कुछ 1-2 साल के अंदर। तो इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं और बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले लोग बोलते थे ऐसा कि भाई मौसम विभाग जो बोलता है गलत, पर अब नहीं है, अब काफी सालों से 15-20 साल से ये धारणा बदली है और रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत लोगों की जानें बच रही हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी जो प्रयास हैं ये हमारे जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी सोसाइटी को रेजिलिएंट बना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और मानसून का कितना महत्व है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के वितरण, तापमान और मानसून के व्यवहार में होने वाले बदलाव किसानों के लिए क्या चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं, कृषि मौसम सेवाएँ, जिला स्तर के पूर्वानुमान और समय पर सलाह किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं और क्या नई तकनीक और IMD लेकर आ रहा है?
0: ये सवाल बहुत बढ़िया है। आपको एक तो मालूम है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी पौधों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, वाटर सिक्योरिटी का भी इशू होगा, भाई नेचुरल जहाँ बारिश नहीं वहाँ सूखा पड़ेगा। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। आप देखिए हालांकि इस साल थोड़ा प्रोडक्शन में कमी हो सकती है क्योंकि एल नीनो ईयर था, मगर उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से मौसम आधारित कृषि सलाह लोगों को मिल रही है, जिस तरह से कहते हैं ICR ने ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज़ डेवलप करी हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल है, समय समय पर यदि किसान को मौसम आधारित सलाह मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अभी ये बारिश आने वाली है, तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे देखो किसान भाइयों आपकी फसल जो तैयार पड़ी है 3 दिन में बारिश आने वाली है, तो आपकी तैयार फसल को काट के सुरक्षित स्थान पर रख लो, तो नुकसान बच गया उसका। ऐसा ही है, मान लीजिए किसान को इस समय फसल है उसमें फ्लावरिंग आ रही है जैसे महाराष्ट्र में, और बारिश मान लीजिए आने वाली है, तो आप कहोगे किसान भाइयों को देखिए भाई बारिश आने वाली है तो आप सिंचाई को टाल दीजिए, तो आपका सिंचाई का पैसा बच गया। सिमिलरली बारिश आने वाली है और आपने मान लीजिए आप फर्टिलाइजर और केमिकल लगाने वाले हैं, तो हम उन्हें कहेंगे नहीं भाई बारिश आने वाली है आप फर्टिलाइजर और केमिकल अभी ना लगाएं नहीं तो वो पानी से बह जाएगा। तो ये जो मौसम आधारित कृषि सलाह है इसने बहुत फायदा किया है और यही एक कारण है कि वी आर एबल टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर यील्ड्स। नहीं तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, तो यही कहा गया था कि भाई एपिडेमिक्स होंगे, और यही नहीं क्योंकि हम समय समय में उनको बता दे रहे हैं कि अब ये मौसम जो है अनुकूल हो गया है पौधे पे बीमारी आने का, तो आप मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए मगर स्प्रे मत करिएगा अभी, जब वो थ्रेशहोल्ड से बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे आपको जब स्प्रे करना है आपको, और हो सकता है कि मौसम पौधे के लिए अनुकूल हो जाए और बीमारी जो पेस्ट होता है उसके लिए विपरीत हो जाए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्प्रे करने की। तो केमिकल स्प्रे को भी बचा रहे हैं हम लोग, और वही स्प्रे जो केमिकल के पानी में जाते हैं, मच्छी में जा रहे हैं, फिर लोग उसको खा रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। मौसम आधारित जो कृषि सलाह है उससे हम किसान का पैसा बचा रहे हैं, लोगों की हेल्थ बचा रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं।
1: और देखिए भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना हुई। आज ये सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और विकासशील देशों में निवेश और तकनीक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जिसका हम लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। यूरोप के कई देश अगर आप देखें जैसे डेनमार्क, तो वहां पर पवन ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं, इनका संतुलित मिश्रण कितना जरूरी आप मानते हैं? क्या पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं?
0: नहीं, उसमें भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, मगर हम सोलर एनर्जी पे ज़्यादा हमने मतलब कि उसमें अचीवमेंट है हमारी। और बिल्कुल आपने सीखा कि हमें मिश्रित चाहिए, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, हमको विंड एनर्जी भी चाहिए, हमको ओशन वेव से भी एनर्जी जनरेट करना है, जियो थर्मल एनर्जी को भी एक्सप्लॉइट करना है, बायोफ्यूल्स को भी एक्सप्लॉइट करना है। यदि हम ये सब कर पाते हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 2009 में गुजरात क्लाइमेट सेंटर से लेकर 2015 में जो हमारा COP 21 हुआ था पेरिस में, वहाँ ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो एक बहुत ही दूरदर्शिता थी उसके अंदर, और मुझे लगता है 140 कंट्रीज उसके मेंबर हैं जिसे सनशाइन कंट्रीज कहते हैं, और बिल्कुल उससे काफ़ी बल मिला और हमें लीडरशिप एक मिली। और अब भारत सरकार जो है बिल्कुल बायोमास पे जो है पूरा फोकस है उनका, बायोफ्यूल्स, फिर वही मैंने कहा कि वो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे मार्जिनल लैंड्स पे लगाए जाएंगे, और जो एनर्जी क्रॉप्स होंगी जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा था, उसके साथ जो आपकी यूज कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमीथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टी, जिसे कहते हैं प्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, सिर्फ एक पे निर्भर नहीं होना है। सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जितनी पॉसिबल है उसको एक्सप्लॉइट करना है और टू द मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए और हमारा टारगेट है टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो इमिशन, ये हमारा गोल है।
1: सौर ऊर्जा में तो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्या विंड एनर्जी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं भारत में?
0: नहीं, चुनौतियाँ देखिए, सोलर एनर्जी में तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, पूरे एक कोने से दूसरे कोने सनशाइन रहता है,
1: ब्राइट
0: सनशाइन रहता है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मगर विंड एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको वहाँ पे विंड तेज चलेगी वहीं लगाया जा सकता है, या तो कुछ कोस्टल सिटीज़ हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर आपको। और इसके लिए ये अगेन मौसम विभाग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे पास विंड एटलस है, सोलर एटलस है, जहाँ बताया जाएगा आपका कि भी कहाँ आपको लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। सोलर एनर्जी के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विंड के लिए कोस्टल सिटीज़ पे लग सकता है, और कोस्टल सिटीज़ में भी हमें ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे तो वहाँ साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन आएगा तो वो नेचुरली बहुत तेज होगी स्पीड, 150-200-250 की, तो उखाड़ भी सकता है। मगर हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम विंड स्पीड जो 250 आती है करीब, तो उससे जो है ज़्यादा की ताकत का हमें वो स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करना है, जिससे कि वो आ भी जाए तो रेजिलियंट होगा, वो टूटेगा नहीं।
1: विंड एनर्जी के लिए हवा की स्पीड एक आमतौर पर कितनी होनी चाहिए?
0: देखिए, कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो होनी ही चाहिए, तो वो आम ज़्यादातर जगहों पे आपको नहीं मिलती है, वो आपको कोस्टल सिटीज में मिलेगी या हाइट, जैसे जब हाइट ऊपर जाते हैं हम लोग तो विंड स्पीड बढ़ती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यदि आप 12 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो हवाएं चल रही हैं 150 किलोमीटर की स्पीड से, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस होता है तो विंड स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ खुला इलाका होता है तो वहाँ विंड स्पीड ज्यादा होती है।
1: तो हेडविंड और टेलविंड जो होता है वो 80-100 बहुत आम
0: बात है। और आपने देखा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी हुई थी, कि जब अमेरिकन प्लेन्स जब कहते हैं जा रहे थे, कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो वो फास्ट जा पा रहे थे, मगर जब वो ईस्ट से वेस्ट लौटते तो उनको ज्यादा समय लगता था, तो उन्होंने देखा क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड उनको जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट जाने में मदद करती थी उनको, और जब आते थे तो अगेंस्ट
1: हेडविंड होगा तो वो ज्यादा वक्त लगेगा। आनंद शर्मा जी, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले दशक में भारत की हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी को एकीकृत कर, यानी इंटीग्रेट करके भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है?
0: नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लीडरशिप तो ली, और एक और भी ध्यान रखिए, आज से 1000 साल पहले भी भारत जो था, देश जो था, हमारा जिस तरह का कल्चर था, हम लोग कंजर्वेशन में, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन में लीडर थे
1: जी,
0: और बीच में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, और अब फिर दोबारा से हम एक इंटरनेशनल लेवल पर लीडरशिप का रोल अब निभा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, हम डेफिनेटली जो है इस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास हो, उस सब में हम बिल्कुल कहते हैं सक्षम हैं। मगर हाँ, प्रयास ये है कि लोगों को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको ये समझाएंगे नहीं पूरे साइकिल को कि किस तरह से काम करता है, और ग्रीन वॉशिंग ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलरली हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके लिए आपको जितनी सब्सिडी देनी है सब्सिडी दीजिए, टैक्स रिलीफ देना है टैक्स रिलीफ दीजिए, मगर हर कॉस्ट पे हमको पर्यावरण को बचाना होगा, कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी,
1: हर कॉस्ट पर पर्यावरण को बचाना होगा, और तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा केवल भविष्य की जरूरत नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद शर्मा जी, आप अतिरिक्त महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@

0: gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289-094-044।
1: देश सेवा से जन सेवा, ये विशेष कार्यक्रम अभी आपने सुना। विषय था हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। प्रतिज्ञा फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
0: ये आकाश

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
3: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
4: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
2: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
6: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
7: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
2: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
8: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
9: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
8: We are very, very grateful and we are really, really, extremely proud of it.
2: गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
10: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों सोमनाथ और में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जाँच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
11: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी

0: पर एट AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
2: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
3: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
4: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
2: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले

0: बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। अमरीका ने ईरानी फौज के लिए खरीदारी की पादाश में पाकिस्तानी कारोबारियों समेत 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी और ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबलों में चांदी के तारीखी तमगों समेत आज 6 तमगे जीते हैं। मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमें भी फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाले इदारों को भी मुल्क के जरूरी असलाहत पर काम करना चाहिए। आज नई दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों की नहीं बल्कि अवाम की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं।
1: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इम्तिहान को सिर्फ एक अमल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह नौजवानों के मुस्तकबिल से वाबस्ता होता है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि महज कुछ महीनों की ताखीर नौजवानों के लिए मुश्किलात की वजह बन सकती है और इसीलिए इम्तिहानी निज़ाम को मुकर्रर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने देरीना महानदी आबी तनाज़े को हल करने के लिए आज नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वज़रा आला और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर कल मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा जहां कलीदी देही हुक्मरानी असलाहत पर बातचीत की जाएगी। बातचीत के दौरान पंचायतों को तकवीत देने, अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और देही भारत में मजमू मयार जिंदगी को बुलंद करने पर मरकूज बदलाव लाने वाली हुक्मरानी को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि इन खसूसी ग्राम सभाओं के जरिए अवाम की मनसूबाबंदी मुहिम 2026-27 सबकी योजना सबका विकास का भी आगाज होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतें शमूलियाती और शवाहिद पर मबनी मनसूबाबंदी के जरिए माली साल 2027-28 के तरक्याती मनसूबे तैयार करेंगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का अमन और अदम तशद्दुद का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे तनाज़े और जंग की सूरत हाल के तनाजुर में मजीद अहमियत का हामिल हो गया है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया मुर्मू ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के हयात और नजरियात का आलमी बिरादरी में बहुत एहतराम किया जाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की जानेब पेशरफ्त कर रहा है जिसमें हमदर्दी और शमूलियत को तरजीह दी जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी शहरी तरक्की के फवाइद से महरूम ना रह जाए। सदर जमहूरिया ने कहा कि नजरिया महात्मा गांधी के सर्वोदय के जज्बे की अक्कासी करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़े हादसे को टालने और बेशकीमती जिंदगियों को बचाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर कप्तान स्मिथ मच्छार की तारीफ की है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े हादसे को टालने पर कप्तान स्मिथ मच्छार को हीरो करार दिया। जनाब नेतन्याहू ने तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवास पर सवार 174 लोगों की जिंदगियां बचाने पर कप्तान स्मिथ मच्छार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कप्तान स्मिथ को हीरो करार दिया है और कहा है कि भारत को उन पर फख्र है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने कप्तान स्मिथ के वालदेन और उनकी अहलिया से भी बात की। कॉकपिट हमले में 174 मुसाफिरों की जान बचाने के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए

0: जख्मी हुए फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मछार की जल्द सेहतयाबी और लंबी जिंदगी के लिए गुजरात के सभी अहम मजहबी मकाम पर खसूसी दुआ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुजरात के रहने वाले बहादुर कप्तान स्मिथ मछार की जल्द सेहतयाबी के लिए सोमनाथ और अंबाजी के पवित्र मंदिरों में वैदिक मंदिरों के साथ खसूसी पूजा जारी है। कप्तान के लिए मुल्की दुआओं में शामिल होते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कप्तान मछार की गैर मामूली शुजात की तारीफ की और उनकी दिलेराना कोशिशों के एतराफ में उनके लिए बावकार विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड का ऐलान किया। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुबई तिल अभी परवाज जारी रखने और जिंदगियां बचाने पर फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मछार की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा हीरो करार दिया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में जनाब फडणवीस ने कहा कि मच्छार ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का सबूत देते हुए मुश्किल सूरत हाल को संभाला। जनाब फडणवीस ने उनकी जल्द सेहतयाबी और बेहतर सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। फ्लाई दुबई की परवाज FZ1073 के कॉकपिट में मच्छार पर उनके को पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गए थे। ये परवाज कल दुबई से तेल अवीव जा रही थी। इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान डेविड मेंसर ने कहा है कि फ्लाई दुबई तैयारे के अगवा की कोशिश अमरीका में हुए 9/11 हमलों से मुमासिल दिखाई देती है। न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहादुर भारतीय पायलट स्मिथ मछार कल ओमानी पायलट के हमले और तैयारे के निज़ाम को तबाह करने की कोशिश के बावजूद कॉकपिट कंट्रोल संभाले रहे। जनाब मेंसर ने कहा कि सऊदी हुकाम ओमानी पायलट से पूछताछ कर रहे हैं और उसे मुत्तहिदा अरब अमारात भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वाकई की जांच और इसके बाद के मुमकिन हमलों से बचने को यकीनी बनाने के लिए इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया है। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने माजूर अफराद दिव्यांग जंग के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स की मियाद को मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर माजूरी की नौयत के मुताबिक 5 साल तक कर दिया है। मरकज ने अहल दिव्यांग जन और मुस्तफिदीन के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स के जारी किए जाने और तजदीद से मुतालिक रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। ये रहनुमा खतूत कल से नाफिजुल अमल होंगे। पहले की हिदायत के मुताबिक दिव्यांग जंग के फास्टैग्स की तजदीद हर साल लाजमी थी। नई हिदायत के मुताबिक 70% से 100% माजूरी वाले अफराद को जारी करदा फास्टैग्स 5 साल तक कारामद रहेंगे, जबकि 40% से 70% तक माजूरी वाले अफराद का फास्टैग्स 4 साल तक काबिल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नजरसानी शुदा जाब्तों का मकसद कौमी शाहराहों के टोल वसूली के निज़ाम को अहल दिव्यांग जन और माजूर मुस्तफिदीन के लिए ज्यादा काबिल रसाई, शफाफ और सारिस दोस्त बनाना है। इन हिदायत के मुताबिक जिस्मानी माजूरी वाले अफराद के इस्तेमाल के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई गाड़ियों और दिव्यांग जन की मिल्कियत के तौर पर रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स जारी किया जाएगा। इसकी मियाद माजूरी के तनासुब की बुनियाद पर तय होगी। जो माजूरी से मुतालिक सर्टिफिकेट, माजूरी का मुनफरद शनाख्त कार्ड UDID और दीगर मुतालिका दस्तावेजात में दर्ज होगा। ये जाब्ते इस बात को यकीनी बनाएंगे कि टोल टैक्स से इस्तिस्ना मुकर्रा कवायद और जाब्तों नीज अहलियत की शरायत के मुताबिक जारी रहे। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: बिहार मुसलसल सैलाब की सूरत हाल से दोचार है। रियासत की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सैलाब की सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र वजीर आला सम्राट चौधरी ने राहत और बचाव की कार्रवाई में ताउन के लिए भारतीय फजाइया से मदद तलब की है। गंडक नदी की आबी सतह में इजाफा और कई मकामात पर पुश्तों में शिगाव की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया है। सारण, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण और वैशाली अजला सबसे ज्यादा मुतासर हैं। बागमती और कोसी नदियों के आबी सतह में इजाफे की वजह से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव सैलाब के पानी की जद में आ गए हैं। पटना से आशीष रंजन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपने खुसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं फौजी जंगी यादगार और फौजी पुलिस यादगार जैसी इमारतों के क्याम के जरिए

और अब अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दिल फिल्म का गीत। समीर की शब्द रचना है, आनंद विलिंद का संगीत।

धर्म कर्म। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। मुकेश, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों ने इस गीत को गाया है। मजरूह ने गीत लिखा है और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए चुपके चुपके फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया आर डी एस टी बर्मन ने।

चुपके चुपके फिल्म के लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में दिल्ली से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहलवानी के मैट पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई। सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया। 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
1: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदाघी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोक्तोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हार कर कांस्य पदक से चूक गई। इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़निसोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रुहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
0: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किफ में प्रिंस नोबल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
0: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में गजब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। यह एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानीपार्थी को इंडोनेशिया की नूरिसा दियान अश्फरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 143 से हराया। इसके साथ ही चिकिता का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
0: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं, और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
3: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4 11-8 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी, लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10 6-11 8-11 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी।

0: भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गयी। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब 1 दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया। लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया। भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है। लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो यू डोंट थिंक सो मच, वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम यू नो यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 2 डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।
1: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: India secured a medal in men's quadrant sepak takraw after beating Myanmar 2-1 in their final group match. The victory sent India into the semi-finals and keeps their unbeaten run intact across 3 group matches. India finished top of their group and are assured of a place on the podium. Earlier in the day, we saw India defeat Vietnam in the men's quadrant group A match of the sepak takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
1: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी।

0: पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
1: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में सातवें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर नवां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम दो निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश सातवें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनाई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहां भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
0: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
2: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
0: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थीं, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इन जूडो यामिनी मौर्या'स कैंपेन एंडेड विद अ डिफीट इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम रेपेचेज एट द एशियन गेम्स। व्हाइल इंडियाज इनन गनबी तकलमबाम फर्स्ट बीट नेपाल्स पूनम श्रेष्ठा बाय इपो टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। हाउएवर शी लॉस्ट बाय इपो टू नॉर्थ कोरिया'स सोंग हुई मून इन द क्वार्टर फाइनल्स। सोंग्स रीचिंग The final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inangambi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70 kg event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
0: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
3: India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after two rounds, carding 11 under 129 to set two strokes behind leader Shannon Juan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
0: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैकों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेज तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
3: इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
0: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव,

0: दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नाय, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 2026 एशियन गेम्स, सफरिंग टू हेवी डिफीट्स इन पूल बी, पूल ई इन सम क्लासिफिकेशंस एट द पलोमा मिजुहो रग्बी स्टेडियम. इन मैच नंबर 1, इंडिया वॉज हैंडेड अ डिफीट बाय हांगकांग चाइना 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
1: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से.
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है. वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है.
1: ये एशियाई खेल अब अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं. ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है. वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं. कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है. सारी निगाहें वहीं रहेंगी. भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर. बहुत शानदार मैच रहेगा ये. इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रहिएगा. भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है. सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था. यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए. कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी. बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन. देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं. वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर. अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है. कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे. फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने पेंच दिखाएंगे. तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं. अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध. इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं. साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी. गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा. रग्बी 7 में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा. सेपक टोकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे. ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी. और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का. एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम. तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान.
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं. आइए सुनिए फिल्म संगीत. लता मंगेशकर का गाया गीत सुनते हैं जिद्दी फिल्म से. गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार SD परमन.

जिद्दी फिल्म का ये गीत अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना, और आइए अब सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गीत। इसे गाया है मुकेश ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए यशवंत बुआ जोशी का ख्याल गायन। राग है विहाग।

ने यशवंत बुआ जोशी का ख्याल गायन सुना। राग था बिहाग। तबले पर संगत की थी सरबत हुसैन ने और सारंगी अब्दुल लतीफ खां। इसी के साथ आज का रागरजनी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं

0: का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेना

0: बाकी त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 2400 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just as an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Mutcher for his heroic courage in preventing a major